मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। श्रोताओं, आज गुरुवार का दिन, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 जून 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। इस वक्त सुबह के 6 बजने को हैं। अगले कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ

0: क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्र दराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम के प्रारंभ में भूदेवी भगवती भारती का वंदन। सबू स्वर में सुनते हैं नजीर बनारसी का लिखा देशगान।

मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम में अब सुनते हैं पारंपरिक शिव भजन रीता कौल के गायन स्वर में।

रीता कॉल के स्वर में आपने सुनी पारंपरिक शिव स्तुति। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम में आप सुनते हैं अगला भक्ति गीत वीणा सहस्त्रबुद्धि के स्वर में।

0: संवेद स्वर में सुनील केशव के लिखे दीप गीत के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। जयमाला सिंह के वाचन स्वर में सुनते हैं विश्वास जीवन का आधार विषय पर आलेख।
1: विश्वास मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है। यह वह अदृश्य सूत्र है जो व्यक्ति को स्वयं से, परिवार से, समाज से और ईश्वर से जोड़ता है। विश्वास के बिना न तो संबंधों की कल्पना की जा सकती है और न ही समाज की। यह जीवन की नींव है जिस पर सफलता, सुख और शांति का भवन खड़ा होता है। विश्वास का अर्थ है किसी व्यक्ति, विचार या शक्ति पर दृढ़ आस्था रखना। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो हमारे मन में सुरक्षा, अपनापन और सम्मान की भावना उत्पन्न होती है। परिवार में माता पिता और बच्चों के बीच विश्वास, मित्रता में विश्वास तथा समाज में आपसी विश्वास ही संबंधों को मजबूत बनाते हैं। विश्वास व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब मनुष्य स्वयं पर विश्वास करता है तो वह बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। इतिहास के महान व्यक्तियों ने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास के बल पर असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को भी संभव बनाया। आध्यात्मिक दृष्टि से विश्वास का विशेष महत्व है। ईश्वर पर विश्वास मनुष्य को मानसिक शांति, धैर्य और साहस प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धा और विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। विश्वास बनाना कठिन होता है लेकिन उसे खोना बहुत आसान। एक बार टूटा हुआ विश्वास पुनः स्थापित करने में बहुत समय लगता है। इसलिए हमें अपने व्यवहार में सत्यता, ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। मनुष्य के जीवन में यदि कोई ऐसी शक्ति है जो उसे हर परिस्थिति में संभाल कर रखती है तो वह है विश्वास। विश्वास एक ऐसा दीपक है जो अंधकारमय परिस्थितियों में भी आशा का प्रकाश देता है। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने की कला और संबंधों की आत्मा है। जब एक शिशु जन्म लेता है तब वह अपनी माता की गोद में विश्वास का पहला अनुभव करता है। धीरे धीरे यही विश्वास परिवार, मित्रों, समाज और अंततः ईश्वर तक विस्तृत हो जाता है। विश्वास के बिना कोई भी संबंध लंबे समय तक नहीं टिक सकता। प्रेम, मित्रता, सहयोग और सम्मान, इन सभी का आधार विश्वास ही तो है। विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण रूप है आत्मविश्वास। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है वह कठिनाइयों से घबराता नहीं है, असफलताएं उसे निराश नहीं करती बल्कि और अधिक मजबूत बनाती हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अपने आप पर विश्वास करो, यही सफलता का रहस्य है। आध्यात्मिक दृष्टि से विश्वास मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाता है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं और सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं तब ईश्वर पर विश्वास ही मन को धैर्य और शक्ति प्रदान करता है। विश्वास हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति के पीछे कोई न कोई कल्याणकारी उद्देश्य अवश्य होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से विश्वास का अर्थ है परमात्मा की व्यवस्था पर भरोसा रखना। अतः विश्वास कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक साधना है। यह प्रतिदिन सत्य बोलने, वचन निभाने और सकारात्मक सोच रखने से विकसित होता है। विश्वास जीवन का अमूल्य धन है। यह व्यक्ति को शक्ति देता है, संबंधों को मधुर बनाता है और समाज में एकता स्थापित करता है। हमें अपने जीवन

0: जीवन में विश्वास को बनाए रखना चाहिए और दूसरों का विश्वास जीतने का प्रयास करते रहना चाहिए।
1: विश्वास जीवन का आधार, विषय का लेख आपने सुना जयमाला सिंह के वाचन स्वर में। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु, मीडियम वेव और FM पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का गायन रविंद्र साठे और मिताली बी सिंह की आवाजों में, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।
2: एपिसोड 98 98

राजा जनक के यज्ञ में शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर वहां भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम का आगमन हुआ, जिन्हें देखकर उपस्थित राजाओं के समुदाय में हलचल मच गई। फिर सब कुछ देख जानते हुए भी अनजान की तरह परशुराम ने जनक जी से पूछा, ये भारी भीड़ कैसी है? सीता स्वयंवर का समाचार सुन मुनि ने जो दूसरी ओर देखा तो शिव जी के धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। ये दृश्य देख परशुराम का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। रे चढ़ जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट कर रख दूंगा। सभा में आतंक छा गया, किसी को उत्तर देते ना बना। ये देख श्री राम ने निवेदन किया, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का गायन। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि विषयक सामूहिक सुझाव का कार्यक्रम खेती की बात। नीम उत्पादों के महत्व पर सुनते हैं समसामयिक जानकारी।
1: नीम का उत्पत्ति स्थान भारत है। नीम 50 से 100 मीटर ऊंचाई एवं लगभग 1300 mm वर्षा वाले क्षेत्र में भली भांति 10 से 25 मीटर तक वृद्धि

0: प्रस्तुत है कृषि विषयक सामयिक सुझाव का कार्यक्रम खेती की बात। नीम उत्पादों के महत्व पर सुनते हैं समसामयिक जानकारी।
1: नीम का उत्पत्ति स्थान भारत है। नीम 50 से 100 मीटर ऊंचाई एवं लगभग 1300 mm वर्षा वाले क्षेत्र में भली भांति 10 से 25 मीटर तक वृद्धि करता है। इसे संस्कृत में एरिस्टा और मिम्बा कहते हैं, जिसका अर्थ हिंदी में सर्व गुणकारी और स्वास्थ्यवर्धक होता है। नीम वृक्ष के सभी भाग, पत्ती, फल, जड़ एवं छिलका रोगाणु रोधक, जीवाणु एवं विषाणु नाशक एवं कर्क रोग रोधी होता है। नीम का एक सामान्य वृद्धि वाले वृक्ष से 37 से 50 किलोग्राम प्रति वर्ष फल मिलता है। लगभग एक कुंटल फल से 60 किलोग्राम सूखे फल 30 किलोग्राम प्राप्त होता है। फल गुदा 49 से 50% होता है। देश विदेश के विभिन्न वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि जहां रासायनिक दवाओं का प्रयोग अधिकतर किया जा रहा है, वहां कैंसर एवं नपुंसकता के मामले अधिक दिखाई पड़ते हैं। यह निश्चित है कि इसका दूरगामी परिणाम और भी भयानक होगा। रासायनिक दवाओं का दुष्प्रभाव न सिर्फ जीव पर पड़ता है, अपितु यह मृदा की कार्यशीलता एवं मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न लाभदायी सूक्ष्म जीवों पर भी पड़ता है। इन सभी परेशानियों को बढ़ने से रोकना हमारे लिए चुनौती और नैतिक जिम्मेदारी है। भविष्य को स्वस्थ एवं विष मुक्त रखने में नीम उत्पाद का कृषि में उपयोग एक महत्वपूर्ण पहल है। नीम एक महत्वपूर्ण कीट एवं रोग रोधी तत्व है, जिसका उपयोग कृषि में अधिकाधिक करना अति महत्वपूर्ण है। नीम का प्रयोग मुख्य रूप से नीम तेल, नीम केक, हरी खाद, घोल एवं पाउडर के रूप में किया जाता है। नीम तेल सूखे हुए फल की पिराई कर निकाला जाता है। वर्तमान में नीम तेल का प्रयोग धान उत्पादन में प्रमुखता से किया जा रहा है। इसके छिड़काव से पौधे या पत्ती की सतह पर एक कड़वा सतह बन जाता है, समस्त प्रकार के कीटों से पौधों की रक्षा करते हैं। नीम तेल का 30 ml प्रति नैपसेक स्प्रेयर के हिसाब से उपयोग करते हैं। इस प्रकार एक एकड़ के फसल में 300 ml नीम तेल पर्याप्त होता है। नीम तेल का प्रयोग प्रभावी ढंग से करने हेतु साबुन का घोल, शैम्पू इत्यादि का प्रयोग आवश्यक है। इसके प्रयोग से पौध भाग में नीम तेल ठीक प्रकार से चिपक जाता है। नीम के एक सूखे बीज से तेल निकालने के पश्चात बचा हुआ उत्पाद होता है। इसमें नाइट्रोजन 3.56% होता है। इसका प्रयोग न सिर्फ नाइट्रोजन प्रदान करता है, बल्कि यह विनाइट्रीकरण प्रक्रिया को कम करता है। यह उर्वरक एवं कीटनाशी के रूप में भी प्रयोग होता है। भूमि में उपस्थित चिचड़ी को नष्ट करता है, मृदा को स्वस्थ बनाता है, मृदा में कार्बनिक तत्वों की वृद्धि कर मृदा संरचना को बेहतर करता है। नीम खाद संयुक्त रूप से जीव, पौधे अथवा दोनों से प्राप्त हुए पदार्थ होते हैं, जिसका उपयोग मृदा उर्वरता, पौध वृद्धि, फसल उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होता है। यह वातावरण के अनुकूल होने के कारण वर्तमान में इसका उपयोग बढ़ रहा है। नीम नाइट्रोजन, पोटाश और सूक्ष्म तत्व जैसे सल्फर, कैल्शियम इत्यादि की वृद्धि करता है। नीम खाद का प्रयोग यूरिया अथवा अन्य कार्बनिक खाद के साथ मिलाकर सुगमता से किया जा सकता है। नीम कोटेड यूरिया के रूप में प्रदाय यूरिया का पौध उपयोग प्रतिशत स्वतः ही बढ़ जाता है, क्योंकि यह धीरे धीरे घुलता है। साथ ही भूमि की उर्वरता पर बहुत कम नुकसान होता है, क्योंकि भूमि की उर्वरता नत्रजन, फास्फोरस एवं पोटाश की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यह तत्व विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा वाष्पीकृत कर दिया जाता है। नाइट्रोजन कोटेड यूरिया वाष्पीकृत करने वाले बैक्टीरिया और उसके क्रियाविधि को कम करता है, जिससे भूमि में अधिक समय तक उर्वरता बने रहने में सहायता मिलती है, जिसके कारण नाइट्रोजन कोटेड यूरिया सामान्य यूरिया की मात्रा में फसल में कम डालना पड़ता है। पाउडर के रूप में नीम के फल, जड़ एवं छाल को कूट कर पाउडर बनाया जाता है तथा उसका प्रयोग किया जाता है। यह मृदा को फसल अनुकूल बनाता है। इसका प्रयोग बीज बुआई व सिंचाई के समय किया जा सकता है। यह मृदा में पाए जाने वाले हानिकारक कीट व सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है एवं लाभदायी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक होता है। नीम उत्पाद विभिन्न कीटों के पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव न डालकर हार्मोनल तंत्र पर प्रभाव डालता है। फलस्वरूप कीटों में विभिन्न रसायनों, दवाइयों के लिए सहनशीलता नहीं बढ़ पाती। नीम कीटनाशी मृदा उर्वरता बढ़ाने वाले पौध वृद्धि हार्मोन तथा कीट विकर्षण करने वाला होता है। नीम के पौध भागों में उपस्थित एजारीडिरेक्टिन, सेलानिंड एवं मेलांड्रियोल नामक रसायनों के कारण यह कीटों पर प्रभाव डालता है। कीट विकर्षण व पौध भाग को कीटों के लिए अरुचिकर बनाने में, कीट के भोजन को अरुचिकर बनाने में, कीट जीवन चक्र को प्रभावित कर वृद्धि नियामक जीवन चक्र को प्रभावित करता है।
0: नीम उत्पादों के महत्व पर आपने सुनी सामयिक जानकारी। आप सुन रहे थे कृषि विषयक सामयिक सुझाव का कार्यक्रम खेती की बात। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:50 हुए हैं। साथियों, आइए जान लेते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे सरगुजिया साहित्यिक पत्रिका माटी की आखर। कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे सरगुजा के नामचीन लोक कलाकार संजय सुरीला से प्रशांत खेमरिया की बातचीत। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे प्रमेंद्र कुमार। दिन के 10 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम गांव कर गीत। प्रस्तुति सहयोग नितेश गुप्त का, प्रस्तुति प्रमेंद्र कुमार की।

NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय है मध्याह्न के ठीक 12 बजे। सरगुजा संभाग में हाथियों की अद्यतन स्थिति बताता प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट आप सुन सकेंगे शाम के 5 बजे।

दिन के 12:30 पर आप सुन सकेंगे शीर्षक गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन। ईमेल आधारित कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण समय है दिन में 1:40 और रात्रि में 9:30।

रात्रि 8:15 पर आप सुन पाएंगे 19 शासकीय भर्ती परीक्षाएं पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से विशेष भेंटवार्ता, जो हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे। सोशल मीडिया की गूंज, इंस्टा फरमाइश, सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम का प्रसारण समय है रात्रि के 8:00।

दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। कार्यक्रम में आप सुनेंगे घर के भोजन में सेहत का खजाना विषयक बातचीत, क्रम गुलदस्ता, घरेलू नुस्खे और गीत संगीत।

शाम 7:21 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल। कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे साइबर सुरक्षित भारत कार्यक्रम विषयक सामयिक चर्चा। कार्यक्रम किसानवाड़ी का प्रसारण समय है 7:30। कार्यक्रम में आप सुनेंगे सामयिक फूल उत्पादन से आर्थिक लाभ और प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना घरेलू सौर ऊर्जा आत्मनिर्भरता विषयक चर्चाएं। साथ ही साथ कार्यक्रम में आप जानेंगे मंडी भाव मौसम की जानकारी मौसम आधारित कृषि परामर्श।

रात्रि के 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामिनी में आप सुनेंगे पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का राग विभास आधारित गायन। कार्यक्रम चित्रपट संगीत का प्रसारण समय है रात्रि 9:15। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

0: श्रोता साथियों, ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:55 होने को हैं। अगले कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा।

गूंजे जंगल में। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुछ सरगुजिया लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गायक कलाकार राजमणि और साथियों के स्वर में बायर गीत के साथ।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: ये आकाशवाणी अंबिकापुर है, आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम में आप सुनते हैं सरगुजिया देवरी गीत। गायक कलाकार हैं कुदाराम राजवाड़े और साथी।

गायक कलाकार शंकरराम यादव और साथियों के स्वर में सरगुजिया देवी गीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 7:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम

0: भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में आपने सुनी इब्राहिम अश की लिखी गज़ल। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत।
1: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
2: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: कार्यक्रम सुगम संगीत में आप सुनते हैं हसरत जयपुरी का लिखा कलाम। आवाजें उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की।

उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में हसरत जयपुरी की लिखी गज़ल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है जनसंपर्क से प्राप्त समाचारों और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। नमस्कार सरगुजा।

0: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
1: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम।
2: नमस्कार सरगुजा।
3: नमस्कार सरगुजा।
2: कार्यक्रम के आज के अंक में मैं हूं राजीव। स्वीकार करें स्नेह अभिवादन, सादर नमस्कार। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। ये कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फ़ोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोठ। सुनते रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोठ, जहाँ हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। समाचारों के क्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुनते हैं फिल्म CID का गीत, शमशाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का, संगीत OP नैयर का।

0: मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं जनसंपर्क से प्राप्त समाचारों और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
2: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई। यानी 230-600, पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
2: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
0: समाचार जनसंपर्क अंबिकापुर से। मिशन शक्ति अंतर्गत सखी वन स्टॉप सेंटर के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु

अंतिम वरीयता एवं चयन प्रतीक्षा सूची जारी। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया है कि जिले में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर में दैनिक कार्यों के संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाही के लिए पैरा लीगल कार्मिक वकील के एक पद, मेडिकल कार्मिक के एक पद, बहुउद्देशीय कर्मचारी रसोईया के एक पद एवं सुरक्षा गार्ड, नाइट गार्ड के तीन पदों, सेवा प्रदाता के कुल 6 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी विज्ञापित पदों का 2 जून 2026 को आयोजित साक्षात्कार पश्चात चयन समिति के अनुमोदन से अंतिम वरीयता सूची व चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची जिले की वेबसाइट www.sargoja.gov.in पर प्रकाशित की गई है। वरीयता सूची व चयन प्रतीक्षा सूची सरगुजा जिले के वेबसाइट व कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है। चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं अनुबंध हेतु पृथक से सूचना दिया जाएगा। समाचार और भी हैं, उससे पहले सुनते हैं फिल्म हमराज का गीत। आवाज़ महेंद्र कपूर की, गीत साहिर लुधियानवी का, संगीत निर्देशन रवि का।

महेंद्र कपूर की आवाज़ में आपने सुना फिल्म हमराज का गीत। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है, आप सुन रहे हैं जनसंपर्क से प्राप्त समाचारों और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।

0: राम राम हो विष्णु भैया।
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगत दे फटफट फटफट ट्रैक्टर में दे राउर भिड़े ही।
1: कैसे कहिया विनु भैया, ए दे आगु तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं। हाँ। बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकते हैं।
1: हाँ, अबे दे शुरू है कि सा है।
0: हाँ
1: हुँ?
0: तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाड़ी।

छत्तीसगढ़ जन विश्वास द्वितीय अधिनियम 2025 के अनुसूची 4 अनुसार मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1948 की धारा 5 के तहत 25,000 रुपये तक की राशि से दंडित किए जाने का प्रावधान है। ये नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्रोत जिनका संबंध किसी नदी नालों से नहीं है उनमें लागू नहीं होंगे। समाचारों के क्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुनते हैं फिल्म मेरा साया का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने, संगीत निर्देशन मदन मोहन का।

कार्यक्रम की अगली खबर जनसंपर्क अंबिकापुर से। 16 जून से 15 अगस्त तक क्लोज सीजन, अवधि में मत्स्य खेत पूर्णतः निषिद्ध। मछली पालन विभाग के उप संचालक ने बताया है कि वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3 उपधारा 2 के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु क्लोज सीजन के रूप में घोषित किया गया है। राज्य के सभी नदी नालों, छोटी नदियों, सहायक नदियों जिन पर सिंचाई के बड़े या छोटे तालाब जलाशय निर्मित किए गए हैं उनमें किए जा रहे क्रेज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार के मत्स्य खेत इस अवधि में पूर्णतः निषिद्ध रहेंगे। उन्होंने बताया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण दिनांक 1 जनवरी 2026 में प्रकाशित

मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं जनसंपर्क से प्राप्त समाचारों और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। समाचार मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से। 19 जून को जिला रोजगार कार्यालय मनेंद्रगढ़ में लगेगा।

रोजगार मेला। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र मनेंद्रगढ़ चिरमेरी भरतपुर MCB द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 19 जून 2026 दिन शुक्रवार को रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक जिला रोजगार कार्यालय मनेंद्रगढ़ में आयोजित होगा। रोजगार मेले में विभिन्न निजी कंपनियों द्वारा भर्ती की जाएगी। इसमें परिश्रम ह्यूमन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मीटर इंस्टॉलेशन पद पर 100 रिक्तियाँ, वेतन 15,000 से 20,000 रुपये। LIC अंबिकापुर द्वारा इंश्योरेंस एडवाइज़र पद पर 50 रिक्तियाँ। कमीशन आधारित डिटेल मिलेनियम प्री स्कूल मनेंद्रगढ़ द्वारा टीचर पद पर 3 रिक्तियाँ, वेतन 5,000 से 6,000 रुपये। तथा आलेख पब्लिक स्कूल सिरौली द्वारा सिक्योरिटी गार्ड पद पर 1 रिक्ति उपलब्ध है। प्लेसमेंट कैंप पूर्णतः निःशुल्क है। इच्छुक अभ्यर्थियों को rozgar.cg.gov.in अथवा CG रोजगार पंजीयन ऐप के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को अपने साथ शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा पासपोर्ट साइज फोटो लेकर निर्धारित तिथि एवं स्थान पर उपस्थित होना होगा। कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म ब्रह्मचारी से, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।

0: ब्रह्मचारी फिल्म के गीत के साथ कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा समाप्त हुआ। स्वीकार करें राजीव का नमस्कार।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अगले कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़ दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
6: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से

0: समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवेटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
1: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
2: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
3: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
4: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
5: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण

0: करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
3: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
4: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
2: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
5: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
2: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
6: We have a huge pool of talent.
7: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
8: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी

0: क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट ए एफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम निशित कुमार। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अटेंड विवाटेक समिट इन पेरिस विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल माक्रों। पीएम मोदी टू आल्सो एड्रेस मेंबर्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन फ्रेंच कैपिटल। President Draupadi Murmu to embark on a five-day

0: सर गुजिया साहित्यिक पत्रिका माटी के आखर कार्यक्रम में राउर मनकर बहुत बहुत स्वागत करत ही। आज नया अंक में हमन फिर से उपस्थित हन और आज देखा कितना खुशी कर बात है कि सरगुजा संभाग क्षेत्र कर सबसे बड़ा कलाकार, प्रसिद्धि प्राप्त कलाकार और सरगुजिया लोकगीत कर बहुत बढ़िया कलाकार, गायक कलाकार हमारे बीच में उपस्थित हैं। इनकर नाम है संजय सुरीला जी। हमन बहुत दिन से प्रतीक्षा करत रहन और आमंत्रण भी भेजे रहन कि कब हमर स्टूडियो में संजय जी आहीं और अपन बात ला कहीं और बढ़िया बढ़िया सुघर सुघर गीत भी हमन ला दो तीन ठो सुनाही। तो आज इंतजार खत्म हुई से हमर बीच में संजय जी हैं और हमन ये कहना चाहब कि सरगुजा कर लोकगीत ला राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने कर श्रेय संजय सुरीला जी ला जाएल और बड़ा गौरव की बात है कि हमर बीच में ऐसा कलाकार हैं जो हर बड़ा सरकारी आयोजन में और बड़ा सांस्कृतिक आयोजन में इनकर उपस्थिति रहल, गरिमामयी उपस्थिति रहल और हमन ला देखे सुनकर मौका मिलल। तो संजय जी राउर के बहुत बहुत स्वागत करती।
1: तो सबसे पहले मैं हमर सरगुजा के जम्मो सियान काका दादा बहनी बेटी दामाद भाटो सारी लैका छुआ सब कोईला राम राम जय जोहार जय सरगुजा कहत हूँ। और मैं संजय सुरीला आप मला पाँव छू के पाँव पड़त हूँ कि आज मला बड़ खुशी मिलत है। बड़ खुशी मिलत है मत कहिया कि ये आकाशवाणी कर हमर जो ये मंदिर समार हमर जो ये स्थल है तेला मैं पाँव पूजत हूँ दाऊ हो। आज मोर भाग्य है जागे है। नमस्ते करत हूँ मैं प्रणाम करत हूँ।
0: संजय जी इतना बढ़िया लगता है और कार्यक्रम को शुरुआत देखा इतना बढ़िया माहौल राउर कर देहन यही राउर कर खासियत है और हमन देखे हन सुने हन ये चीज ला। तो बड़ा संक्षेप में हमन ला बताते हैं कि जो संगीत कर यात्रा है ये शुरू कैसे हो रही
1: का करिहा दाऊ नगद मत पूछा कि हेले घेचे कर जिंदगी रथे आ जो गरीब दुखिया रहते तही कलाकार बन पाते भाई। और जेकर घर भाई अन्न धन एकदम भरपूर रहते ते मन तो भाई बड़े बड़े कलाकार बनते। हमन तो सरगुजा कर आदमी और कहीं नहीं मिलिस तो हम गीत संगीत का सहारा लेन माँ सरस्वती कर हमला आशीर्वाद मिलिस और बचपन बहुत संघर्ष पूर्वक चलिस कहिया था भैया। मोर सुनत हुई जितना सब कुछ सुनिया ये संगीत का है काकरो बपौती नहीं है इला कोई भी रियाज और आप अकल बुद्धि से पाए सकते हैं। ता महू मोर पापा है मोर मतलब बाबूजी कहिया तया गरीब रहिस भाई काम धंधा करत रहिस ता हमन नान नान रहन जाए के पान दुकान में सुनत रहन कि ए दे पान दुकान मन में पहले बाक्स उक्स रहे ना ता वही जंग जाए के घर में रेडियो नहीं रहे भैया का कहिया ता वही जंग जाके कान ला एकदम ठेपा लगाए के सुनत रहन और ये गाना ला तर्ज का है सुर का है ताल का है तेला समझेन धीरे धीरे हमन गाना गाए बर प्रयास करें अभ्यास करें। आप कहिया कि हमरो भी कोई शिक्षक है तो हमू कोई के शिक्षक हन मतलब शिष्य हमरो कोई है तो हमू कोई के शिष्य हन तो ये परंपरा ला निभात हन। तो धीरे धीरे आर्केस्ट्रा में गाए शुरू करें मैं तब मैं कहें कि भाई हिंदी गाना कर हमला बहुत जन सुनत नहीं रहन और घनी बड़े बड़े कलाकार मन रहन भाई हमर वाला कौन पुछारू रहे। तो लोकगीत ला जैसे कर्मा और महादेव मादर में बजाए बजाए के किसान भाई मन देखिया मत कहा एकदम खेत धरी आंगना धरी जब गाए ना तो घनी मुँह रिझे लागे कि मांदर का होते भाई बड़े बड़े लाल गुलाबी मांदर तब मत कहा तब कर्मा गीत ला मोर ध्यान में आई। आर्केस्ट्रा गाते गाते मैं कहें लोकगीत तरफ में भागेन भाई और नगद कंपनी में घनी मैं कहिया त जाए जाए के पाँव हाथ पाँव जोड़ के भी मोरो गाना रिकॉर्ड कर ला कहाँ कर करें कंपनी वाला मन तब भेज दे नहीं अभी तोर आवाज़ सही नहीं है तभी तोर गाना सही नहीं है तब मत कहिया मतलब ठोक पीट के और जाए के एकदम आखिरी में सोचें कि नटराज के सेट में गए कटनी बढ़ी में वही जन मोर गाना एक पहला लोकगीत आए रहीस।
0: अच्छा
1: हाँ और वो गाना ला मत कहिया तीन चार पाँच महीना बाद रिलीज जब होइस ना तो वो गाना रहीस में मतलब कहे में लाज लगत है कहिया था लेकिन का कहिया कहने से पढ़ी ओ तोर बाल खुला खुला वाला गाना सुने है ना
0: बहुत बहुत बढ़िया गीत है बड़ा प्रसिद्ध गीत है।
1: ता वही गाना ला हमन मत कहिया रिकॉर्ड करें ना ता वो गाना का शोर अतेक हो लगी पूरा सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ में कौन है संजय सुरीला अवला में गाय के दिखाऊं एक धार
0: बहुत बहुत हम मैं कहना चाहत रहन और मुंह कर बात लछीन रहन।
1: अच्छा अच्छा तो रौरे ला बहुत बहुत धन्यवाद कि हमरो गाना लगाए के मोला मौका दिया था ना
0: जी।
1: ता वो गाना रही सरगुजा के टूरी

0: का कही है ओकर शब्द थोड़ा सा वो रही टांग
1: हाँ,
0: लेकर
1: नहीं,
0: बोले
1: नहीं,
0: देख
1: नहीं,
0: हम भाई परिवार वाला
1: गीत
0: आदमी
1: भावना कर चीज रहे, दिल कर चीज रहे।
0: हाँ और गायक में मोला ठीक नहीं लागत है लेकिन मैं सुनाता हूँ
1: हाँ।
0: टना टन।

0: रे, यही गाना रही साहब,
1: बहुत बढ़िया गीत रही। अच्छा मैं एक बात कहना चाहत रहे कि देखा गीत संगीत बड़ा बड़ा साउंड बॉक्स के साथ राहुल बहुत लाखों लोग सुनी, लेकिन आज सादा आवाज और सीधे आवाज एमे पहली बार मुरा लगत है कि सुने पर मौका मिलत हो लोग मन।
0: हाँ अरे तो, का कहिया साहब, ये टेबल मला ड्रम मला बजाए बजाए के ताल लगात रहे, चस्का रही हम नाना दादा मन कहे ले बाबू 10 पैसा 5 पैसा ले चार न ले गाय वो गाना तो गाय के सुनाते वही घनी चस्का रही सब कोई कर मोर हाथ मतलब हमर परिवार कर दोस्त यार कर हमर मोहल्ला कर गांव कर सरगुजा कर जितना मोहल्ला उठाई ने सब कोई तो मैं सब जनक धन्यवाद करत हूँ कि ये कलाकार आगू बढ़ाए में पब्लिक कर बहुत हाथ रहे श्रोता मन कर।
1: राउर कर जो नाम है संजय कश्यप है, ये सुरीला कौन धरीस कैसे ये नाम पकड़े, बड़ा सुंदर नाम
0: अच्छा
1: है।
0: अच्छा ये बढ़िया सवाल करे है, देखा जब कोई भी नाम ला देहे बर एक पीछे कोई ना कोई कहानी रथे, तो पहले मैं आर्केस्ट्रा में गाना गात रहे तो आर्केस्ट्रा में गाना गात रहे तो एक श्याम राव भैया रहन अब तो नहीं रहे वो अनाउंसर रहन, तो बोलिन कि संजय जी आप गाना तो बहुत सुर में गाते हैं अच्छा गाते हैं और शादी ब्याह भी हो गया है अब आपको कहा चाहिए, तो बोलिन आप संजय कश्यप हम आपको बोलते हैं मंच में लेकिन इतना सुर में इतना अच्छा मिठास करके रउरे मन गाथा तो वही ठन ले मोर नाम वो संजय सुरीला कर दे।
1: अच्छा
0: हाओ अब वही संजय सुरीला कहिया तब फरिया है गिस।
1: हाओ इतना सुंदर नाम धरिन और एकदम राउर से मिलता जुलता नाम है।
0: हाँ
1: और राउर का सुरीला भी कोई नहीं है।
0: नहीं एक जैन का
1: नहीं तो... नहीं हमला तो लगेल भाई कि राउर लोकगीत में जो सरगुजा कर जो पहचान राउर बनाएन और सरगुजा कर जो कर्मा कर जो राउर पहचान बनाएन वो अद्वितीय है।
0: ये एला तो महू ना लगेल कि यार भगवान का प्रसादे रहीस कि लगत रहीस कि मोरेज मुख से गाना निकलीस
1: वो दोनों गीत जो राउर इशारा समझ गए एक कर्मा कुहू की गीत और हाय रे सरगुजा नाच ये बोले में कितना अच्छा लगेल एकर का कहानी रहीस कैसे राउला अनुभव रहीस वो गीत
0: देखा ये कर्मा का गाना हमर सरगुजा राज कर कर्मा ना तो कहिया तो पूरा छत्तीसगढ़ में पसंद करते देश विदेश में जहाँ जहाँ हमर रहिया रहते सब वो कोई नेता मंत्री चौकीदार और सब वो दीदी भाटो सारी सब वो कोई मजा लेने भाई। हाँ अभी हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी तो उनका फेवरेट गाना है पहला पसंद यही है रहे।
1: अच्छा
0: हाँ वो दिन अपन मतलब एक दिन कोई पूछी सोला इंटरव्यू में कि भाई का पसंद है बोली हाय रे सरगुजा नाचे सुने महू देखे जी और एकदम गदगद आएगी। हाँ
1: एक गीत कर बात निकल गई से संजय जी
0: मोर मुहर मोरो मुहर खजुआ थे गाँव
1: बिल्कुल बिल्कुल एकदम पूछे कर जरूरत नहीं है और हमारे सौभाग्य है
0: ठीक है
1: कि दो दो लाइन कम से कम
0: सरगुजा संभागला फिर मैं नेवता करत हूँ कि दादा भौजी सुन ली हो काकी घर के दूरा बंद रहे कोई रहे ना बाकी अरे हाय

0: जाना चे ते कर वो हुला महू कहरन को
1: हाँ
0: को को
1: ओ
0: ये हुला कहरन
1: हाँ
0: मही और इधर में
1: अच्छा
0: जो कोयल ये लोग महीज कह रहे हैं।
1: अच्छा
0: हाँ और एक से आवाज में निकालें दाऊ
1: ओहो
0: हाँ मस्त एक से एक गाना
1: पूरा जो मिक्सिंग हुई से ना वो सुने लायक है।
0: हाँ ते कौन गांव के कौन गांव के करमदार कहाँ कर्म दरिया सिकरी जो राय के संग।

0: सुने में ऐसे लगेल कि सिंपल गीत है,
1: हाँ
0: साधारण गीत है, लेकिन है नहीं साधारण। जब राउर गाथी ना, तो जब वो आभा मंडल जो बनेल,
1: हाँ
0: वो हमन सुनेन कि राजनांदगांव में गिनीज बुक में वो नाम हो गईस,
1: वो वाला गाना रहीस
0: कर्मा कुहू की गीत
1: कर्मा
0: गई।
1: कुकी वाला, 26,000 युवक और युवती मन एक साथ नाचे रहिन साहेब हो, एक साथ नाचे रहे ना मत कहा। वो समय के दृश्य ला देखे बर पूरा मतलब नेपाल भूटान से राजा और मतलब राष्ट्रपति मन आए रहिन, और वो गाना जब प्रदर्शित होइस तो ओहू मन के वाह हमर सरगुजा कर कर्मा और छत्तीसगढ़ राज्य कर लोक संस्कृति।
0: वो गीत ला हमन टीवी में देखेन,
1: अच्छा तो
0: जगह जगह मोबाइल में भी देखेन,
1: हाँ
0: तो हमन सुने कि वो लाइव वो समय भी गाय रहा
1: हाँ गाय रहे ना
0: वहीं पर।
1: नहीं पहले रिकॉर्ड होइस
0: हाँ,
1: अवकर में फिर ओला
0: बजाइन।
1: बजाइन तो देखे आई
0: अच्छा, दमाली जी बताइन कि एक अंतरा दू अंतरा शायद जोड़िन, पहले
1: उमे
0: छोटा
1: जोड़ी
0: गीत रहे।
1: 10 मिनट के गाना करवाना रही सेला, पहले
0: अच्छा।
1: दो अंतरा के रिस ओकर बाद 4 अंतरा बनाई नेला। हाओ
0: और पूरा कॉन्सेप्ट और कैसे गीत रही, का गीत रही, एकर बारे में राउर दोनों झन कर गीतकार और गवैया वाला कहे।
1: विजय सिंह दमाली के मत पूछा भाई, वो मत कहा कि उनका दिमाग और उनका लिखे के संतुलन उनका सोच काबिले तारीफ है। मतलब संजय सुरीला जो है विजय सिंह दमाली के बिना अधूरा है।
0: बहुत सुंदर, बहुत,
1: हाँ
0: ये बात वो भी कहत रही ना।
1: हाँ तो मैं अपन मन के बात ला उनला बताऊँ ना तो समझ जाए, तेकर
0: अच्छा।
1: लिखें एक से गीत लिखीन है और उनका मोर मन के धारणा समझे कि एक वॉइस इसके एक स्केल कैसे है तो इसने लिख देते रहे।
0: कितना गीत हो गई सोही राउर के अभी तक?
1: लगभग मतलब 200-300 गीत तो होइए गई, जेकर में तो मतलब कि 100 गीत है तो मोर मुहे और पूरा छत्तीसगढ़ कर मतलब मुहे चला थे। हाओ और कर्मा के बात ला कहरत रहा ना वो गिनीज बुक वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला तेला कही हाथ तो थे सुनाओ
0: हाँ, जरूर जरूर
1: सुनाओ,
0: जरूर
1: मतलब
0: जरूर
1: नाराज जन हो
0: एकदम। अरे
1: नहीं
0: कई
1: नाराज जन हो।
0: बहुत
1: हाँ
0: बहुत बढ़िया गीत।
1: झारा झारा ने होता है तोला ये जावारा, कर्मा खेले बर चले आवे हमर पारा, तररा तररा तररा तररा हाय रे हाय रे।

0: दर के तालमा।
1: ये गीत कर जितना तारीफ कर जाए
0: हाँ
1: वो कम है संजय जी, और दोनों गीतकार और
0: अच्छा
1: भी गीत जो राव रेकर से पहले सबसे शुरू में जो गायन
0: हाँ,
1: तुरबाल खुला खुला।
0: काबर की देखा समय बदलते गई, नया परिवेश आते गई साहब, और सरगुजा में एक से एक संभावना है, और भी नगद नगद कलाकार मन गायन बजाइन, लेकिन थोड़ा सा पहचान बनाए में समय तो लगेल भाई, कहे कोई काम हर न तुरंत कहिया तो नहीं हो बर करे। हम जितना कलाकार मन है जाना तो बहुत जन है, लेकिन भाई उपलब्धि बनाए बर थोड़ा मेहनत तो करे,
1: मेहनत करना
0: मोरो में 25-30 साल होगी से। हाँ तेकर जाते जाते कहिया त कहो कहो नदी पोखरा नदी झरिया में कोनो भी गांव कर छेड़छाड़ टूरा मन रहबे करते हैं, तब देखते महू एक दिन जात रहे महू झरिया कति तो देखत एक झन एक झन वाला देख देख रहे, तो ओहिला देख के मैं बीजे से दमान ला कहन के भाई एक ठेन ये वाला गीतला बना ना कैसा है मुखड़ा, लेकिन ये

0: रसीली बेड़ा पा मत कहा दाऊ अभी सियानो मतलब पसंद आते मुर्गाना मतलब मन भी ना हमार मजदूर किसान हमार भाई मन ए कुली मन हमारे रेजा बहिनी मन सब को जब ईटा जोड़त रहते तक गाना लगा देते तो खुटी में मोबाइल ला
1: अच्छा
0: आज भी सुनते
1: सुनते
0: अब कहीं दहर से गुजरता था ना तो मोर मन हर एकदम कहिया तो जुड़ाए जाते कि चल भाई हम सरगुजा के धरती में जन्म ले हैं सरगुजा कर भाई अंधन ला खाए वहाँ तो रीढ़ी छो अब भैया आए तो गाना ला कुछ करे ना हमारे सरगुजा के लोग संस्कृति बढ़ा तो गाना सुनते मोर मन एकदम हलूक लागल कहिया तक
1: हमन ला भी लगे कि हमार क्षेत्र कर हमर घर द्वार कर कोई आदमी हर
0: हाँ।
1: इतना दिल से गात है इतना आत्मा से गात है
0: हाँ।

0: सुन के हमला बड़ा बढ़िया लगे।
1: ये मुरली बहुत मतलब सौभाग्य की बात है।
0: एक चीज मैं पूछना चाहता रहे संजय जी, हर आदमी का आवाज ऐसे नहीं रहे और गाना जब शुरुआत करे तो ओला समझ में आये कि मैं गाय सकत हूँ, मोर आवाज में कर्मा गायकर क्षमता है, चाहे लोक गीत गायकर क्षमता है, चाहे फिल्मी गीत। राउर ला कब दिमाग में आई इसकी मैं गाय सकत हूँ और आवाज ला कैसे राउर संवारेन माजेन ओला?
1: ता एकर पीछे भी बहुत सारा मतलब हर कलाकार के पीछे कोई ना कोई घटना कहानी मतलब परिस्थिति रहते साहब, और जैसे जैसे मतलब गुरु मिलते है वैसे वैसे मोला वहाँ से कुछ ना कुछ मतलब सीखे के मौका मिलिस। जैसे मोला ऑर्केस्ट्रा में लेकिन हमर बड़े भैया मदन सिंह थापा जी,
0: अच्छा
1: हाँ, ओकर बाद वहाँ से सीखे और मोर एक तो बढ़िया मित्र रे सूरज रावत, अब नहीं है बेचारा, मोरो से अच्छा गात्री सो,
0: अच्छा।
1: हमर दोनों के अच्छा जिगरी दोस्त रही, तब गात्री सो संगीत करते करते मतलब वो पहले का है कि हमर अंबिकापुर आकाशवाणी में हमर पहले हमर परम आदरणीय गुरुदेव श्री जवाहर झा साहब रहिन, तब वो सीखे आत रही, तो पीछे महू आत रहे, तब वो

0: और बाद वहां से सीखें, और मोर एक तो बढ़िया मित्र रे सूरज राव, तब नहीं है बेचारा, मोरो से अच्छा गात्री सो,
1: अच्छा।
0: हम दोनों के अच्छा जिगरी दोस्त रही, तब गात्री सो संगीत करते करते, मतलब वो पहले का है कि हमार अंबिकापुर आकाशवाणी में हमार पहले हमार परम आदरणीय गुरुदेव श्री जवाहर झा साहब रहिन, तब वो सीखे आत रहे, तब पीछे महू आत रहे, वो अंदर रहे तो मैं तनी बाहर से सुनो भाई, तब बोली कौन खड़ा है मेरा दोस्त सूरज बोलीस, तो आ जाओ अंदर बोलीस, तब बैठ के महू मतलब सिखाए ना, तो दूर से फिर महू देख देख के पकड़े, तब बोलीस कि मत लजाओ शर्मा, बहुत नेक आदमी रे, बहुत अच्छा सर रे, सरगम मोला बताए, सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, फिर आकार ला बताए, आ आ आ आ, ये सब ला बताए, तब महू पकड़े, कहे की हरकत मुर्की गले में लाने पर तो वो आकार में रियाज तो करने पड़ी, सुबेरे शाम आज भी मैं करता हूँ।
1: अच्छा,
0: हाँ, काबर की भाई देखा, अगर मार्केट में बने रहना है आवाज ला तो साधना पड़ी, और कहीं से भी कुछ मिलते सीखे बर तो सीख लेते, और कोई मोर से पूछते जितना आते से बता,
1: का दिनचर्या रहल राउर के?
0: हमारे राउर यही रहते कि अभी आजकल स्टेज प्रोग्राम के, मतलब जैसे कि राउर मन का आशीर्वाद से सरगुजा कर, हमारे जितना बहनी दीदी दाई काका काकी मन बोला आशीर्वाद दें, तो ये बेटा भाई ला भैया बुलाते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के कोना कोना में जा चुके हूँ मैं, और फिर बड़े बड़े राज्य में भी जात हूँ, ता कोई प्रोग्राम आ जाते तो ओकरे तैयारी वारी नया नया म्यूजिशियन मतलब वही गाना मतलब बताना कि अब आज ये गाना तैयारी करना है, वो गाना ला तैयारी करना है, तमन तैयारी करते वही में टाइम हो जाए, फिर मोर छोटा सा यूट्यूब चैनल है संजय सुल ऑफिशियल, मोर नवा नवा गाना प्रयास करता हूँ कि आए हमार श्रोता मला उमे सुने के मौका मिले।
1: कौन नाम से है?
0: संजय सुरीला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल,
1: वैसे तो मिल जाए।
0: हाँ,
1: जैसे हमन गूगल में चाहे में संजय सुरीला लिखने कर देरी हवे,
0: हाँ,
1: वो सब उमे भेटाए जाए।
0: हाँ, तब बहुत सारा कंपनी में तुम्हें गाले छो।
1: अच्छा,
0: लेकिन अब भाई अब कहा अपन गाना ला, मैं कहूँ कहाँ दूसर कोई ला दिया,
1: कहाँ कहाँ गायन अभी तक?
0: मैं सबसे पहले नटराज के सेट में गाय रहे कटनी में बरही में, ओकर बाद फिर सुंदरानी में गायन वीडियो वर्ल्ड में, के सेट कंपनी रायपुर में गाये, फिर डीएफ सीरीज में धनराज सीरीज वहाँ पर गाये, मतलब छोटा मोटा बहुत सारा सरगुजा के बहुत सारा चैनल में गाये, फिर मोर मन करीस की नहीं भाई मोरो प्लेटफॉर्म हो, मोरो मतलब गाय के कहीं पर जरिया हो, मैं तो आज के कलाकार मोला कहूँ की भाई दूसर का चक्कर लगाए से अच्छा है की अपन यूट्यूब बना और गावा, काकरो मतलब का गोड़ मोड़ गिरना है ना, रिकॉर्डिंग कार्डिंग कहाँ से करा के डाला, हमारे गांव गांव में भी एक से भाई कलाकार हैं,
1: बहुत कलाकार।
0: हाँ, सुआ कर्मा ददरिया पंथी सब जन गाते हैं,
1: बात तो हमन करते हैं।
0: हाँ,
1: गीत भी सुनते हैं।
0: हाँ,
1: लेकिन लालच जो चीज है ना, और राउर ला देख के मोला ये लगत है कि गाना सुन लो कि बात कर लो,
0: अच्छा
1: दोनों बढ़िया लगता है,
0: एक से गीत है साहब, तो मैं शुरुआत कहाँ करे हूँ,
1: कहीं नहीं।
0: अरे वो गाना मत कहा, आधुनिक जब चलिस ना के सरगुजी हा साड़ी ओ बिलासपुर के बाली, महासमुद्र के मुंदरी भिलाई के लाली, जिया जान मारे टूरी है रे फैशन वाली, जिया जान मारे टूरी है रे फैशन वाली, का लिखे रे इनके या विजय सिंह दमाली भैया। मतलब पूरा छत्तीसगढ़ का मतलब में जिला का नाम रे,
1: जिला का नाम।
0: और दिन बदलते गई आधुनिकता, हमर मोर हमर स्टेज प्रोग्राम चलत रही, मोना सेन भी काम करत रही इसके यहाँ तक।
1: अच्छा,
0: वो देकर पर मैं गाना बनाए रहे, मत पूछा वह गाना रही ते कर, बिजली गिराए मोना रे कार्गो जींस मार के, दिल धड़काए मोना रे कार्गो जींस मार के, मुके तो लागत है सब कुछ सुनी है गाना ला।
1: हाँ, अरे कितना बार सुनी है।
0: हाँ, देखा आधुनिक गाना भी गाए हमें, लेकिन मैं अपन संस्कृति अपन ओहदा ला मतलब देखता के भाई, काबर की मोहला ही रास्ता चलना है, सरगुजा में रहना है, कोई लव दिल में बुरा मत लगे। हाँ, आकाशवाणी में आना मतलब समझ लेवा कि यहाँ पर जो साफ सुथरा कलाकार है वही ला बोला थे, मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमार अंबिकापुर आकाशवाणी के आप ला, और
1: हमर गौरव की बात है संजय जी की, राव
0: रायना यही आकाशवाणी में एक से कलाकार ला मैं देखे भाई,
1: नया जितना कलाकार अभी आते हैं
0: जी,
1: और आजकल जो सोशल मीडिया पर जो कलाकार हैं सब आगे बढ़ना चाहते हैं, राउर कर का सीख है उमन पर, कैसे आगे बढ़ें, का सीखें, शुरुआत कहाँ से करें?
0: देखा साहब, ये बहुत अच्छा प्रश्न राउरे मन करे हा, तो मैं ये कहूँ कि ललक तो हर कोई लवन थे भाई देखते।

0: टीवी में देखते, रेडियो में सुनते हैं, यूट्यूब में देखा थे कि महू कलाकार बनते हैं, लेकिन लल्ला बहुत सोचना समझना पड़ी, मतलब उस तो यह चीज ना लागे, कुछ तो भगवान लल्ला देते उपहार में
1: आशीर्वाद रहे तब भेटल माँ सरस्वती का।
0: हाँ, कुछ तो इला का कहते कि रियाज, परिश्रम, लगन और माँ बाप का मतलब आशीर्वाद होना जरूरी है। तो वही देख देख के गुरु गुरु मन से मिल के कुछ ओकर लेहन, कुछ ओकर से लेहन, कुछ अपन बनाएन, ऐसे करते करते ये संघर्ष वाला है। लेकिन जब पब्लिक ला चाहे आम आदमी ला पसंद आए लगते तो एमे भी अपन भविष्य बनाए के बहुत अच्छा स्थिति है। हाँ,
1: और बड़ा गंभीरता से पूछना चाहते रहे
0: हाँ
1: कि अंबिकापुर और सरगुजा क्षेत्र में
0: हाँ
1: राहुल ला लगेल कि स्टूडियो के क्षेत्र में विकास हुई से कुछ होना चाहिए या सरकारी तौर पर कुछ होना चाहिए या कुछ लड़का बच्चा मन बढ़ सकें, राहुल ला भी और मौका मिले, स्टूडियो में कुछ बढ़िया उन्नति हो, ऐसा कुछ लगेल राहुल ला?
0: तो ये बहुत अच्छा मतलब प्रश्न करे हरौरे मन। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में ना हर राज्य में देखतूँ मैं, चाहे बिहार हो, यूपी हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, अपन अपन चैनल सब करे भाई। यहाँ कर कलाकार मन कहाँ अपन प्रतिभा ला दिखाए जाके, चला यूट्यूब तो आएगी से छोटा सा पर्दा में दिखते, लेकिन ओमन भी अपन प्रतिभावान है। तो हमारे राज्य कर छत्तीसगढ़ राज्य के सरकार ला चाहिए एक तो प्लेटफार्म दे और हमर कलाकार मन जाके वहाँ अपन अपन कला के प्रदर्शन ला करे। मतलब दूरदर्शन तो रही सी, लेकिन एक तो बड़ा और अच्छा चैनल बनाए जेकर में सरगुजिया गीत, फिल्म के छत्तीसगढ़ फिल्म के गीत ला, जो और अन्यथा नाटक, ये सब ला प्रदर्शित करे के चैनल हो, तब तो हमर सरगुजा हमर राज्य हर आगे बढ़ी
1: बढ़ी। यही स्टूडियो हो,
0: स्टूडियो गाय के भी स्टूडियो बहुत मतलब बहुत मतलब के समस्या कही आता भाई। काम चले बर तो है स्टूडियो बहुत हर जिला में है यहाँ पर, लेकिन वो डेप्थ नहीं मिल पाते। जैसे उड़ीसा कर कटक में है, रायपुर में कुछ कुछ स्टूडियो मन बहुत अच्छा करते हैं, ताकि मतलब उमन का वॉइस क्वालिटी, रिदम के और गाय बजाए के सब कोई के मतलब वहाँ पर करे के बहुत अच्छा है। और यहाँ पर भी है, लेकिन अब वही ला हमन वहाँ गाय चुकी बड़े बड़े स्टूडियो में, यहाँ गाती तो लोग बाग बोलते संजय सुरला कर आवाज ना लगे। तो जो जो सुनत हुई वह मतलब थोड़ा चाहिए कि भाई अपन स्टूडियो ला अच्छा बनाए खोले, ताकि हमन बाहर झन जाए, यहाँ के कलाकार में बाहर मत जाए, यहीं पर बहुत सारा संभावना है,
1: बहुत संभावना है। माटी माटी में तो राउर यही माटी से निकले।
0: हाँ, हाँ, एक से एक तो गीत है हमारे सर, सुगा है।
1: हाँ, सुगा है,
0: सुगा गीत है, सुकर्मा है।
1: राउर ला कौन सा गीत, अपन गीत?
0: हाँ,
1: बहुत सुंदर एकदम टॉप में जो राउर ला लगे और खाली समय में राउर गुनगुनाती
0: मत कहा
1: वो कौन सा, तो वैसे छाटना
0: तो
1: बड़ा मुश्किल।
0: मैं अपन कैसे करूँ, मैं तो बहुत सारा गीत है कहिया था, जब कहूँ प्रोग्राम वोग्राम से देर में मैं आता हूँ, तो कहिया मोर घर गोसाई मोर पत्नी, अब वही फोन करके कथे कहा कैसे एक दिन एक बजे

0: आगे कहिया तो
1: बहुत यही अपन दिल का रवाज है।
0: आज दिल करवाजे वो गाना रहे ये बोला सुनी नहीं लो
1: अरे बहुत सुने हमन सुने हैं गीत।
0: हाँ तो मतलब हर मत पहले की कैचिंग पावर रही ज्यादा मतलब गाना ला समझे बुझे के तनी वनी कुछ मतलब मिले ना जगह कुछ शब्द मिले मत कहिए गाड़ी बना बना तो चलाए चलाए के मतलब दिमाग में गाना बनाए देते रहे। अब विजय भैया कहने विजय भैया लेख तो यार बनाए दे मतलब मोला उठाए में ना विजय भैया का बहुत हाथ है। हाँ आगू बढ़ाए
1: कौन सा ऐसा गीत है
0: हाँ
1: जेला बनाए में राउला बहुत मेहनत लगीस, बड़ा
0: अरे
1: संघर्ष लगी, चुनौती रहीस?
0: गाना तो मोर सब कुछ चुनौती वाला रे
1: सब चुनौती वाला
0: लेकिन
1: है।
0: वही है कि एक ठन गाना ला हम 2 दिन राति सूत के मतलब वो कर रहे हैं मैं विजय भैया कहिया तो एक खटिया में रहन एगो खटिया में मैं सूते रहूँ बढ़िया वो दिन राति का करीस कुर्थी दाल और भात और कहिया कि दे सरसों साग बढ़िया बनाइस कहीस कि आज गाना
1: हाँ
0: बना थे हाँ यार वो दे राति तो नहीं कर पाएन आज बनाबो तब उतरे कहिया ओकर घर के ठीक सामने डेम है
1: अच्छा।
0: हाँ बोलिस करवाही मछली लाने खावे मैं कहने यार अब लाने हैं तो खावे गर्म चल तो वही गाना सनना जीवरा मोरे लागे हल झूली रेंगना मन मत आगे खिल गे यौवन पराग झरे झू

0: रुरुरु बंसी के तान सही मीठ बोली तुरुरुरु तुरुरुरुरुरुरु तुरुरुरुरुरुरु हृदय में हुलुकुले समागे पैरी के गोरी तोर घुंघरु। ये गाना हम उन करके बनाए, अब बड़ा मस्त रिकॉर्डिंग हुई गाना, वो सिंगल गाना रे।
1: हाँ, राउर की आवाज में लाखों लोग मन सरगुजिया कर्मा सुनी ने।
0: हाँ, ये आप मन कर आशीर्वाद, जम्मो छत्तीसगढ़ हो, मोर बाबूजी, मोर माँ, मोर भाई, मोर दोस्त यार, मोर संगत साथ सब कोई मोला मतलब दिल से।
1: कौन सा सपना राउर के अब बाकी है, अभी आगे का सोचा थी, कौन का दिखा थे राउर ला?
0: अब का कहिया, अब सपना तो ऐसा कोई बच नहीं गए से, अब का है हमारे छत्तीसगढ़ ला ही हमला आगू बढ़ाना है, सरगुजा ला आगे चमकाना है, यहाँ का देवी देवता कर धाम कर गीत ला बना के और हमारे मूल संस्कृति के भाव में खो जाना है ना। हमला यहाँ पर बाहर कर राज्य कर जो आजकल देखते हो कि यूट्यूब में गाना गाते हैं, अश्लीलता मतलब झलकाते हैं, वो हमारे छत्तीसगढ़ सरगुजा कर अच्छा बात नहीं है,
1: बचाए के
0: रखना है। हाँ, हमारे बहनी मन, हमारे दीदी मन बढ़िया सुआ गीत गाते हैं, उमन लगाए और शादी ब्याह कर एक से एक गीत है भाई, उमन लगाए काबर नहीं, मतलब सुर से दिल से अगर कोई भी गाना और काम ला करल जाए ना तो और काबर नहीं मतलब आगुआ ही मतलब और अच्छा होवे
1: करी
0: माता हर मतलब भगवान ऊपर वाला भी होला,
1: नेक नियति रहे।
0: हाँ, आशीर्वाद
1: और विश्वास रहे तो मुला लगा था कि सब हो जाए,
0: सब अच्छा हो जाए।
1: कोई फिल्मी गीत एक दो लाइन हम सुन सकते थी राउर की आवाज में?
0: हाँ, तो मैं का कहिया
1: जो राउर ला बहुत पसंद
0: बचपन से कहिया था मोहम्मद रफी साहब ला आइडियल मान के चलत रहे, मोर वही मतलब उनकर आवाज ला पकड़ के और गाना उना गांव में ऑर्केस्ट्रा में बोला रफी साहब ला गवात रही कहिया था।
1: अच्छा,
0: हाँ, बहुत सारा गाना रही का कहे, दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे न जा,

0: संजय जी, बहुत बढ़िया लगिस। और कैसे आधा घंटा बीत गईस
1: अच्छा
0: हमन ला तो पता नहीं चलिस। और सुनोइया भैया बहिनी मन ला भी बहुत सुंदर
1: देखिए
0: लगिस
1: साहब,
0: होई।
1: एकस मजाक झेल के
0: अरे
1: तुमन बोर तो नहीं हुए
0: नहीं
1: ना?
0: नहीं नहीं
1: हाँ
0: बहुत बढ़िया लगिस। और एक एक सेकंड में तो सोचत रहन घड़ी कर कंटा हर रुक
1: हाँ
0: जातीस थोड़ा सा,
1: अच्छा
0: तो और बात कर लेते हैं, लेकिन समय हमारे पास सीमा रहल। लेकिन जल्दी हमन फिर से बुलाब।
1: जरूर जरूर मैं इंतजार करूँ। हाँ और मोर जो गाना मोला जो अभी बहुत सारा गाना मोला नहीं करे हो साहब वो मोला मतलब कहिया है तुम्हें पार्ट 2 1 पार्ट 2 3 पार्ट 2 4 में करके देहूँ। हाँ अगर बढ़िया हमारे सरगुजा के मतलब आकाशवाणी अंबिकापुर के रेडियो ला सुनी जो इनकर चैनल का जो नंबर है तब मैं सब कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ भाई हमारे अंबिकापुर के रेडियो स्टेशन के जो भी प्रसारण होते तेला अब्बड़ ध्यान लगा के सुने कौन कलाकार आते कौन दिन आते कौन तारीख के आते। आज जैसे कि मैं संजय सूर्यलायन अब भैया और कोई कलाकार आई तब भी ध्यान लगा के सुनिए तब तो सीखे के मौका मिली दाऊ
0: मिली मिली।
1: है ना। तब मोर जम्मो दीदी काका काकी भाटो सारी दादा भौजी बेटी दामाद सबो झन वाला में हाथ जोड़ के विनती करत हूँ रेडियो से भी आप मन जुड़ा जिमें साफ सुथरा कार्यक्रम जिला अपन परिवार के बीच में फुल साउंड लगा के सुन सका
0: संजय जी बहुत अच्छा लगी साज।
1: था।
0: और राउर के बहुत बहुत धन्यवाद करत ही। एकरे साथ हमारे कार्यक्रम आज बस यहीं तक।
1: महु
0: बहुत
1: राम
0: बहुत
1: राम कहत हूँ जाते जाते जय जय।

सरगुजिया साहित्यिक पत्रिका माटी के आखर के अंतर्गत आपने सुनी सरगुजा के नामचीन लोक कलाकार संजय सुरीला से प्रशांत खेमरिया की बातचीत। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रमेंद्र कुमार। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 9 बज चुके हैं। पेश है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका प्रिय कार्यक्रम गुंजन। मैं हूं आपका अपना साथी राजीव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारी सेहत, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों से सीधे जुड़ा है। हर वर्ष 18 जून को पूरी दुनिया सतत खानपान दिवस यानी कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाती है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2016 में की थी ताकि लोगों को भोजन और पर्यावरण के बीच गहरे संबंध के प्रति जागरूक किया जा सके। गैस्ट्रोनॉमी का अर्थ केवल स्वादिष्ट भोजन नहीं है, बल्कि ये भोजन की पूरी यात्रा है। खेत से लेकर हमारी थाली तक, इसमें खेती, भंडारण, परिवहन, पकाने के तरीके और भोजन के उपयोग तक सब कुछ शामिल है। सतत खानपान का मतलब है ऐसा भोजन अपनाना जो पौष्टिक हो, पर्यावरण के अनुकूल हो, स्थानीय किसानों को लाभ पहुँचाए और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखे। हमारी थाली में रखा हर निवाला केवल हमारी भूख नहीं मिटाता है, बल्कि वह धरती, पानी, जलवायु और किसानों के जीवन को सीधे प्रभावित करता है। बातों के क्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुनते हैं फिल्म बदलते रिश्ते का गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में। संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

बदलते रिश्ते, फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं गुंजन, बातों और गीतों का कार्यक्रम।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी अंबिकापुर है, आप सुन रहे हैं गुंजन, बातों और गीतों का कार्यक्रम। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भोजन का पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ता है? आज दुनिया भर में खाद्य उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में पानी, भूमि और ऊर्जा का उपयोग होता है। कई बार भोजन हमारी थाली तक पहुंचने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है। दूसरी ओर हर साल बड़ी मात्रा में भोजन बर्बाद भी हो जाता है। ये केवल भोजन की बर्बादी नहीं, बल्कि उस पानी, श्रम और संसाधनों की भी बर्बादी है जो उसे तैयार करने में लगे। यदि हम स्थानीय मौसमी फलों सब्जियों को अपनाएं, ज़रूरत के अनुसार ही भोजन लें और बचा हुआ भोजन सही तरीके से उपयोग करें, तो हम पर्यावरण संरक्षण

संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव जैसे कपड़े के थैले का उपयोग, प्लास्टिक पैकेजिंग कम करना और रसोई के जैविक कचरे से खाद बनाना भी बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। बातों का सिलसिला आगे बढ़ेगा, उससे पहले सुनते हैं फिल्म वारिस का गीत, लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज़ों में।

0: मनमोहन सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म वारिस का गीत। मीडियम वेव और एफएम पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं गुंजन, बातों और गीतों का कार्यक्रम।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोता साथियों, भारत की खाद्य परंपराएं सदियों से सतत खानपान का उदाहरण रही हैं। हमारे यहाँ मौसम के अनुसार भोजन करने की परंपरा रही है। गर्मियों में बेल, आमपना और छाछ, तो सर्दियों में बाजरा, तिल और गुड़ का सेवन किया जाता है। मोटे अनाज जिन्हें आश्रयन कहा जाता है, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी और कोदो, कम पानी में उगाए जा सकते हैं और पोषण से भी भरपूर होते हैं। हमारी रसोई में दाल, चावल, सब्जियां, अचार और बची हुई रोटियों के नए व्यंजन बनाना, ये सब खाद्य संरक्षण और संसाधनों के बेहतर उपयोग के उदाहरण हैं। आइए हम अपनी पारंपरिक खाद्य संस्कृति को अपनाएं और नई पीढ़ी तक पहुँचाएँ। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में निदा फाजली का लिखा नगमा, उषा खन्ना का संगीत निर्देशन, फिल्म है स्वीकार किया मैंने।

0: स्वीकार किया मैंने। फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं गुंजन, बातों और गीतों का कार्यक्रम।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: दोस्तों, भोजन की बर्बादी रोकना बहुत ही आसान है। कुछ छोटी छोटी आदतें अपनाकर हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। उतना ही भोजन लें जितनी की आवश्यकता हो। खरीदारी से पहले सूची बनाकर जाएं, भोजन को सही तरीके से संग्रहित करें, बचे हुए भोजन का नए व्यंजनों में उपयोग करें, अतिरिक्त भोजन जरूरतमंदों तक पहुँचाएँ। याद रखिए, भोजन का सम्मान करना हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहा करते हैं कि अन्न का एक एक दाना अनमोल है। कार्यक्रम गुंजन का अगला गीत हमने लिया है हरिहरन घनश्याम रघुवंशी और साथियों की आवाज़ों में। गीत रविंद्र रावल का, संगीत निर्देशन राम लक्ष्मण का, फिल्म है हम साथ साथ हैं।

0: ये आकाशवाणी अंबिकापुर है, आप सुन रहे हैं गुंजन, बातों और गीतों का कार्यक्रम।
1: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
2: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: श्रोता साथियों, सतत खानपान केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारी सेहत के लिए भी लाभकारी है। मौसमी फल और सब्जियां अधिक पौष्टिक होती हैं। घर का बना भोजन हमें संतुलित पोषण देता है। फास्ट फूड और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की जगह स्थानीय और ताज़ा भोजन अपनाने से हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। जब हम स्वस्थ भोजन चुनते हैं तो हम न केवल अपने शरीर का ख्याल रखते हैं बल्कि धरती के संसाधनों से भी न्याय करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज और स्वस्थ पृथ्वी तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। श्रोताओं, सतत खानपान कोई कठिन कार्य नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाने का नाम है। आइए आज हम संकल्प लें कि भोजन की बर्बादी नहीं करेंगे, स्थानीय और मौसमी उत्पादों को अपनाएंगे, किसानों के श्रम का सम्मान करेंगे, अपनी पारंपरिक खाद्य संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, स्वस्थ और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाएंगे। याद रखिए, हमारी थाली का हर निवाला धरती के भविष्य से जुड़ा है। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया फिल्म आशा से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, गीत आनंद बख्शी का, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: मीडियम वेव और एफएम पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं गुंजन, बातों और गीतों का कार्यक्रम।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत

0: सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: ये आकाशवाणी अंबिकापुर है, आप सुन रहे हैं गुंजन बातों और गीतों का कार्यक्रम। श्रोताओं, अभी तक आप सुन रहे थे सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे पर हमारी प्रस्तुति। इस दिन ने हमें संदेश दिया कि जिस प्रकार हमारी थाली में मौजूद हर स्वाद, हर अनाज और हर परंपरा का अपना महत्व है, उसी प्रकार हमारे समाज में मौजूद हर व्यक्ति की भी अपनी अलग पहचान है और विशेषताओं के कारण वो अनमोल है। प्रकृति की सबसे बड़ी खूबसूरती विविधता है और यही विविधता मानव जीवन को भी समृद्ध बनाती है। दोस्तों, जरा सोचिए आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा हो जो अपने पसंदीदा विषय पर घंटों बात कर सकता हो, लेकिन लोगों से नज़रें मिलाकर बात करने में झिझकता हो, या कोई ऐसा बच्चा जिसे तेज़ आवाज़ें, भीड़ या अचानक होने वाले बदलाव असहज कर देते हों। अक्सर हम ऐसे बच्चों को शर्मीला, ज़िद्दी या अलग स्वभाव का मान लेते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि हो सकता है उनका दुनिया को देखने और समझने का तरीका हमसे अलग है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गुंजन। आज ऑटिस्टिक प्राइड डे के अवसर पर हम बात करेंगे ऑटिज्म की, एक ऐसी अवस्था जो हमें ये सिखाती है कि हर व्यक्ति का सोचने, सीखने और अपनी भावनाएं व्यक्त करने का तरीका अलग हो सकता है। ऑटिज्म, जिसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है, कोई बीमारी नहीं है बल्कि मस्तिष्क के विकास का एक अलग स्वरूप है। ऑटिज्म से जुड़े लोग सामाजिक व्यवहार, संवाद और अपनी रुचियों को व्यक्त करने के अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। कुछ लोग कम बोलते हैं, कुछ किसी विशेष विषय में असाधारण प्रतिभा रखते हैं, तो कुछ तेज रोशनी, शोर या भीड़ से असहज महसूस कर सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर ऑटिस्टिक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। केवल कम बोलना, अकेले रहना पसंद करना या शर्मीला होना हमेशा ऑटिज्म का संकेत नहीं है, लेकिन यदि किसी बच्चे के संवाद, व्यवहार या सामाजिक जुड़ाव में उसकी उम्र के अनुसार स्पष्ट अंतर दिखाई दे तो विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी हो सकता है। ऑटिस्टिक प्राइड डे हमें यही संदेश देता है कि विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें किसी को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे समझने, स्वीकार करने और आगे बढ़ने के अवसर देने चाहिए, क्योंकि हर मन अनोखा है, हर सोच महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है शंकर महादेवन की आवाज़ में, गीत प्रसून जोशी का, संगीत निर्देशन प्रसून जोशी का, संगीत निर्देशन शंकर महादेवन का, फिल्म है तारे जमीन पर।

दोस्तों, अब ऑटिज़्म को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। ऑटिज़्म से जुड़े लोग अक्सर दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते और महसूस करते हैं। वे संवाद करने, अपनी भावनाएं व्यक्त करने और सामाजिक परिस्थितियों को समझने के लिए अपने अलग तरीके अपनाते हैं। श्रोताओं, अक्सर हम किसी व्यक्ति को उसके व्यवहार के आधार पर जल्दी परख लेते हैं। यदि कोई बच्चा आँखों में आँख देखकर बात नहीं करता, कम बोलता है या अकेले रहना पसंद करता है, तो हम इसे ज़िद्दी, असामाजिक या शर्मीला मान लेते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर अलग व्यवहार के पीछे कोई न कोई कारण होता है। ऑटिज़्म से जुड़े लोगों और उनके परिवारों को समाज में अक्सर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्कूलों में समझ की कमी, कार्यस्थलों पर सीमित व्यवहार, सीमित अवसर और समाज की अनजानी टिप्पणियाँ उनके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती हैं। कई माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और कभी कभी खुद को अकेला महसूस करते हैं।

0: मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से अब अनुप्रसारित करेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। मुख्यमंत्री ने गरियाबंद जिले को दी 603 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात। और एसीबी ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में भ्रष्टाचार के मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सुबह एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे। अपने दौरे के दौरान वे बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आचार्य पदारोहण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद शाम करीब 4 बजे शांतिनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री बिरला आज शाम दिल्ली लौट जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल गरियाबंद जिले को 603 करोड़ 46 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 76 विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इनमें सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और विद्युत से जुड़े कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने गरियाबंद के सर्वांगीण विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। पीएम सेतु योजना के तहत प्रदेश के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग अनुकूल बनाया जा रहा है। योजना के तहत छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और ड्रोन जैसी नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही पुरानी मशीनों के स्थान पर आधुनिक उपकरण, डिजिटल कंटेंट और स्मार्ट क्लासरूम की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्य सचिव विकासशील

अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक में पीएम सेतु योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कल प्रदेश के 3 अलग अलग जिलों में दबिश देकर भ्रष्टाचार के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने कल भिलाई नगर निगम से सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर को भ्रष्टाचार के एक मामले में हिरासत में लिया। इसके अलावा धमतरी में विद्युत यांत्रिकी विभाग में पदस्थ प्रोग्रेस मैन को 1,00,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं एसीबी ने जशपुर नगर में आरईएस विभाग के एसडीओ को भी 25,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जशपुर जिले में बीज गोला बनाबो जशपुर के जंगल्ला बढ़ाबो महाअभियान के तहत भैरव पहाड़ सोगड़ा नुमान टेकरी सहित विभिन्न चिन्हांकित स्थलों पर लगभग 2,00,000 सीड बॉल तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम ने सभी नागरिकों प्रबुद्धजनों और युवाओं से इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने राज्य में अवैध रूप से स्क्रैप और प्रयुक्त बैटरियों के संग्रहण भंडारण परिवहन पुनर्चक्रण और व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। मंडल के संज्ञान में आया है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में बिना आवश्यक पंजीयन प्राधिकार और वैध दस्तावेजों के स्क्रैप बैटरियों का संग्रहण भंडारण परिवहन और खरीदी बिक्री की जा रही है। मंडल ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की गतिविधियां पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन है और यह जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। इस संबंध में राज्य भर में विशेष निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। योग दिवस के आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राज्यपाल रमन डेका राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में सरगुजा जिले में सुबह 7 बजे सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर उप मुख्यमंत्री अरुण साहू दुर्ग उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इस प्रकार अन्य जिलों में भी आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों में मंत्री सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। मुख्यमंत्री ने गरियाबंद जिले को दी 603 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों की सौगात और एसीबी ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में भ्रष्टाचार के मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार जो हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। इस वक्त दिन के 10 बजे हैं। साथियों जान लेते हैं मौसम का हाल। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान शहर अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 0.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। तापमान सूचना के बाद दोस्तों जान लेते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे मध्यान्ह के ठीक 12 बजे। सरगुजा संभाग में हाथियों की अद्यतन स्थिति बताता प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ आप सुन सकेंगे शाम के 5 बजे।

दिन में 12:30 पर आप सुन सकेंगे शीर्षक गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन। ईमेल आधारित कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण समय है दिन में 1:00।

रात्रि 8:15 पर। आप सुन पाएंगे 19 शासकीय भर्ती परीक्षाएं पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से विशेष भेंटवार्ता, जो हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे। सोशल मीडिया की गूंज, इंस्टा फरमाइश। सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम का प्रसारण समय है रात्रि के 8:00।

आज दोपहर 1:10 पर आप सुन सकेंगे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। कार्यक्रम में आप सुनेंगे घर के भोजन में सेहत का खजाना विषयक बातचीत, क्रम गुलदस्ता, घरेलू नुस्खे और गीत संगीत। शाम 7:21 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल। कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे साइबर सुरक्षित भारत कार्यक्रम विषयक सामयिक चर्चा। कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण समय है 7:30। कार्यक्रम में आप सुनेंगे सामयिक फूल उत्पादन से आर्थिक लाभ और प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, घरेलू सौर ऊर्जा आत्मनिर्भरता विषयक चर्चाएं। साथ ही साथ कार्यक्रम में आप जानेंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी, मौसम आधारित कृषि परामर्श।

रात्रि के 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामिनी में आप सुनेंगे पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का राग विभास आधारित गायन। कार्यक्रम चित्रपट संगीत का प्रसारण समय है रात्रि 9:15। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। गैर फिल्मी गीतों और गजलों के कार्यक्रम गीतगंधा का प्रसारण समय है दिन में 2:30। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आप सुनेंगे युवा सोच और क्रम महफिल।

श्रोता साथियों, ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। दिन के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम गांव कर गीत। प्रस्तुति सहयोग नितेश गुप्त का, प्रस्तुति प्रमेंद्र कुमार की।

0: गांवकर गीत।
1: गिरे गिरे करत है बरखा होवत है बूंदा बांदी, कहों कहों गारा घाटा तो कहों कहों तूफान कर संग आंधी। नगद करना है खेती पाती ये बात ला गईट समझ के बांधी। बाकी मैं विनितेश गुप्त राउर मनकर पसंदीदा लोक गीत पर आधारित फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम गांव कर गीत लेके आ गए हूँ महकायवर राउर गांव घर कर माटी। राम राम और जोहार कर संग उठात हूँ राउर मनकर फोन और गोट बात कर संग सुना थी राउर मनकर पसंद कर लोक गीत। हेलो गांव कर गीत।
2: राम राम
1: राम राम दादा, कौन और कहां ले बोला थी?
2: मैं प्रेम सदाई वाले बोला।
1: बहुत बहुत स्वागत है प्रेम साहब भाई राउर के।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बताई भाई का हाल चाल और अभी का काम बूता?
2: हाल चाल तो ठीक है, वैसे गर्मी पड़त है अभी। मानसून भाई इधर से उधर करत है, आयकर रात में आ रही थोड़ा सा बारिश। दिन में तो एकदम काम कर रही।
1: हाँ देखिए बूंदा बांदी कभी कभार यदि होवत है तो

0: अंदेशा है कि जल्दी बरखा होही तो खेती पाती कर तैयारी मन ला बताई।
1: अभी चालू होही, पानी गिर जाए तबे समझ में आई।
0: तो बीज बिहन मन कर व्यवस्था बनाए ही कि खेत मन कर तैयारी करें कि?
1: हाँ व्यवस्था बन जाए, वो अभी आजकल तत्काल बन जाते
0: है ना, है ना। तो बताई भाई, और देखी का ऐसो खेती करे वाला ही राउर बरखा गिर ही तो,
1: बस जो जो होते
0: है ना। अब आज कर गांव कर गीत में राउर विशेष रूप से का कहना चाहत ही?
1: मैं तो यही कहूँ कि भाई यदि जैसे आने वाला 21 जून के विश्व एकता दिवस मनाते हैं ना, तो भाई हमेशा योग करना चाहिए, नहीं कि योग के लिए नहीं ना।
0: ओला हमला भाई ये दे आदत में डालना है, नहीं दिन में एक ठो भाई समय ला निर्धारित कर ली कि बिहाने 6 बजे कि 5 बजे कि 7 बजे, बाकी करना जरूरी है नहीं?
1: और यही कहूँ कि भाई पानी गिरी तो पेड़ पौधा जरूर लगाओ।
0: बहुत सुघर गोट बात प्रेम साहब भाई राउर बता थी, बाकी गांव कर गीत कार्यक्रम है तो गीत घलो बताई आज कौन सा सुनवाल जाए राउर के?
1: गुलाब सिंह पैकरा के बारे में बजा दिया कोई सा गीत।
0: बहुत सुघर गीत राउर पसंद करे ही तो लगी राउर के सुनवा थी गुलाब सिंह पैकरा और उनकर संगता मन कर गाल सुघर कन लोक गीत।

0: हेलो
1: हेलो गांव कर गीत।
0: राम राम भैया।
1: राम राम भैया, कौन और कहां ले बोला थी?
0: राजकुमार ने बहनी भी अंबिकापुर।
1: बहुत बहुत स्वागत है राउर के गांव कर गीत में। बताई भाई, बूंदाबांदी शुरू होगी से का कहना चाह आज?
0: अब देखिए मानसून तो दादा लगभग करीबे है दादा, और किसान मन अपन तो तैयारी करे पर कर ले, लेकिन पानी आती सब न गया।
1: हाँ देखिए भाई, अभी बूंदाबांदी ले काम नहीं चली, नगद भाई बढ़िया पानी कर जरूरत है।
0: दो दिन बढ़िया से नहीं पड़ी तब न खेती बड़ी हुई दादा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बाकी तैयारी कर समय अजय है तो तैयारी भी करना जरूरी पहल हो जाए खेती बाड़ी में भी। नहीं
0: हाँ भैया,
1: हाँ हाँ। तो बताई भाई, आज राउर के कौन सा गीत सुनवाई गांव कर गीत में?
0: मोर संग
1: लक्ष्मण मस्तूरिया कर सुघरकन गीत राउर पसंद करे ही।
0: और भाई मस्तूरिया और केदार यादव तो मोर पसंदीदा गायक है।
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, राउर हमेशा फरमाइश करत रही, आज यही क्रम में लक्ष्मण मस्तूरिया कर मोर संग चलाओ रे सुघरकन गीत।
0: साथी के नाम लेते हैं भैया।
1: बिल्कुल स्वागत है ले।
0: प्रेम से राजवाड़े मानिक राम प्रजापति और सरगुजा रेडियो श्रोता संघ के सभी श्रोता जन भैया।
1: तो लगी भाई राउर संगता साथी जम झन मिल के सुनी राउर पसंद कर ये सुघरकन लोक गीत लक्ष्मण मस्तूरिया कर आवाज में।

0: हेलो।
1: हाँ हेलो, गांव कर गीत।
0: हाँ भैया नमस्ते।
1: नमस्ते भैया।
0: योगेश जांगड़े बोला था भैया, सिरवा बांधा बेमेतरा जी।
1: बहुत बहुत स्वागत है योगेश भाई गांव कर गीत में। बताई भाई, बूंदाबांदी शुरू होगी से राउर तरफ बरखा
0: नहीं
1: पानी
0: नहीं हुए है भैया।
1: नहीं हुए है अभी
0: हाँ अगोरा बने छवा।
1: भाई? हमर सरगुजा में तो बीच बीच में देखिए दे गरा घटा, आंधी तूफान,
0: हाँ
1: बूंदाबांदी सब होत है। बाकी खेती पाती कर हिसाब से अभी भी अगोरा है, इंतजार है।
0: हाँ
1: तो बताई भाई, आज का कहना चाहब राउर गांव कर गीत कर माध्यम से?
0: अब वे कहा भैया, अब गर्मी के मौसम सिराते है और बरसात के मौसम लगती है। अब का खेती बाड़ी काम में थोड़ा सा बित्ती आ जाबो भैया, धान उन बोई हो ही, पानी एक आग बार गिरिस तहले। हाँ तो बढ़िया सब अपन अपन काम धाम करत रहे और रेडियो से जुड़े रहे।
1: तो तैयारी मन होगी नहीं कि अभी बाचिन है?
0: नहीं अभी खेत वगैरह कांटा उटा भी नहीं है, थोड़ा सा बराबर करी होए भैया, बाकी बारिश हो ही तो करवादे, मतलब जोताई वगैरह के काम पुनः हो पाही।
1: अब भाई
0: हाँ
1: बढ़िया, एक बार बारिश हो जाए, बरखा हो जाए।

0: ओकर बाद ही हमन तैयारी ला के हफ्तो पूरा कर पाब नहीं।
1: हाँ
0: ऐसो का का लगाए वाला है योगेश भाई?
1: अभी तो धाने लगावो भैया।
0: है ना बहुत सुगर हमर छत्तीसगढ़ धान कर कटोरा और वही
1: हाँ
0: हिसाब से हमर खेती भी।
1: हाँ
0: बाकी आज कौन सा गीत सुनवाई राउर के गांव कर गीत में?
1: लक्ष्मण मस्तूरिया जी का आवाज में कोई भी बढ़िया से गीत सुनवा दे हो।
0: बहुत सुगर राउर पसंद है तो भाई राउर के सुनवा थी, राउर कर पसंद कर ये सुगर टन छत्तीसगढ़ी लोक गीत।

0: हेलो।
1: हेलो गांव कर गीत।
0: हाँ भैया, राम राम।
1: राम राम भैया, कौन और कहां ले बोला थी?
0: मैं चंद्रभान रजवाड़े बात करता हूँ, गांव अनुजनगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ ले।
1: बहुत बहुत स्वागत है चंद्रभान भाई गांव कर गीत में राउर के।
0: धन्यवाद करत हूँ भैया। और सुनाओ भैया, कैसे हो आप? मन बड़ दिन दे के बाद आप मन से बात हुआ है।
1: देखी भाई, ये दे सुघर सुघर है सब चीज। आओ चटिक कहब तो बरखा पानी करे दे भाई, इंतजार होवत है। काबर की कहो कहो गारा घाटा तो कहो कहो तूफान संग आंधी।
0: पानी के बुरा हो मन करत है कि कल पानी बरसा है गिरे और हमारे खेती बाड़ी के काम बुटा रहा मन झटपट करी।
1: तो तैयारी मन भाई पूरा होए गिन राउर खेती कर?
0: हाँ भैया, दे खाद डाले के काम करत है और कहिया तो जहाँ पानी उनी का अपन जुगाड़ हवे ते थारा घरों मार ढाले हैं हमन।
1: तो का लगाए कर तैयारी है ऐसो?
0: तो अभी तो धान के थारा डाले हैं ना, ओकर संगे संगे अभी अरहर होगी, मूंगफली होगी और मकई घलो लगाए के तैयारी चलत है। तो ओकरे तैयारी में लगे हैं ना, पानी के इंतजार घलो करत हन।
1: तो थरहा कर दे ही कि अभी करब?
0: तो भैया कर दे हैं, 18 किलो के थारा डाल दे हैं कल। और वही 20 किलो के आसपास के और थारा घलो करब, तो करब भी यही इंतजार था कि पानी गिर जाती तनिक मनिक थारा डालते हैं।
1: तो देखी जोड़ घटाव कर के अगर कही तो 20-25 दिन राउर घर दे रोपा शुरू।
0: वही इंतजार में हैं कि पानी घलो गिरती और तैयार होती तो टेबल घलो हवे अपन तो ऊपर काम बुता चालू करते रहते हैं। पानी घलो गिर जाती तो भी 200 जगह की खेती बाड़ी लगाते हैं।
1: बहुत सुघर भाई, देखिए दे भाई हमर अगोरा है, इंतजार है और हमरे दे कहत ही भाई बरिसो पानी हमर देसे। तो कौन गीत आज राउर के सुनवाई गांव कर गीत में?
0: तो दे भैया दे आप मन कोनो गीत सुना दिया मन पसंद कर तो बढ़िया रही है।
1: तो लगी सुनवा थी राउर के हमर पसंद कर सुघर।

0: हेलो गांव कर गीत।
1: इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: बहुत बहुत स्वागत है राउर के इंद्रभान भाई गांव कर गीत में।
1: हाँ दादा, एकदम दादा मौसम एकदम बादल करी से और दोपहर में धूप करी से मौसम चला थे दादा।
0: बहुत बढ़िया भाई, बाकी जोहत ही हमरे की बरखा पानी कब गिरे तो खेती पाती शुरू हो।
1: आज दादा बरखा बरसात मौसम का तो मुरा मध्य वाला कोई जीत का सुना दिया और मौसम होते दादा, और उसके बाद अभी नेटवर्क भी गड़बड़ चलत रही तो चला लग गई तो बढ़िया भी तो सेहत का विशेष ध्यान रखना है और खेती बाड़ी जो करना है कर लेना है और बरसात से पहले पूरा जरूरी काम निपटा लेना है।
0: बहुत सुघर भाई, ये देख खेती पाती कर समय आएगी से अब हमरे ये देख भाई अर्झाव काम बूता में नहीं।
1: हाँ
0: हाँ, तो लगी इंद्रभान भाई राउर के सुनवा थी सोच राउर पसंद कर सुघर गीत।

0: हाँ भैया, जय जोहार गा।
1: जय जोहार। कौन और कहाँ ले बोला थी?
0: जी सुखराम सिंह मरावी बोला था भैया, ग्राम कौशलपुर भैंसा मुड़ा भैया।
1: बहुत बहुत स्वागत है राउर। देखी भैंसा मुड़ा क्षेत्र ले फोन करे ही। राउर बताई भाई, राउर तरफ अभी मौसम हर कैसे है?
0: मौसम तो भैया बदरी बदरी छाए हवे ही, धान उनका थरा करथन भैया।
1: तो थरहा शुरू कर दे ही, तो पानी कैसे व्यवस्था बनान राउर?
0: जी भैया ऊपर गए पानी रहते या उठे तालाब वगैरह भी हवे।
1: अच्छा, तालाब मन से भाई सिंचाई कर सुविधा राउर जगह है नहीं?
0: हाँ हाँ
1: तो कितना किलो कर थरहा अभी कर धारेन?
0: यार शुरुआत करे थी भैया 3 किलो के।
1: अच्छा, आज ले शुरू करे ही। और भाई 2-3 दिन में मुके लगेल राउर टूटराय देव थरहा वाला काम।
0: हाँ भैया 2-3 जगह बचे हवे।
1: तो भाई एकर हिसाब से तो अगर जोड़ी तो 20-25 दिन में राउर रोपा शुरू कर देव।
0: नहीं भाई थोड़ा गैप गैप करके बुनब तो तनिक आने रहे, नहीं तो हरी से जाते सब मन बगरा एक संगे हो जाते हैं।
1: छत बदाया जाए ते कर नहीं?
0: हाँ भैया
1: बहुत सुगर बहुत सुगर। धान कर अलावा राउर आऊ का चीज अभी लगा बरखा कर समय में?
0: अभी तो भैया बस वही धान के थोड़ा कर थी, बाकी फिर वही रहर उहर के करब
1: है ना। मकई घलो लगा?
0: हाँ भैया।
1: बहुत सुगर भाई। देखी राउर रोजक बाजार नजदीक कहाँ जगह?
0: रामानंद नगर श्रीनगर पड़ के भैया 3 किलोमीटर घर से।
1: अच्छा अच्छा, तो भाई देख खेती पाती कर जो सामान है ते मतलब वही पहुँचात हो?
0: हाँ भैया हाँ।
1: बहुत सुघर बहुत सुघर। बाकी गीत आज देखी गांव कर गीत में कौन सा सुनब राउर बताई भाई? राउर फरमाइश
0: विजय सरदार के सुना दिया भैया, सबज गाना मन कर सब बने बने हमें।
1: बहुत सुघर पसंद करे ही भाई, बहुत सुघर गीत रथे मन कर। तो लगी राउर के सुनवा थी विजय सरदार और उनकर संगता मन कर गाल सुघर।

0: हेलो।
1: हाँ हेलो, गाँव कर गीत।
0: राम राम जय जोहार भी।
1: राम राम जय जोहार। कौन और कहाँ ले बोला थी?
0: नाम घर ले माखन वर में बोला था भैया।
1: बहुत बहुत स्वागत है राउर के माखन भैया गाँव कर गीत में।
0: आप मन बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
1: बताई भाई, देखी काम बूता कहाँ करत
0: है? खेती बाड़ी के काम में लगे भैया, साफ सफाई काम हो गए है। अब काहे वर्षा के इंतजार है पानी के, तो फिर खुर्रा बुआई चली भी है।
1: का चीज कर खेती करे वाला ही राउ रे धार।
0: अभी का है कि भैया धान के खुर्रा बोनी चली भी है, बात का है मेड़ पार में तिली है, रायर है, एकर मन के सब लगाई चली भैया बाद में।
1: बहुत सुघर बाकी। देखी भाई, बरखा कर इंतजार है, का कहना चाहत थी? कितना दिन में बढ़िया बरखा होए कर संभावना है?
0: अब का है कि भैया 20 से 22 जून के आसपास पहुंचे के संभावना है भैया, मानसून
1: है ना,
0: ओकर बाद फिर धान बोरा काम चली रही है।
1: तो जम किसान तो फिर ओकर बाद
0: है कि भैया साथ साथ में पेड़ पौधा लगावर बढ़िया, गड्ढा उड्ढा खोदाई के मतलब गोबर खट्टा खाद भर के रखे भैया।
1: बहुत सुघर समय है अभी।
0: वो का है कि 3-4 पेड़ पीपल है और 2 पेड़ नीम के पौधा तैयार करे।

0: देखी बहुत सुघर समय है, देखी यदि पौधा लगाए कर अभी नहीं।
1: अरे भैया काहे कि पेड़ पौधा लगाबो तभी आने वाला पीढ़ी पर पर्यावरण में सहायक हुई भैया।
0: बिल्कुल भाई, आए वाला पीढ़ी ला बढ़िया पर्यावरण देना है तो अभी समय ऊपर हमन ला पौधा जरूर लगाना चाहिए और अपन पर्यावरण ला बचाना भी चाहिए।
1: हाँ ना भैया।
0: हाँ हाँ माखन भाई, सुघर गोठ करत ही राउर। बाकी अब बताई गांव कर गीत में कौन सा लोक गीत सुनवाई राउर के?
1: दुर्वारा मरकाम के सुना दो भैया, उठो जवान किसान जागो रे।
0: लगी राउर बहुत सुघर गीत पसंद करे ही तो राउर के सुनवा थी।

0: कुरिया माँ छित कहे हमर कुरिया,
1: छित कहे हमर कुरिया, छित कहे हमर कुरिया।
0: छत्तीसगढ़ के भूया माँ छित कहे हमर कुरिया,
1: छित कहे हमर कुरिया, छित कहे हमर कुरिया।
0: गाँव के ताई दीदी बहनी बड़े अब्बड़ है मोर प्रिया,
1: अब्बड़ है मोर प्रिया, अब्बड़ है मोर प्रिया।
0: गाँव के ताई दीदी

0: गोट करे कर
1: मौका
0: नहीं।
1: भेटाना चाहिए भैया, सब श्रोता मन ला भी भेटाना चाहिए, और भैया आप मन से बात करे का मौका मिलना चाहिए,
0: जम झन के मौका मिलना चाहिए, चाहे गोट करे वाला आदमी किधरों से हो, हमर तरफ से चाहे राउर तरफ से।
1: हाँ कि आप मन का कार्यक्रम ला हमन सुनते च रथन, लेकिन का है कि आप मन ले बात हो जाते तो भाई हमर खुशी दुई गुना आउ बढ़ जाते।
0: देखिए अब हमर गोट राउर मन से होल नहीं तो हमर चार गुना हो जाए,
1: चार गुना हो जाते। हाँ भैया
0: हाँ, बरखा गिर गई से तो तैयारी मन कैसे चलत है?
1: तो बरखा तो गिरी से भैया, अभी दुए तीन दिन हो से
0: तो लगी भाई सुघर गोट कर बात, गीत घलो बताई कि कौन सा सुघर गीत आज सुनब?
1: तो मोला सर गुजिया गीत सुना देता भैया, अभी एगोट पहले का जो गाना कभी कभी सुने ला मिलते कि झिमिर झिमिर बरसे पानी, ऐसे करके गाना हवे सर गुजिया गीत। संगवारी मन का नाम भी मैं लेहे चाहत हूँ भैया।
0: स्वागत है लेगी ले।
1: हाँ हमारे श्रोता भाई हमें तीजन सिंह मराबी, हमें मधुसूदन प्रजापति, कुलेश्वर राजवाड़े, हमें घनश्याम प्रजापति, और मोर लड़का हमें भैया प्रशांत और रत्नेश प्रजापति।
0: वाह सुघर लगी तो।
1: हाँ और मोर संगे संगे मैं एक ठो और श्रोता हवे बिहारी लाल।
0: हाँ
1: हाँ ओकर संग मैं वो हर रेडियो सुनते च रहते। हाँ हाँ
0: चली तो राउर जम घर परिवार और संगवारी मन के जम के सुनवा थी, राउर पसंद करिए सुघर कन सरगुजिया लोक गीत।

0: हेलो गांव कर गीत।
1: हाँ भैया, राम राम।
0: राम राम भैया, कौन और कहां ले बोला थी?
1: हाँ बीनू भैया ला राम राम। और मैं मानिक राम प्रजापति बोला था भैया, राजापुर रसरा पर।
0: बहुत बहुत स्वागत है मानिक भाई राउर के।
1: हाँ आप मन से जबर दिन का बाद में बात हुआ थे भैया।
0: हाँ यही बात ला देखी महू कहे वाला रहन कि भाई नगद दिन है
1: हाँ
0: गोट। अब देखी सब झनला हमन ला मौका भेटाना चाहिए।

0: श्रोता भैया बहनी हो, एही गीत कर साथ हमर गांव गवई कर लोक संस्कृति से जुड़ल फोन इन फरमाइसी कार्यक्रम गांव कर गीत समेटे कर बेरा होगी से। बाकी जाति जवाति यात्रा जरूर कहूँ, बरखा पानी कर संभावना बनत है और आए वाला समय में बढ़िया बरखा होए कर संभावना है। तो राउर मन अपन खेती पाती से जुड़ल तैयारी ला पूरा कर ली और उकर बाद जैसे बरखा गिर ही अपन खेती पाती कर काम में भिड़ जा। तो एकरे संग आज कर ये गांव कर गीत कार्यक्रम कर प्रस्तुत करता रहिन प्रमेंद्र कुमार और मैं आज राउर मन से गोठ बात करत रहन विनीतेश गुप्त।
1: गांव कर गीत।
2: आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम गांव कर गीत, प्रस्तुति सहयोग विनीतेश गुप्त का, प्रस्तुति प्रमेंद्र कुमार की। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। इस वक्त दिन के 11 बजने को है। अगले कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं, जहां प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें भी करेंगे। इससे पहले कल G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ के देशों की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
4: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
3: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए डिजिटल तकनीक तक सुरक्षित पहुंच से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। इन घोषणाओं का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के

सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओमकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे से होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्री शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भी समझौते पर हस्ताक्षर की पुष्टि की है। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने क्रोएशिया के खिलाफ 4-2 की जीत के साथ ग्रुप एल में अपने अभियान की शुरुआत की। ग्रुप के पहले मैच में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 की बराबरी पर रहा। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा विश्व कप मैच में शुरुआती लाइनअप में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सत्य निष्ठा से धन प्राप्त होता है और निस्वार्थ सेवा से प्रसिद्धि मिलती है। निरंतर अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है और कर्म से बुद्धिमत्ता आती है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत के सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महान योद्धा रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के वीर नेतृत्व ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। घरेलू शेयर बाजार आज शुरुआती कारोबार में लगभग सपाट कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स करीब 60 अंक गिरकर 77,096 पर और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ 24,077 के आसपास कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 238.09 मीटर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद में आप गीत सुनेंगे आशा भोसले की आवाज़ में। फिल्म शान का संगीत है आर डी बर्मन का, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने। इस गीत को सुनने की पेशकश हमें लिख भेजी है इंदिरा नगर भंवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा, राजू, जगदीश, गोविंदा, विशाल, पायल, अक्षय कुमार देवांगन। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि, जया, जानवी और तृप्तेश देवांगन। इसी गीत को सुनने की पेशकश हमें लिख भेजी है पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर। इसी गीत को सुनना चाहते हैं एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना, परी गणेश मराठा, कार्तिक भाव मराठा, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता खर्चे, नारायण भाव खर्चे। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नदिया के पार से, आवाज़ है जसपाल सिंह और हेमलता की, संगीत और गीत लिखा है रविंद्र जैन ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं आज़ाद नगर लक्सर हरियाद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राहे और मेहराज जहां। इसी गीत को सुनना चाहते हैं लेवा खेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से, नारायण भावगढ़ से ललिता परी गणेश कार्तिक और स्वाति प्रयाग चौधरी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बेडी से, राजेश सोनी, कंचन गायत्री, वैष्णवी ढोमने, चंचल अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे। इसी गीत को सुनने की पेशकश हमें लिख भेजी है भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु और विनय ठाकुर, सोनाडी से सुब्रत चौधरी और बेबी अनिशा, सिद्ध बाबा भाटापारा से संतोष कुमार वैष्णव, संतोषी वैष्णव, वैभव कान्हा शिवम वैष्णव। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, आपकी पसंद में लीजिए सुनिए। फिल्म यादों की बारात की अगली गीत, गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है आरडी बर्मन का, आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी का। इस गीत को सुनना चाहते हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश कौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, कनेरा मोहल्ला पटियाला पत्ता परिवार से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, वसंत, वंश बत्ता। इस गीत को सुनना चाहते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश कुमार वर्मा, करुणा देवी वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, बठेना से बलकरण अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, चटौदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर ये फरमाइशी गीत।

कार्यक्रम आपकी पसंद में अगले गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमेरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गावड़कर शरीता सिद्धांत और प्रिंस एकांश गावड़कर आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गावड़कर वैशाली गावड़कर श्वेता सुमित गावड़कर कुमारी ध्वनि गावड़कर इस गीत को सुनना चाहते हैं लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और इस गीत को सुनना चाहते हैं श्रृंगेरी से महानदी से बाबा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन मधु देवांगन हिमांशु अंकित देवांगन इस गीत को सुनने की पेशकश हमें लिख भेजी है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले रेखा कामले राखी पारस तपस्या करिश्मा कामले आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म गुरुदेव का गीत आवाजें हैं आशा भोसले अमित कुमार और शैलेंद्र सिंह की संगीत दिया है आरडी बर्मन ने गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने

कार्यक्रम आपकी पसंद में अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म द बर्निंग ट्रेन से। आवाजें हैं आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की, संगीत है आरडी बर्मन का, गीत है साहिर लुधियानवी का। इस गीत को सुनने की पेशकश हमें भेजी है एरोड्रम थाना वंदरा नगर इंदौर मध्य प्रदेश से रेखा, संतोष, शोभा, भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता, सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा, विक्की रघुवंशी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, चांदूर विश्वा, तालुका नांदूरा, जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से, नारायण भाव खड़ से, रक्षा ताई खड़ से, ललिता संजना खड़ से, गणेश और कार्तिक खड़ से इस गीत को सुनना चाहते हैं। डोंगरगांव राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटही से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, सीला और गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी महिमा और नीतू वैद। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम आपकी पसंद में फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे अंजनी त्र्यंबिका लीना अंशुला अंशुतोष और परिवार के सदस्य इसी गीत को सुनना चाहते हैं। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार रोशन कुमार बंसीलाल रेखा देवी श्रीवास्तव। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जयतेग बिरक और मीका बिरक। महादेव घाट अमलेश्वर से इस गीत को सुनना चाहते हैं डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथिलेश ठाकुर तारिणी ठाकुर सूरज ठाकुर ज्योति ठाकुर रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

आप सुन रहे थे आशा भोसले, माफ़ कीजिएगा, आप सुन रहे थे कुमार सानू अलका याग्निक के सरों में, फिल्म कुली नंबर वन का ये गीत, संगीत था आनंद मिलिंद का। कार्यक्रम आपकी पसंद में, लीजिए सुनिए ये गीत, जिस गीत को सुनना चाहते हैं। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निहवानी, संगीता निहवानी, आकाश निहवानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़ी, पूजा, सीता, सागर, आयुषी, हनी और हमारे परिवार के सभी सदस्य। कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू, वंदना और श्रीवास्तव परिवार इस गीत को सुनना चाहते हैं। चार मीनार चौक।

पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़ी, पूजा, सीता, सागर, आयुषी, हनी और हमारे परिवार के सभी सदस्य। कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू, वंदना और श्रीवास्तव परिवार इस गीत को सुनना चाहते हैं। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी, झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश, कमल, सेतपाल, भूमिका, सुशीला और दादी, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधली, आरती जोंधली। लीजिए सुनिए फिल्म हकदार का ये गीत, आवाजें हासा भोसले और मनहर उदास की। संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, गीत लिखा है राजेंद्र किशन ने।

राजेंद्र किशन के इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद बस यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:55 होने वाले हैं। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

आज सुबह में आचार्य पदारोहण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद शाम करीब 4 बजे शांति नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री बिरला आज शाम दिल्ली लौट जाएंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कल प्रदेश के 3 अलग अलग जिलों में दबिश देकर भ्रष्टाचार के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने कल भिलाई नगर निगम से सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर को भ्रष्टाचार के एक मामले में हिरासत में लिया। इसके अलावा धमतरी में विद्युत यांत्रिकी विभाग में पदस्थ प्रोग्रेस मैन को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं एसीबी ने जशपुर नगर में आरईएस विभाग के एसडीओ को भी 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कोरिया जिले की कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने एक आदेश जारी कर महल पारा बैकुंठपुर नौगई के साथ ही कटघोड़ी स्थित क्रेशर प्लांट एरिया में धारा 163 लागू कर दी है। जारी आदेश के अनुसार किसी भी प्रकार के हथियार और विस्फोटक सामग्री पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जुलूस, धरना प्रदर्शन और आम सभा पर प्रतिबंध लगाया गया है। गौरतलब है कि कोरिया जिले के कटघोड़ी गांव में भाजपा नेता भरत सिंह सहित 3 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। योग दिवस के आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राज्यपाल रमेन डेका राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य अतिथि में सरगुजा जिले में सुबह 7 बजे सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. अमर सिंह राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इसी प्रकार अन्य जिलों में भी आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राजधानी रायपुर में पहली बार ईस्टर्न स्लैम 2026 का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत 22 से 27 जून तक बूढ़ापारा स्थित स्क्वैश कॉम्प्लेक्स में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसमें सिंगापुर सहित भारत के 21 राज्यों से लगभग 350 जूनियर और सीनियर खिलाड़ी भाग लेंगे। टूर्नामेंट के लिए $2,000 की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा 19 शासकीय भर्ती परीक्षाएं पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से लिए गए साक्षात्कार का प्रसारण आज किया जाएगा। इस विशेष भेंटवार

वार्ता को रात 8:15 से 8:30 तक सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आज ऐसा ही मौसम रहेगा। बेमेतरा जिले के शासकीय पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में आज एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित निजी संस्थानों द्वारा 1600 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं धमतरी के कंपोजिट भवन स्थित जिला रोजगार कार्यालय में 23 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा 690 पदों पर भर्ती की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। एसीबी ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में भ्रष्टाचार के मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग के अनुसार मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं, लीजिए सुनिए एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है आर्यनगर गोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धेशीर बुरजोड़ जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
3: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी

0: बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लैगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लैगून सामान्यतः उथला होता है। यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लैगून हैं, चिल्का झील लैगून और लक्षद्वीप लैगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लैगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओं, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्यौहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओं, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओं हमारी आज की जानकारी विश्वविख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची।

0: के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
1: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं।

आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधवदास मसनत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है।

0: तुम बेखटके यहाँ आया करो।
1: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
0: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना, जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
1: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया, भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
0: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो?
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
0: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
1: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, वो बोली,
2: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है, दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी

0: मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
1: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
0: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो?
1: हाँ?
0: मैं तुम्हें नहीं जानती।
1: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
0: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए।
1: चिड़िया, तो मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
0: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना, उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
0: वो सोना क्या चीज होती है?
1: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
0: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
1: ठहर। इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है,

0: और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
0: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना।
2: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
1: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
0: हाँ हाँ, जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
1: सेठ, मुझे देर हो रही है।
0: देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
1: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
3: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
4: जी मालिक।
2: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
0: हाथ से निकल गई।
2: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
1: माँ
2: ने बच्ची को छाती से

0: इपटा कर पूछा।
1: क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
0: पर बच्चे कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव और FM बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम चयन। आज मैं आपको एक ऐसे अनुभव के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका इंतजार लगभग हर कोई करता है। गर्मी की तपती दोपहर, तेज धूप और उमस भरे दिनों के बाद जब आसमान में काले बादल घिराते हैं तो मन में एक अलग ही उत्साह जाग उठता है। उम्मीद है आप सभी श्रोताओं ने आज के कार्यक्रम चयन का जो शीर्षक है उसका अंदाज़ा लगा लिया होगा। जी हाँ, आज का शीर्षक है बरसात, बारिश या सावन। अचानक ठंडी हवा चलती है, आसमान से पानी की छोटी छोटी सुनहरी बूंदें जब धरती पर गिरने लगती हैं, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू चारों ओर फैल जाती हैं, पेड़ पौधे जैसे खुशी से झूम उठते हैं और वातावरण में ताजगी भर जाता है। बच्चों के लिए भी यह समय किसी त्यौहार से कम नहीं होता। वे बारिश में भींगते हैं, कागज़ की नाव बनाते हैं और खूब आनंद लेते हैं। किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है क्योंकि यह मौसम उनकी फसलों के लिए नई उम्मीद और खुशहाली लेकर आता है। आप भी सोच रहे होंगे या मन में विचार आ रहे होंगे कि ये बारिश, ये बरसात आपके लिए भी ढेर सारी चीज़ें, ढेर सारी खुशियां लेकर आती हैं। इस मौसम के अलग अलग अलग अलग तरीके के उपयोग हैं। सब अपनी अपनी तरह से इस मौसम का आनंद लेते हैं। प्रकृति का यह सुंदर रूप हमें सिखाता है कि हर कठिन और गर्म दौर के बाद राहत और खुशियों का मौसम भी आता है। इसलिए हमें प्रकृति के इस अनमोल उपहार का सम्मान करना चाहिए और पर्यावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास भी करना चाहिए। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम चयन में बरसात से ये गीत, जिसे हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ में। गीत है समीर का, संगीत दिया है नदीम श्रमण ने, फिल्म है फूल और कांटे।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश, आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपनी पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुनिए कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।

बादल केवल पानी के बूंदे ही नहीं लाते, बल्कि अपने साथ खुशियाँ, राहत और जीवन भी लेकर आते हैं। बिल्कुल सही, जब बादल बरसते हैं तो सूखी धरती तृप्त हो जाती है, खेतों में हरियाली छा जाती है और किसानों के चेहरे हमारे चेहरे खिल उठते हैं। वर्षा किसी वरदान से कम नहीं, अच्छी बारिश से फसलें लहलाती हैं और उत्पादन बढ़ता है। बारिश का मौसम और बच्चों का बाहर निकलकर बारिश की बूंदों का आनंद लेना, कागज की नाव बनाना, खेल कूद में मग्न हो जाना, वहीं पेड़ पौधे भी बारिश का स्वागत करते हुए और अधिक हरे भरे दिखाई देते हैं। पूरी प्रकृति, पूरा जहां हरा भरा होता है और उस हरियाली को हमारा मन जब महसूस करता है तो लगता है ये प्रकृति, ये बारिश कितनी सुंदर है, कितनी हसीन है। पक्षियों की चहचहाट और ठंडी हवाएं वातावरण को और भी सुहावना बना देती है। पूरी तरफ हरियाली, पूरी तरफ जीवंत वातावरण, जो हमारे उखड़े मन को, हमारे उदास मन को भी जीवंत कर देता है। या यूँ कहें, ये बारिश ही केवल बारिश का मौसम नहीं, जीवन जीने का मौसम है। आइए इस बारिश को इस गीत के माध्यम से हम अनुभव करते हैं।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडिया वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।

आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में तुराज अजीम सिराजी का लिखा गीत, संगीत दिया था शारिब तोसी ने, फिल्म थी जैकपॉट। बादलों का बरसना अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टि से जलचक्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। सूर्य की गर्मी से समुद्रों, नदियों, तालाबों का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। यही भाप बादलों का रूप लेती है और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा के रूप में धरती पर पानी बरसाते हैं। इस प्रकार ये प्रकृति जल का संतुलन बनाए रखती है। बादलों का बरसना केवल मौसम परिवर्तन नहीं बल्कि यह जीवन, आशा, समृद्धि का संदेश भी है। आइए इस बरसात हर बूंद का सम्मान करेंगे, जल संरक्षण का संकल्प लेंगे, क्योंकि ये बरसात यूं ही आती है और ढेर सारी चीज़ें हमें दी जाती हैं जो हमारे लिए, आपके लिए जीवन का स्रोत बनती है। ये भी महसूस करना बेहद ज़रूरी है कि कैसे ये बारिश इस प्रकृति के लिए जीवन है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। संगीत है आरडी बर्मन का, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, फिल्म है जैसा को तैसा।

0: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
0: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
1: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
0: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 0777423006000। नंबर एक बार फिर 0777423006000।
2: इस अंतराल के पश्चात आइए बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम चयन की ओर, जिसमें आज का शीर्षक है ये बारिश ये बरसात और उसकी ये हसीन बूंदें। बारिश का मौसम हमें प्रकृति के करीब आने का अवसर देता है। बारिश की रिमझिम फुहारें, पक्षियों की मधुर आवाज़ें और हरियाली से भरे दृश्य हमारे मन को शांति प्रदान करते हैं। लेकिन इस मौसम में हमें अपनी सेहत और स्वच्छता का भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। साफ पानी का उपयोग करें, जल भराव वाले क्षेत्रों से बचें और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। बारिश की एक एक बूंद हमें जल के महत्व का भी एहसास कराती है, इसलिए जल संरक्षण का संकल्प लेना हमारी जिम्मेदारी और हमारी सूझबूझ का निशानी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस सुंदर मौसम का आनंद ले सकें। इस भीगे हसीन मौसम का आप भरपूर आनंद लीजिए श्रोताओं, प्रकृति की सुंदरता को महसूस कीजिए और बारिश की हर बूंद का सम्मान कीजिए। इस प्यारे संदेश के साथ आइए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम चयन का ये अंतिम गीत श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार की आवाज़ में।

आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार की आवाज़ में गुलजार का लिखा गीत, संगीत था यार रहमान का, फिल्म थी गुरु। गुलजार किसी गीत के साथ एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का ये सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सेंट गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर मिस्ताल एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपरे।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों के उपयोग से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा

0: अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खेती के बाद का पुनः प्रसारण। जानकारी का विषय है नीम उत्पादों का महत्व।
2: नीम का उत्पत्ति स्थान भारत है। नीम 50 से 100 मीटर ऊंचाई एवं लगभग 1300 mm वर्षा वाले क्षेत्र में भली भांति 10 से 25 मीटर तक वृद्धि करता है। इसे संस्कृत में एरिस्टा और मिम्बा कहते हैं, जिसका अर्थ हिंदी में सर्व गुणकारी और स्वास्थ्यवर्धक होता है। नीम वृक्ष के सभी भाग, पत्ती, फल, जड़ एवं छिलका रोगाणु रोधक, जीवाणु एवं विषाणु नाशक एवं कर्क रोग रोधी होता है। नीम का एक सामान्य वृद्धि वाले वृक्ष से 37 से 50 किलोग्राम प्रति वर्ष फल मिलता है। लगभग 1 क्विंटल फल से 60 किलोग्राम सूखे फल 30 किलोग्राम प्राप्त होता है। फल गुदा 49 से 50% होता है। देश विदेश के विभिन्न वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि जहां रासायनिक दवाओं का प्रयोग अधिकतर किया जा रहा है, वहां कैंसर एवं नपुंसकता के मामले अधिक दिखाई पड़ते हैं। यह निश्चित है कि इसका दूरगामी परिणाम और भी भयानक होगा। रासायनिक दवाओं का दुष्प्रभाव न सिर्फ जीव पर पड़ता है, अपितु यह मृदा की कार्यशीलता एवं मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न लाभदायी सूक्ष्म जीवों पर भी पड़ता है। इन सभी परेशानियों को बढ़ने से रोकना हमारे लिए चुनौती और नैतिक जिम्मेदारी है। भविष्य को स्वस्थ एवं विष मुक्त रखने में नीम उत्पाद का कृषि में उपयोग एक महत्वपूर्ण पहल है। नीम एक महत्वपूर्ण कीट एवं रोग रोधी तत्व है, जिसका उपयोग कृषि में अधिकाधिक करना अति महत्वपूर्ण है। नीम का प्रयोग मुख्य रूप से नीम तेल, नीम केक, हरी खाद, घोल एवं पाउडर के रूप में किया जाता है। नीम तेल सूखे हुए फल की पिराई कर निकाला जाता है। वर्तमान में नीम तेल का प्रयोग धान उत्पादन में प्रमुखता से किया जा रहा है। इसके छिड़काव से पौधे या पत्ती की सतह पर एक कड़वा सतह बन जाता है, समस्त प्रकार के कीटों से पौधों की रक्षा करते हैं। नीम तेल का 30 ml प्रति नैपसेक स्प्रेयर के हिसाब से उपयोग करते हैं। इस प्रकार 1 एकड़ के फसल में 300 ml नीम तेल पर्याप्त होता है। नीम तेल का प्रयोग प्रभावी ढंग से करने हेतु साबुन का घोल, शैम्पू इत्यादि का प्रयोग आवश्यक है। इसके प्रयोग से पौध भाग में नीम तेल ठीक प्रकार से चिपक जाता है। नीम के एक सूखे बीज से तेल निकालने के पश्चात बचा हुआ उत्पाद होता है। इसमें नाइट्रोजन 3.56% होता है। इसका प्रयोग न सिर्फ नाइट्रोजन प्रदान करता है, बल्कि यह विनाइट्रीकरण प्रक्रिया को कम करता है। यह उर्वरक एवं कीटनाशी के रूप में भी प्रयोग होता है। भूमि में उपस्थित चिचड़ी को नष्ट करता है, मृदा को स्वस्थ बनाता है, मृदा में कार्बनिक तत्वों की वृद्धि कर मृदा संरचना को बेहतर करता है। नीम खाद संयुक्त रूप से जीव, पौधे अथवा दोनों से प्राप्त हुए पदार्थ होते हैं, जिसका उपयोग मृदा उर्वरता, पौध वृद्धि, फसल उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होता है। यह वातावरण के अनुकूल होने के कारण वर्तमान में इसका उपयोग बढ़ रहा है। नीम नाइट्रोजन, पोटाश और सूक्ष्म तत्व जैसे सल्फर, कैल्शियम इत्यादि की वृद्धि करता है। नीम खाद का प्रयोग यूरिया अथवा अन्य कार्बनिक खाद के साथ मिलाकर सुगमता से किया जा सकता है। नीम कोटेड यूरिया के रूप में प्रदाय यूरिया का पौध उपयोग प्रतिशत स्वतः ही बढ़ जाता है, क्योंकि यह धीरे धीरे घुलता है। साथ ही भूमि की उर्वरता पर बहुत कम नुकसान होता है, क्योंकि भूमि की उर्वरता नत्रजन, फास्फोरस एवं पोटाश की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यह तत्व विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा वाष्पीकृत कर दिया जाता है। नाइट्रोजन कोटेड यूरिया वाष्पीकृत करने वाले बैक्टीरिया और उसके क्रियाविधि को कम करता है, जिससे भूमि में अधिक समय तक उर्वरता बने रहने में सहायता मिलती है, जिसके कारण नाइट्रोजन कोटेड यूरिया सामान्य यूरिया की मात्रा में फसल में कम डालना पड़ता है। पाउडर के रूप में नीम के फल, जड़ एवं छाल को कूट कर पाउडर बनाया जाता है तथा उसका प्रयोग किया जाता है। यह मृदा को फसल अनुकूल बनाता है। इसका प्रयोग बीज बुआई व सिंचाई के समय किया जा सकता है। या मृदा में पाए जाने वाले हानि

0: हानिकारक कीट व सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है एवं लाभदायी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक होता है। नीम उत्पाद विभिन्न कीटों के पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव न डालकर हार्मोनल तंत्र पर प्रभाव डालता है। फलस्वरूप कीटों में विभिन्न रसायनों दवाइयों के लिए सहनशीलता नहीं बढ़ पाती। नीम कीटनाशी मृदा उर्वरता बढ़ाने वाले पौध वृद्धि हार्मोन तथा कीट विकर्षण करने वाला होता है। नीम के पौध भागों में उपस्थित एजारीडेरेक्टिन सेलानिंड एवं मेलांड्रियोल नामक रसायनों के कारण यह कीटों पर प्रभाव डालता है। कीट विकर्षण व पौध भाग को कीटों के लिए अरुचिकर बनाने में, कीट के भोजन को अरुचिकर बनाने में, कीट जीवन चक्र को प्रभावित कर वृद्धि नियामक जीवन चक्र को प्रभावित करता है।
1: आप सुन रहे थे खेती की बात का पुनः प्रसारण। जानकारी का विषय था नीम उत्पादों का महत्व। हम आकाशवाणी अंबिकापुर से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 होने वाले हैं। लीजिए सुनिए शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन सुन रही सभी बहनों को ऋतु सिंह का नमस्कार, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आप सभी का। बहनों, कहते हैं स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और इस पूंजी को सुरक्षित रखने का सबसे आसान तरीका छिपा है हमारे अपने ही घर की रसोई में। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहनों, जहां बाहर का हानिकारक तला भुना और पैकेट बंद खाना हमारी थाली में जगह बनाता जा रहा है, वहीं हमारे घर की सादी दाल रोटी, हरी सब्जियां, दही, छाछ और मौसमी फल न केवल स्वाद देते हैं बल्कि पूरे परिवार को स्वस्थ भी रखते हैं। ऐसे में विशेष रूप से हम महिलाओं की भूमिका यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। एक माँ, बहन या गृहिणी के रूप में वह पूरे परिवार के स्वास्थ्य की संरक्षक होती है। जब रसोई में प्रेम के साथ पौष्टिक भोजन तैयार होता है तो वह केवल पेट नहीं भरता बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच अपनापन और संस्कार भी मजबूत करता है। हमारी दादी नानी के समय से चली आ रही कई पारंपरिक चीज़ें आज भी स्वास्थ्य का खजाना है, जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, मूंग की दाल, अंकुरित अनाज, घर का बना दही और छाछ। ये भोजन शरीर को आवश्यक पोषक तत्व देने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। बहनों, इसके विपरीत फास्ट फूड और अधिक चीनी, नमक या तेल वाले खाद्य पदार्थ धीरे धीरे मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी समस्याओं को बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को भी घर में बने भोजन की महत्ता को समझाएं और उन्हें जंक फूड की बजाय पौष्टिक विकल्पों की आदत डालें। बहनों, स्वस्थ परिवार की शुरुआत रसोई से ही होती है। यदि हमारी थाली रंग बिरंगी सब्जियों, दालों, अनाज और फलों से सजी होगी तो निश्चित ही हमारा जीवन भी खुशियों और स्वास्थ्य से भरा होगा। तो आइए, इन्हीं बातों के साथ हम ये संकल्प लें कि स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता देंगे और अपने घर की रसोई में छिपे इस अनमोल खजाने को पहचानेंगे और आने वाली पीढ़ियों तक इसकी परंपरा को बनाए रखेंगे। तो बहनों, हमें बस यही याद रखना है कि महंगे भोजन नहीं बल्कि संतुलित और घर के बने भोजन से अपने जीवन को स्वस्थ बनाना है। बहनों, इस परिचर्चा के बाद अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं आपकी हमारी बातचीत के बाद, और सुनते हैं कार्यक्रम में ये किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में गाया हुआ बहुत ही बढ़िया सा गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: और बहनों, इस जरूरी संदेश के बाद अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। बहनों देखिए, अच्छा स्वास्थ्य हम सभी चाहते हैं और इसके लिए कुछ ना कुछ करते भी रहते हैं।

लेकिन यदि ये कुछ ना कुछ विशेषज्ञ की सलाह के साथ नियमितता में अपना लें तो बदलाव हमें ज़रूर देखने को मिलता है। और इसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा गुलदस्ता क्रम, जिसमें हम प्रस्तुत कर रहे हैं भेंट वार्ता, जिसमें हमारी रेडियो सखी सोफिया ने बात की है डॉक्टर भारती परिहार से। और ये कार्यक्रम है आज योग दिवस पर विशेष। योग दिवस में कुछ दिन शेष हैं बहनों, लेकिन फिर भी हम आपके लिए खास कार्यक्रम लेकर आए हैं। और इसमें डॉक्टर भारती से रेडियो सखी सोफिया की बातचीत का विषय है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। तो आइए शुरू करते हैं आज का गुलदस्ता क्रम।

0: नमस्कार बहनों, मैं हूँ आपकी रेडियो सखी सोफिया और आज लेकर आई हूँ आपके लिए गुलदस्ता का ये नया क्रम। बहनों, जैसा कि आप जानती हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम 21 जून को मना रहे हैं। इस विशेष अवसर पर आज हम बात करेंगे योग, प्राणायाम और ध्यान की, जो न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि मन को शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भी भर देते हैं। बहनों, आज हम महिलाएं परिवार, कार्य और समाज की अनेक जिम्मेदारियां निभा रही हैं। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है। अक्सर हम दूसरों की देखभाल में स्वयं को भूल जाते हैं, जबकि स्वस्थ रहना ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। योग हमें तनाव से मुक्ति, मानसिक शांति और नई ऊर्जा प्रदान करता है। यह केवल व्यायाम नहीं बल्कि बेहतर और संतुलित जीवन जीने की एक सुंदर कला है। तो आइए इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ इस स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर भारती परिहार, जो कि एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर भारती, आपका आज के घर आंगन के इस गुलदस्ता क्रम में स्वागत है।
1: नमस्ते
0: भारती जी। सबसे पहले हमारी श्रोता बहनों को बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का महत्व क्या है और आज के समय में योग महिलाओं के लिए क्यों ज़रूरी है।
1: जैसा कि सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को योग के प्रति जागरूक करना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना और अपने आप को स्वस्थ रखना। इसमें महिलाओं के लिए योग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग जो है वो महिलाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। अगर वो ऊर्जावान रहेंगी तो पूरे फैमिली को वो संभाल सकेंगी, अपने शरीर का ध्यान रख सकेंगी और दूसरों के शरीर का भी ध्यान रख सकेंगी।
0: जी हाँ, बिल्कुल। और डॉक्टर भारती, जैसे कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आयुर्वेद और योग को एक दूसरे का पूरक माना जाता है, महिलाओं के संपूर्ण स्वास्थ्य में इन दोनों की क्या भूमिका है?
1: आयुर्वेद जो है वो आयु का वेद है, अर्थात जो जीवन कैसे जीना है ये पूरा आयुर्वेद में वर्णित है। उसमें योग की बताई गई है, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि शरीर, मन, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इन सब के लेवल पे जब हम काम करते हैं तभी जीवन स्वस्थ रहता है। और योग भी वही कार्य कर रहा है कि शरीर, मन और आत्मा के लेवल पर काम कर रहा है। तो आयुर्वेद और योग लगभग एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि दोनों ही स्वास्थ्य की दिशा पर कार्य कर रहे हैं और जीवन को बेहतर बनाने के लिए आयुर्वेद और योग की भूमिका सबके जीवन में महत्वपूर्ण है।
0: जी, और घर परिवार और कामकाज की जिम्मेदारियों के बीच महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देती हैं। ऐसे में योग उन्हें किस तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बना सकता है?
1: घर परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ सचमुच महिलाओं पर रहती हैं, पर ये हर महिला जानती है कि वो उस घर की ऊर्जा है, वो उसकी एनर्जी है। अगर महिला बीमार रहेगी, अगर थकी हुई रहेगी, यदि उसके हाथ पैर में अगर दर्द भी होगा तो भी उसे काम करना पड़ेगा। तो ये हर महिला की एक जिम्मेदारी होती है कि वह अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दे, अपनी ऊर्जा को बना के रखे। और उसके लिए योग जो उनको बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है, क्योंकि योग के माध्यम से एक तो उनकी ऊर्जा बढ़ेगी, दूसरा उनके जो जॉइंट्स है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, तीसरा उनके लंग्स और ब्रेन की कैपेसिटी अच्छी होगी, जिससे उनके पूरे जीवन काल में जो भी हार्मोन में इम्बैलेंस आते हैं वो कभी भी नहीं आएंगे और वो अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे।
0: जी हाँ। और देखिए भारती जी, तनाव, चिंता और अनिद्रा जैसी समस्याएं आज बहुत सामान्य हो गई हैं। मेडिटेशन या ध्यान इन समस्याओं से राहत दिलाने में किस तरह से

0: सहायक है।
1: तनाव, चिंता और अनिद्रा, सचमुच ये आज की बड़ी समस्या है। बहुत सारे एंग्जाइटी, डिप्रेशन और अनिद्रा के लिए बहुत सी दवाइयाँ हर घर में कोई ना कोई खा रहा है, और मेडिटेशन इस पे बहुत अच्छा अपना काम कर सकता है, क्योंकि हम दिन भर कहीं विचारों में रहते हैं, लोगों की बातों पे रहते हैं, कभी किसी काम के स्ट्रेस पे रहते हैं, पर अगर हम कुछ देर शांत बैठते हैं, भले वो शांति आपको उस समय भी आपके टेंशन दिमाग में चल सकते हैं, लेकिन अगर डीप ब्रीदिंग के साथ, स्लो म्यूज़िक के साथ, अगर साइलेंट बैठने की कुछ आदत डालें, 5 मिनट भी सोने के पहले अपने ही बेड में बैठ के थोड़े देर ब्रीदिंग करें या साइलेंट बैठें, वो साइलेंस ही हमारे मानसिक तनाव को कम कर सकता है, हमें एक अच्छी और गहरी नींद प्रदान कर सकता है।
0: और देखिए डॉक्टर साहब, अगर हमारी श्रोता बहनें पहली बार योग शुरू करना चाहती हैं, तो वो कौन कौन से सरल आसन और प्राणायाम अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकती हैं?
1: अगर महिलाएं पहली बार शुरू कर रही हैं, तो उन्हें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और अपनी पहले से जज नहीं करना है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। उन्हें बहुत छोटे छोटे आसन शुरू करने चाहिए, जैसे है ताड़ासन कर सकते हैं, तिर्यक ताड़ासन कर सकते हैं, भुजंग आसन कर सकते हैं, सेतु बंधासन कर सकते हैं, साथ में कुछ सूक्ष्म व्यायाम जैसे जॉइंट्स को थोड़ा मोबिलिटी दे सकते हैं, और सबसे अच्छा तो है उनके लिए यदि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो सूर्य नमस्कार वो शुरू कर सकते हैं, बहुत स्लोली करना प्रारंभ करें। धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ती है, शरीर में ऐसा लगता है कि अब उनके जॉइंट्स है वो मूव कर रहे हैं, तो अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाते हुए आगे बढ़ सकती हैं।
0: सूर्य नमस्कार जैसा कि आपने बताया, ये सभी के लिए बेहतर होता है, तो क्या किशोरियों के लिए या अधिक उम्र वाली महिलाओं के लिए योग के अलग अलग आसन हो सकते हैं क्या?
1: जैसे कि बात हमने की थी सूर्य नमस्कार की, सूर्य नमस्कार हर उम्र के लोग कर सकते हैं, बस इसमें ध्यान ये रखना है कि यदि आपकी शक्ति अच्छी है तो उसे आप इंटेंसिव फॉर्म में, मतलब थोड़ा सा तेज गति से कर सकते हैं, और यदि आप कमज़ोर हैं, थका हुआ महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे उस सूर्य नमस्कार को कर सकते हैं। हर महिला, हर किशोरी, हर उम्र के लिए जो है योग अलग अलग है, उनके प्रकार अलग अलग हैं, उनकी गतियां अलग अलग हैं, पर हमें योग करना चाहिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार।
0: डॉक्टर भारती, एक अहम सवाल है कि क्या प्राणायाम मासिक धर्म से जुड़ी असुविधाओं, हार्मोनल असंतुलन और रजोनिवृत्ति के दौरान होने वाली समस्याओं में भी क्या लाभकारी सिद्ध होगी?
1: देखिए, महिलाओं के लिए हार्मोन का इम्बैलेंस सचमुच आज एक समस्या है, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, दिन भर टेंशन्स है, और उसके कारण जो है वो पूरे हार्मोन अपने इम्बैलेंस में आते हैं। साथ में खान पान भी बहुत महत्वपूर्ण है, पर यदि हम प्राणायाम करते हैं तो मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है, और मस्तिष्क ही सारे हार्मोन का कंट्रोलर है। उस हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए अगर मस्तिष्क को शून्य अवस्था में लाते हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं प्राणायाम के द्वारा, तो बहुत सारे हार्मोन के लेवल सामान्य होते हैं, और जैसे हार्मोन सामान्य होते हैं उनके मासिक धर्म में भी बहुत बदलाव आता है, संतुलित हो जाता है और रेगुलर हो जाता है, और साथ में मेनोपॉजल जो स्टेज आती है उस समय सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस हार्मोन में देखने में आता है, वो भी हम यदि प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, तो वो समय भी आसानी से बीत जाता है।
0: हार्मोनल इंबैलेंस जैसा कि आपने बताया, तो आजकल मोटापा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, इनसे बचाव में योग और आयुर्वेद किस तरह से मदद करते हैं?
1: देखिए, जैसे कि पता है कि सभी को कि मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, या हार्मोन के कोई भी तकलीफें हैं, वो सभी लाइफस्टाइल डिजीज़ के अंतर्गत आजकल माने जाते हैं। लाइफस्टाइल जैसा कि नाम से ही सामने आ रहा है कि लाइफस्टाइल में कहीं गड़बड़ है, इसलिए ये बीमारियां हैं। तो अगर हम योग अपनाते हैं, आयुर्वेद अपनाते हैं, तो हम जो है अपने लाइफस्टाइल को सही कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम, मतलब स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना ये हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए। और उसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छे से वर्णित किया गया है कि हमारा खाना कैसा होना चाहिए, हमारा पीना कैसा होना चाहिए, हमारा आहार कैसा, विहार कैसा होना चाहिए, निद्रा कैसी होनी चाहिए, और हमारी जो योग है वो कैसे होने चाहिए, ऋतु के अनुसार कैसे होने चाहिए, दिन के अनुसार कैसे होने चाहिए, जो लोगों को पता नहीं है। अगर ये पता हो जाए तो वो बहुत चीज़ें अगर अपना लेते हैं तो उनकी बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़

0: वैसे ही नहीं होंगी, और अगर हो गई हैं तो उसकी रिकवरी भी वो जल्दी ही कर पाएंगे।
1: जैसा कि भारती जी आपने बताया कि प्राणायाम के कई प्रकार होते हैं, तो महिलाओं के लिए विशेष रूप से कौन सा लाभदायक माना जाता है और इन्हें करने का सही समय क्या है?
0: प्राणायाम खाली पेट भी कर सकते हैं, कुछ प्राणायाम ऐसे भी हैं जिसे आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, परंतु सबसे अच्छा रहेगा कि आप सुबह करें, और सुबह नहीं कर पाते हैं तो खाना खाने के 3 घंटे के बाद ही कोई भी प्राणायाम करें। प्राणायाम जो है वो धीरे से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी बढ़ाएं। अचानक से बहुत सारा ब्रीदिंग करना उससे क्या होगी, थकान आएगी। धीरे धीरे करते जाएँ, अपने जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपकी कैपेसिटी के अनुसार उसको बढ़ाते जाएं।
1: हाँ देखिए डॉक्टर भारती, एक स्वस्थ माँ पूरे परिवार के स्वास्थ्य की आधारशिला होती है, ऐसे में आप महिलाओं को अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, हर घर की महिलाएं जो हैं वो पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती हैं, बच्चों से लेके बड़ों की, बूढ़ों की, सबकी, और उनका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। और वो स्वस्थ केवल ऐसा नहीं कि 40-50 तक ही रहना है, हमें 60 साल के ऊपर भी एक अच्छी जीवन जीना है और सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ना है। उसमें योग बहुत महत्व रखता है अपना स्थान, क्योंकि योग जीवन की हमारी गुणवत्ता को बढ़ाता है। हम बीमार रह के आगे बढ़ें, उससे बेहतर है कि हम स्वस्थ रहते हुए पूरी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि स्वस्थ जीवन जो है वो योग के द्वारा मिल सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि हर महिला को इसे अपनाना।
1: डॉक्टर भारती, आपने योग, प्राणायाम और ध्यान से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण और उपयोगी पहलुओं पर प्रकाश डाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद बहुत बहुत आपको भी।
1: मैंने याद रखिए, जब नारी स्वस्थ और प्रसन्न होगी तभी परिवार और समाज भी स्वस्थ और खुशहाल बन सकेगा। इसलिए अपने लिए थोड़ा समय अवश्य निकालिए और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। इसी संदेश के साथ दीजिए अनुमति, फिर होगी मुलाकात घर आंगन के एक नए अंक में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखिए। नमस्कार।

बहनों, गुलदस्ता क्रम में अभी आपने सुना भेंट वार्ता, जिसे हमारी रेडियो सखी सोफिया प्रस्तुत कर रही थी, और इसमें बातचीत की गई थी डॉक्टर भारती परिहार से। तो बहनों, अब इस गुलदस्ता क्रम के बाद कार्यक्रम में फिर से समय है एक गीत सुनने का। तो आइए सुनते हैं अमित कुमार की आवाज़ में फिल्म बालिका वधू का ये गीत।

और बहनों, इस गीत के बाद अब समय है घरेलू नुस्खों के क्रम का। बहनों, गर्मी के बाद बारिश के मौसम के स्वागत की घरेलू तैयारियां यदि हम कुछ नुस्खों के साथ कर लें तो हम बारिश का आनंद ले सकते हैं। जैसे नीम की पत्तियों का उपयोग अगर हम अलमारी, बिस्तर और अनाज के डिब्बों में करें, सुखा कर ये नीम की पत्तियां यहाँ पर रख दें तो इससे कीड़े मकोड़े और फफूंद से बचा जा सकता है। इसी तरह से कपूर और लौंग का भी उपयोग हम कर सकते हैं। एक कटोरी में कपूर और कुछ लौंग रखकर कमरे के कोनों में रखने से मच्छर और सीलन की बदबू दोनों से हमें राहत मिल सकती है। और बहनों, सिरका और बेकिंग सोडा भी सफाई के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए रसोई और बाथरूम के सिंक में सप्ताह में एक बार सिरका और बेकिंग सोडा डालें और ऊपर से गर्म पानी डाल दें, इससे दुर्गंध और कीटाणु दूर होते हैं। तो बहनों, इसके बाद अब आइए कार्यक्रम के आखिर में सुन लेते हैं ये गीत।

बहनों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का घर आंगन कार्यक्रम यहीं पर पूरा होता है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं कार्यक्रम घर आंगन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अंबिकापुर पोस्ट बॉक्स नंबर 27 पिन कोड 497001 इस पते पर, और साथ ही आप हमें मेल कर सकती हैं बहनों gharanganair@gmail.com पर। तो बहनों हमें मेल करें, पत्र लिखें और अपनी बात हम तक पहुँचाएँ। अब आज के घर आंगन कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाज़त, आप सभी को ऋतु सिंह का नमस्कार।

आप सुन रहे थे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए आप सभी श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइश फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं हेमलता। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज हम फिल्म आराधना से। आवाज है किशोर कुमार की, संगीत है एसडी बर्मन का, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंटी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर। इसी गीत को सुनना चाहते हैं जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयसा सबीहा, अनस और रेहान। अनारकली बाजार जांगरा पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक और जयपाल यादव। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खुरवाल, कमला रानी, गीतिका खुरवाल, भानु प्रकाश। अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले, दिव्यानी और गणेश कामले। नरवेल महाराष्ट्र से पीएस गावणकर, निर्मला नावड़कर, विशाल नावड़कर और नलेश्वर नावड़कर। ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा छत्तीसगढ़ से जीवधन सिंह पैकरा, घुर्णी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सुमार कलेश्वर, सुखराम पैकरा, हीरामणि और ऐश्वर्या पैकरा। वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती और अरोड़ा। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताड़े, वसंतराव भोजनी, पीएस नावड़कर। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वाणिया सिंगरौल। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

अगला गीत सुनना चाहते हैं ग्राम टोरोवाल जिला नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी तृप्ता कुमारी थांदी डॉक्टर प्रियंका डॉक्टर प्रशांत डॉक्टर प्रियम थांदी बेबी वामिका और वाणी थांदी। अगले गीत को सुनना चाहते हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा विमला अनेजा। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई महेश प्रज्ञेश प्रीतेश संघई हरियाणा से गीत को सुनना चाहते हैं अंकित कांगड़ा मोनी कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। ग्राम लसुड़िया तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव दिव्या सुमन कोमल परी कृतिका रमेश चंद्र दांगी। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गावड़कर सरिता प्रणीता सिद्धांत टुकटुक गावड़कर। सूर्यवाड़ी छत्रपति जी संभाजीनगर से प्रकाश बोरगांवकर सुषमा बोरगांवकर। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर और सदानंद मंदूरकर। ग्राम पहारा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंछोर। लीजिए आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाज में इंदिवर का लिखा गीत, संगीत था बप्पी लहरी का, फिल्म थी मुद्दत। कार्यक्रम ईमेल की गूंज में अगला गीत सुनिए, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत है हसरत जयपुरी का, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म है जंगली। इस गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम सोंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हियांस कुमार चंदन, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर, स्वीटी छाबड़ा, महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार सुरलकर, गणेश अविका आर श्रीरामपुर से अकेश कुमार, अविका जीविका सानू अर्चना कोयते वस्ती पुनावले से अजय सोनवणे, करिश्मा अविका साइसा सोनवणे, सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित, बेबी गर्वी और मुन्ना हिमाक्ष, अकोला से सुयश रॉय, अलका रॉय, दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, छत्रपति तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, सोनम सिंह, नर्मदा पार्क मंगड़वेला से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना गुंडाने, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामण सेंडे, मंचला रेडियो लिसनर्स क्लब अकोला से के शरद पाजपो, श्रीमती शोभा, वैदेही विहान बाबू, रश्मि अक्षय और अभिनय पाजपुर, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब राम टेके, यशोधरा श्राव्या राम टेके, बालाजी चौक से ओटी श्रीवास, शेख आज़ाद पोपोरानी, ग्राम पंचायत कौशलपुर भैंसामुड़ा, रामानुज नगर श्रीनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सुखराम सिंह मरावी, सुहानी सिंह, विमला सिंह, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार जंघेल, रुकमणि बघेल, साहिल भारती बघेल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से अंतरा सिंह, शिवानी सिंह और सूरज सिंह। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

इस गीत को सुनना चाहते थे दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता और अनविका तनुश्री। इसी गीत को सुनना चाहते थे तिलैया गिरिडीह से अभय कुमार सनातनी, शिवानी, प्रियंका, गुड्डू गुप्ता, मुन्नी देवी सौ, जयप्रकाश साव, रिया जिया ट्वीसी, आयुषी अनिरुद्ध, बाबू बसंत लाल साव। इस गीत को सुनना चाहते थे चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सनम और डॉक्टर अदिबा, मेन रोड तिलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा और सुजाता पोहरकार, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली छत्रिय, कापसहेड़ा दिल्ली से फिरोज खान, अहमद मोगा, इकबाल मोगा, जालंधर से संदीप जाटा और सुरेश जाटा, मेरठ कैंट से राधिका शाक्य और दिव्या अग्रवाल, उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती, विनीत और बाबू भाई। इसी गीत को सुनना चाहते थे जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, बेबी जोई, यामिनी तिवारी और उमा तिवारी। ग्राम चरौदा बारनावा पारा अभ्यारण जिला बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमीला ठाकुर, खुशबू ज्योति ठाकुर। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत है शैलेंद्र का, संगीत दिया है एसडी बर्मन ने, फिल्म है गाइड। इस गीत को सुनना चाहते हैं रघुबीर नगर नई दिल्ली से श्रुति और किरण, प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, झालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम जाधव, सुभाष, चंदन, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव। विदर्भ संघ जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर। रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर। जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां।

नसरत जहां और जीनत जहां और डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी उमरखेड़ से प्रभा रानी जयपुरिया, चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, दत्रेंगी से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीराही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से, तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, मेहमद राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना, दानिश आसिफ शेख, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया, अनुराग मोहन, इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, जगदलपुर बस्तर से पुष्पांजलि नायडू, प्रीतम, अमृता, संतोष, दुर्गेश कुमार, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बूट, ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण चंद्रेश, कुमार चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फा डावर, खुशनसीब अबुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेहवानी, संगीता आकाश, आयुषी सागर, यसी हनी, पूजा सीता, ग्राम कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से रेवन भाविष्टे, अनीता भाविष्टे और राहुल भाविष्टे, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, हर्ष आहूजा, शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान, डुगू बाबा कुटीर रायगढ़ से, बन्ने बुजुर्ग तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, बाजार रोड मुंगी सापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सबिश्ता पलक, लुबना और यश मंसूरी, सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़ी, सोमार साय, श्री भगत हेमंत कुमार राम, खिलावन सिंह पैकराम। आप सभी के पसंद पर सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म गाइड से।

0: आप सुन रहे थे श्रोताओं की ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही देर में दोपहर समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
2: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
1: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत

0: शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति की शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा, मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत

0: अमेरिका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
1: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार।

स्वीकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा।

आप सुन रहे थे कैलाश खेर की आवाज़ में कैलाश परेश नरेश कामत के संगीत निर्देशन में लिखा ये गैर फिल्मी गीत। लीजिए सुनिए अदनान सामी और आशा भोसले की आवाज़ में साहिर का लिखा ये गैर फिल्मी गीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे थे विजय सावंत की आवाज में, ये गैर फिल्मी गीत। लीजिए सुनिए उषा उत्थुप की आवाज में अगला गैर फिल्मी गीत।

आप सुन रहे थे पंकज उदास की आवाज़ में। पंकज उदास और जाफर गोरखपुरी का लिखा ये गैर फिल्मी गीत। इसी गीत के साथ गैर फिल्मी गीत गजलों गीतों का कार्यक्रम गीत गंधा यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3 बजे हैं। आइए एक नज़र डालें हमारे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के रूप रेखा पर। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे 19 शासकीय भर्ती परीक्षाएं पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से विशेष भेंटवार्ता। प्रस्तुतकर्ता होंगे प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर से। संध्याकालीन सभा की शुरुआत होगी प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट के साथ शाम 5 बजे से। गैर फिल्मी और फिल्मी भजन का कार्यक्रम भजन संध्या हम लेकर आएंगे शाम 5:05 पर। युवा श्रोता जरूर सुनिए अपना कार्यक्रम एक नई सोच के साथ शाम 5:30 पर। कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण किया जाएगा शाम 6:05 पर। लोकगीतों का कार्यक्रम गोधुली आप सुनेंगे शाम 6:20 पर, जिस पर आपको सुनवाए जाएंगे सरगुजिया लोकगीत रामसुख राजवाड़े और साथियों की आवाज़ में, जिसमें आप सुनेंगे बायर गीत। इसी कड़ी में आप सुनेंगे सरगुजिया लोकगीत राम अजल राजवाड़े और साथियों के स्वर में भुहारी गीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी में फिल्मी नगर में हम लेकर आएंगे शाम 6:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा पेश किया जाएगा शाम 7:05 पर। शाम 7:20 पर ग्रामीण श्रोताओं की लगेगी चौपाल, याद रखिएगा शाम 7:20 पर। सामान्य चर्चा के विषय होंगे साइबर सुरक्षित भारत कार्यक्रम। कार्यक्रम किसानवाणी आजकल आप सुनेंगे 7:30 पर। कार्यक्रम किसानवाणी में सामान्य चर्चा के विषय होंगे सामयिक फूल उत्पादन से आर्थिक लाभ। साथ ही सुनेंगे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, घरेलू सौर ऊर्जा आत्मनिर्भरता। जानेंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी, मौसम आधारित कृषि परामर्श और आज के सवाल। सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश प्रसारित किया जाएगा रात्रि 8 बजे। कार्यक्रम में बने रहिएगा। कार्यक्रम का अगला भाग आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। चित्रपट संगीत आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। आप सभी श्रोताओं की ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण समय होगा रात्रि 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामिनी में आप सुनेंगे पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर द्वारा विभास राग पर गायन। कार्यक्रम मन भावन की प्रस्तुति होगी रात्रि 10:30 पर। ये थी श्रोताओं हमारे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूप रेखा। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। मीडिया वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। इस दौरान एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव 1260 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे से आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है।

0: ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये टुकू डांड़, चाची डांड़, करसी, बूढ़ा डांड़, बरबसपुर, सिलफिली, कनकनगर, गणेशपुर, गुड़गवा, मदन नगर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 22 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, लक्ष्मणगढ़, सुखरी भंडार, सायर, ससकालो, सत्तीमुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडीह, बोड़ाझरिया, ढोढ़ागांव, दांतीढाब, गढ़गांव, बैगहवा, चोरकी पानी, कंडराजा, घोड़ाघाट, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टानपारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, कापू और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 114 है। ये लोटान, पुरुंगा, बनहर, सिंघीछा, बेहरामार, इंचपारा, कंचीरा, कोयलार, सागरपुर, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, आमा टिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राट रोड, झिंगोल, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी, तालदादर, हरदी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं देवासीस की गाय इस भजन के साथ।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या, आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से।

कार्यक्रम भजन संध्या में अब सुनिए गुरुजी रामलाल शर्मा, सरल कवि और संतोष सिंह की आवाजों में ये भजन।

कार्यक्रम भजन संध्या में अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये भजन। शब्द रचना है सुदर्शन फकीर के और संगीत है जगजीत सिंह का।

इसी भजन के साथ कार्यक्रम भजन संध्या आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

धीरे चलना गलत नहीं है, बस रुकना नहीं चाहिए। स्वागत है आप सभी का युववाणी के हमारे आज के संग में। आज की युववाणी को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त शोभा मनवानी। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, लेकिन हमारी यादों से कभी नहीं जाते। कभी किसी पुरानी तस्वीर को देखकर, किसी पुराने गीत को सुनकर या किसी परिचित रास्ते से गुजरते हुए अचानक किसी की याद आ जाती है और फिर मन मुस्कुराता भी है और थोड़ा भावुक भी हो जाता है। जीवन एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा में न जाने कितने लोग हमसे मिलते हैं। कुछ लोग पल के लिए आते हैं और चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग हमारे दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेते हैं। कहते हैं कि इंसान की असली पहचान उसकी मौजूदगी में नहीं बल्कि उसकी गैर मौजूदगी से होती है। जब कोई हमारे पास नहीं होता और फिर भी उसकी बातें, उसकी हंसी और उसका साथ बिताए पल हमें याद आते हैं, तब समझ आता है कि वो व्यक्ति हमारे लिए कितना खास था। कुछ लोग हमें बहुत कम समय के लिए मिलते हैं,

लेकिन जीवन भर के लिए सीख दे जाते हैं। कभी कभी जीवन की भागदौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास मौजूद लोग कितने महत्वपूर्ण हैं। हम सोचते हैं कि बहुत समय बाद में बातें कर लेंगे, मुलाकातें फिर हो जाएंगी, लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। यादें भी बड़ी अजीब होती हैं, ये कभी आँखों में नमी ले आती हैं तो कभी होठों पर मुस्कान, कभी हमें अतीत में ले जाती हैं तो कभी आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी की किताब के ऐसे पन्ने होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी कभी नहीं फाड़ सकते, चाहे सालों बीत जाएं, लेकिन उनकी कही हुई बातें, उनका प्यार और उनका साथ हमेशा हमारे दिल में ज़िंदा रहता है। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि लोग चले जाते हैं लेकिन उनके एहसास नहीं जाते, वक्त बदल जाता है मगर कुछ खास नहीं जाते, दिल में बस जाते हैं जो सच्चे होकर, दिल में बस जाते हैं जो सच्चे होकर, वे लोग कभी हमारी यादों से दूर नहीं जाते। आज उन सभी लोगों का धन्यवाद कहें जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाया, हमें कुछ सिखाया, हमें सहसाया, हमें समझाया और हमारी यादों को खूबसूरत बनाया। इन्हीं विचारों के साथ पेश है ये गीत फिल्म फना से। ये गीत आवाज़ें हैं कैलाश खैर और शान की, संगीत है जतिन ललित का और लिखा है प्रशून जोशी ने।

स्वागत है आप सभी का क्रम महफिल में। आज के इस क्रम महफिल में पहली गज़ल की फरमाइश करने वाले हमारे साथी हैं छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी नोमेश नेहा एवं वान्या सिंह रौल, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, खमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। आप सभी की फरमाइशों पर पेश है पंकज उदास की आवाज़ में ये गज़ल। कुछ लोग दिल में इस कदर उतर जाते हैं, कुछ लोग दिल में इस कदर उतर जाते हैं कि लाख कोशिश करो भुलाए नहीं जाते। वक्त गुजर जाता है, ज़िंदगी बदल जाती है, मगर वो लोग याद बनकर साथ रह जाते हैं।

दोस्तों अगली गज़ल की फरमाइश हमें लिख भेजी है पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर नयन और सुमांशु पांडे, महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी, पंकज और आयुषी गुप्ता। आप सभी की फरमाइशों पर पेश है जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल। तेरा नाम लूँ तो मुस्कुरा देता है दिल, तेरा नाम लूँ तो मुस्कुरा देता है दिल, तेरी याद से महक उठता है दिल। दूरी चाहे कितनी भी हो हमारे दरमियाँ, दूरी चाहे कितनी भी हो हमारे दरमियाँ, फिर भी

दोस्तों, अगली गज़ल की फरमाइश करने वाले हमारे साथी हैं नवागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी, ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्र्यंबिका, लीना और आशुतोष अंगारे। आप सभी की फरमाइशों पर पेश है जगजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाज़ों में ये गज़ल। मोहब्बत नाम है किसी को अपना मान लेने का, उसकी हर खुशी में खुद को शामिल कर लेने का। इश्क सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी उम्र भर किसी को चाहना भी इश्क होता है।

दोस्तों अगली गज़ल की फरमाइश करने वाले हमारे साथी हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना और विपुल कांबड़े, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। आप सभी की फरमाइशों पर पेश है चंदन दास की आवाज़ में ये गज़ल। तुम्हारी आँखों की गहराइयों में खो जाने को जी चाहता है, सब कुछ भूल कर बस तुम्हारा हो जाने को जी चाहता है। ये कैसा जादू है तुम्हारी सादगी में मेरे हमदम, कि जमाने से छुपकर तुम में ही समा जाने को जी चाहता है।

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हमारा आज का ये क्रम पसंद आया होगा। आप सभी भी हमें अपने पसंद की गज़ल की फरमाइश भेज सकते हैं। फरमाइश भेजने के लिए हमारी ईमेल आईडी है mehfilair@gmail.com, mehfilair@gmail.com। इसी के साथ हमारा आज का ये क्रम महफिल बस यहीं तक।

वक्त तो चला है आप सभी से विदा लेने का, कल फिर मिलेंगे आप सभी से शाम 5:30 पर क्रम हेलो फ्रेंड्स के साथ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए आज की युववाणी से अपनी दोस्त शोभा मनवानी को। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटिक सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवाटिक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री इस

0: विवाटिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: टू बी इन पेरिस फॉर द 10th एडिशन ऑफ विवाटेक, दिस इज यूरोप्स बिगेस्ट टेक्नोलॉजी इवेंट। आई कॉन्ग्रेचुलेट प्रेसिडेंट मैक्रो and the organizers for the success of VivaTech. Friends, 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement.
0: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
2: पत्तन रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया है कि 62,370 मेट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की सराहना की है। पिछले तीन दिन में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण। विषय है विश्वास जीवन का आधार। संकलन एवं वाचन स्वर है जयमाला सिंह के। विश्वास मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है। यह वह अदृश्य सूत्र है जो व्यक्ति को स्वयं से, परिवार से, समाज से और ईश्वर से जोड़ता है। विश्वास के बिना न तो संबंधों की कल्पना की जा सकती है और न ही समाज की। यह जीवन की नींव है जिस पर सफलता, सुख और शांति का भवन खड़ा होता है। विश्वास का अर्थ है किसी व्यक्ति, विचार या शक्ति पर दृढ़ आस्था रखना। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो हमारे मन में सुरक्षा, अपनापन और सम्मान की भावना उत्पन्न होती है। परिवार में माता पिता और बच्चों के बीच विश्वास, मित्रता में विश्वास तथा समाज में आपसी विश्वास ही संबंधों को मजबूत बनाते हैं। विश्वास व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब मनुष्य स्वयं पर विश्वास करता है तो वह बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। इतिहास के महान व्यक्तियों ने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास के बल पर असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को भी संभव बनाया। आध्यात्मिक दृष्टि से विश्वास का विशेष महत्व है। ईश्वर पर विश्वास मनुष्य को मानसिक शांति, धैर्य और

0: साहस प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धा और विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। विश्वास बनाना कठिन होता है, लेकिन उसे खोना बहुत आसान। एक बार टूटा हुआ विश्वास पुनः स्थापित करने में बहुत समय लगता है। इसलिए हमें अपने व्यवहार में सत्यता, ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। मनुष्य के जीवन में यदि कोई ऐसी शक्ति है जो उसे हर परिस्थिति में संभाल कर रखती है, तो वह है विश्वास। विश्वास एक ऐसा दीपक है जो अंधकारमय परिस्थितियों में भी आशा का प्रकाश देता है। यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला और संबंधों की आत्मा है। जब एक शिशु जन्म लेता है, तब वह अपनी माता की गोद में विश्वास का पहला अनुभव करता है। धीरे धीरे यही विश्वास परिवार, मित्रों, समाज और अंततः ईश्वर तक विस्तृत हो जाता है। विश्वास के बिना कोई भी संबंध लंबे समय तक नहीं टिक सकता। प्रेम, मित्रता, सहयोग और सम्मान, इन सभी का आधार विश्वास ही तो है। विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण रूप है आत्मविश्वास। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है, वह कठिनाइयों से घबराता नहीं है, असफलताएं उसे निराश नहीं करती बल्कि और अधिक मजबूत बनाती हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अपने आप पर विश्वास करो, यही सफलता का रहस्य है। आध्यात्मिक दृष्टि से विश्वास मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाता है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं और सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं, तब ईश्वर पर विश्वास ही मन को धैर्य और शक्ति प्रदान करता है। विश्वास हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति के पीछे कोई न कोई कल्याणकारी उद्देश्य अवश्य होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से विश्वास का अर्थ है परमात्मा की व्यवस्था पर भरोसा रखना। अतः विश्वास कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक साधना है। यह प्रतिदिन सत्य बोलने, वचन निभाने और सकारात्मक सोच रखने से विकसित होता है। विश्वास जीवन का अमूल्य धन है। यह व्यक्ति को शक्ति देता है, संबंधों को मधुर बनाता है और समाज में एकता स्थापित करता है। हमें अपने जीवन में विश्वास को बनाए रखना चाहिए और दूसरों का विश्वास जीतने का प्रयास करते रहना चाहिए। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर ही छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्र में 26,000 किलोमीटर ले ज्यादा सड़क के निर्माण करही। युवा और आम मनखे मल्ला नशा के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करे बर छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग डहर ले प्रदेश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह के आयोजन करे जाते। और शक्ति जिला के फगुरम चौकी पुलिसा आज 2 क्विंटल ले ज्यादा गांजा के संग 2 आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे है। अब समाचार विस्तार ले। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्र में 26,000 किलोमीटर ले ज्यादा सड़क के निर्माण करही। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहल में अवैया ग्रामीण क्षेत्र में सड़क के निर्माण पर 18,900 करोड़ रुपया ले ज्यादा आवंटित करे गए है। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजना के प्रगति के आकलन करे बर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल के अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित करेगी। बैठका में छत्तीसगढ़ के संग आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और आने राज्य के वरिष्ठ अधिकारी मनहा भाग लीन। ए दौरान राज्य ला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन मा अवैया लंबित परियोजना मा सरलक काम करे के निर्देश दे गए है। दल्ली राजहरा रावघाट रेल परियोजना के तहत काली 17 जून ले रावघाट रेलखंड में नियंत्रित गति और सीमित भार के संग तकनीकी ट्रायल शुरू करेगी। ये ट्रायल आने आने चरण में आगू भी जारी रही। ए दौरान रेल लाइन के परिचालन के क्षमता, सुरक्षा और तकनीकी मानक के परीक्षण करे जाही। करीब 95 किलोमीटर लंबा दिल्ली राजहरा रावघाट रेल परियोजना ला से

0: भिलाई इस्पात संयंत्र अउ भारतीय रेलवे के साझा प्रयास ले विकसित करे जाथे। युवा और आम मनखे मन ला नशा के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करे बर छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग डहर ले काली 17 जून ले प्रदेश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह के आयोजन करे जाथे। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव शहला निगारहा मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारी और कर्मचारी मन ला नशा मुक्ति के शपथ दिलाईन। ओमन बतायन कि ए बछर नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत के पहचान थीम में सप्ताह भर आने आने गतिविधि के आयोजन करे जाही। 26 जून तक चलैया नशा मुक्त भारत सप्ताह के दौरान स्कूल कॉलेज और आने शैक्षणिक संस्था में सेमिनार समूह चर्चा शपथ ग्रहण जागरूकता रैली और संवाद कार्यक्रम आयोजित करे जाते। उन्हें स्वास्थ्य विभाग डहल्ले नशा छोड़ चुके मन के प्रेरणादायक सफलता के कहानी के प्रचार प्रसार करे जाते। एकर अलावा महिला और बाल विकास विभाग पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग डहल्ले मानव श्रृंखला शपथ कार्यक्रम और जागरूकता गतिविधि के आयोजन करे जाही। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव शहला निगार के अध्यक्षता में आज मंत्रालय में छत्तीसगढ़ शराब व्यसन मुक्ति अभियान पर गठित राज्य स्तरीय समिति के बैठका हुई। बैठका में राज्य के हरेक विकास खंड के 1000 ले ज्यादा जनसंख्या वाला नवा ग्राम पंचायत में भारत माता वाहिनी के गठन और विस्तार संबंधी प्रस्ताव पर विचार विमर्श करेगी। समिति हा नशा पीड़ित मनखे मन के पुनर्वास बर संचालित 15 बिस्तर वाला एकीकृत पुनर्वास केंद्र के क्षमता 15 ले बढ़ा के 50 बिस्तर करे के सुझाव दिन। संगे संग 5 जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी खैरागढ़ छुईखदान गंडई सुकमा बेमेतरा कोरबा मा नवा नशा मुक्ति केंद्र खोले के निर्णय लेगी। प्रदेश में कुपोषण के समस्या ला दूर करे बर महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हा सुपोषण वृक्ष मुनगा के रोपण ला जन आंदोलन के स्वरूप दे के आह्वान करे है। श्रीमती राजवाड़े हा सबो जनप्रतिनिधि मन ले वर्षा ऋतु के दौरान जल स्रोत के तीर तखार ग्राम पंचायत परिसर सार्वजनिक जगह और हितग्राही मन के घर मा मुनगा के पौधा लगाए के आग्रह करे है। ओमन हा सबो मनखे मन ले ए अभियान मा सक्रिय भागीदारी निभा के सुपोषित छत्तीसगढ़ के निर्माण मा योगदान दे के अपील करीन है। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहाले 19 शासकीय भर्ती परीक्षा पास करके अनोखा रिकॉर्ड बनैया चारू पांडे ले लेगी साक्षात्कार के प्रसारण आज रतिहा 8:15 मा करे जाही। ए कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सबो केंद्र रिले करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बाढ़ बाचे समाचार कोती। सक्ती जिला के फगुरम चौकी पुलिस आज 2 क्विंटल ले ज्यादा गांजा के संग 2 आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे है। जब्त गांजा के कीमत करीब 1,45,00,000 रुपया बताए जाते। जिला के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर हा बताइन कि मुखबिर ले मिले सूचना के आधार मा पुलिस हा नाकाबंदी करके गाड़ी के जांच करीन। ए दौरान पुलिस हा ओडिशा ले राजस्थान ले जावत गांजा ला एक ट्रेलर ले बरामद करीन। आरोपी मन के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करे गए है। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के टीम हा काली प्रदेश की टीम आने आने जिला मा दबिश दे के भ्रष्टाचार के मामला मा 3 लोगन मल्ला गिरफ्तार करे है। ACB के टीम हा काली भिलाई नगर निगम ले सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर ला भ्रष्टाचार के एक मामला मा हिरासत मा लीन। एकर अलावा धमतरी मा विद्युत यांत्रिकी विभाग मा पदस्थ प्रोग्रेस मैन ला 1,00,000 रुपया के रिश्वत लेवत रंगे हाथ गिरफ्तार करीन। उन्हें ACB हा जशपुर नगर मा RES विभाग के SDO ला घलो 25,000 के रिश्वत लेवत रंगे हाथ गिरफ्तार करे है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा काली गरियाबंद जिला ला 603,46,00,000 रुपया ले ज्यादा के विकास काम के सौगात दिन। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हा 76 विकास काम के लोकार्पण भूमि पूजन और शिलान्यास करीन। एमा सड़क सिंचाई स्वास्थ्य शिक्षा पानी और बिजली ले जुड़े काम शामिल है। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस मा राज्यपाल रमन डे कहा आज लोकभवन मा उखड़ चित्र मा फूल चढ़ा के ओमनला नमन करीन। ए अवसर मा लोकसभा अध्यक्ष

0: ओम बिरला, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल के संग लोकभवन के आने अधिकारी कर्मचारी मनहा घलो रानी लक्ष्मीबाई ला श्रद्धांजलि दिन। कोरिया जिला के कलेक्टर रुक्तिमा यादव हा एक आदेश जारी करके महलापारा बैकुंठपुर नौगई के संग भाजपा नेता भरत सिंह घरवार के कटगोड़ी स्थित क्रेशर प्लांट एरिया के 300 मीटर दायरा में धारा 163 लागू कर दे है। जारी आदेश के अनुसार कोनो भी प्रकार के हथियार और विस्फोटक सामान पाए जाए में कड़ा कार्रवाई करे जाही। एकर अलावा ए क्षेत्र में जुलूस, धरना प्रदर्शन और आम सभा में प्रतिबंध लगाए गए है। जिला दंडाधिकारी हा स्पष्ट करे है कि ये आदेश ओ शासकीय कर्मचारी अधिकारी ऊपर लागू नहीं हुई जेन मन हा अपन शासकीय दायित्व के निर्वहन करे बर लाठी या शस्त्र राखे के जरूरत होते। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मल्ला इस संवेदनशील क्षेत्र में लगातार निगरानी राखे और कोनो भी अप्रिय स्थिति ले निपटे के निर्देश दे गए है। जानमा के मुताबिक कोरिया जिला के कटगोड़ी गांव में भाजपा नेता के संग तीन लोगन के मौत के मामला में पुलिस हा चार लोगन मल्ला गिरफ्तार करे है। लोरमी में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव हा कहिन है कि महाराणा प्रताप के जीवन साहस, स्वाभिमान और राष्ट्र के भक्ति के अमर मिसाल है। पीएम सेतु योजना के तहत प्रदेश के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई ला आधुनिक और उद्योग के लायक बनाए जाते। योजना के तहत छात्र मन ला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई और ड्रोन जैसन नवा तकनीक के प्रशिक्षण दे जाही। संगे संग पुराना मशीन के जगह में आधुनिक उपकरण, डिजिटल कंटेंट और स्मार्ट क्लासरूम के सुविधा उपलब्ध कराए जाही। मुख्य सचिव विकास सिल की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति के बैठक में पीएम सेतु योजना के प्रगति के समीक्षा करेगी। राजधानी रायपुर में पहली बार ईस्टर्न स्लैम के आयोजन करे जाही। एकर तहत 22 ले 27 जून तक बूढ़ापारा स्थित एक्सक्वेस कॉम्प्लेक्स में प्रतियोगिता आयोजित करे जाही। इमा सिंगापुर के संग भारत के 21 राज्य ले लगभग 350 जूनियर और सीनियर खिलाड़ी भाग लही। प्रतियोगिता पर 2000 अमेरिकी डॉलर के पुरस्कार राशि निर्धारित करे गए है। उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव हा बिलासपुर के भतराई राज्य खेल प्रशिक्षण के निरीक्षण करीन। ए दौरान ओमनहा निर्माण काम के प्रगति ऊपर नाराजगी जताइन। ओमन कहिन कि खिलाड़ी मल्ला अच्छा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार के प्राथमिकता है और एमा कोनो भी प्रकार के लापरवाही स्वीकार नहीं करे जाही। आखिर मा प्रमुख समाचार एक फेर। केंद्र सरकार वित्त बछर 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्र में 26,000 किलोमीटर ले ज्यादा सड़क के निर्माण करी। युवा और आम मन के मल्ला नशा के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करे बर छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग डाल ले प्रदेश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह के आयोजन करे जाते। शक्ति जिला के फरगुम चौकी पुलिस आज 2 क्विंटल ले ज्यादा गांजा के संग 2 आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस नगरे प्रमुखैः फ्रांस देशीयैः वाणिज्य नेतृभिः सह अनेकानि उच्चस्तरीय मेलनानि कृत्वा वीवा टेक 2026 इत्यस्मिन् कार्यक्रमे भागं गृह्णाति। केन्द्रम् अस्मिन् आर्थिकवर्षे 26,000 किलोमीटर मितानां ग्रामीण मार्गाणां निर्माणाय

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राम सुख साय राजवाड़े और साथियों की आवाजों में गाए इस बायर गीत के साथ।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

श्रोताओं, कार्यक्रम गोधूली के अंत में सुनिए राम अचल राजवाड़े और साथियों की आवाजों में ये भुईहारी गीत।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम गुधुली आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तोची रैना की आवाज़ों में इस गीत के साथ।

कार्यक्रम माधुरी में अब सुनिए कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में फिल्म खूबसूरत का ये गीत।

कार्यक्रम माधुरी में अब सुनिए फिल्म जानम समझा करो फिल्म का ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं अन्नू मलिक।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम माधुरी आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
8: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के

0: लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित आचार्य पदारोहण और सहस्रावधान तपस्या महोत्सव में हुए शामिल। युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने प्रदेश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। और सक्ती पुलिस ने 1,45,00,000 रुपये कीमत के गांजे के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ सहित आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित आचार्य पदारोहण और सहस्रावधान तपस्या महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि भगवान महावीर और जैन दर्शन के सिद्धांत आज भी मानवता को शांति, आत्मसंयम, करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर पहली बार आयोजित हो रहा आचार्य पदारोहण महोत्सव प्रदेश के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी शामिल हुए। दल्ली राजहरा रावघाट रेल परियोजना के तहत कल 17 जून को रावघाट रेलखंड पर नियंत्रित गति और सीमित भार के साथ तकनीकी ट्रायल शुरू किया गया। ये ट्रायल विभिन्न चरणों में आगे भी जारी रहेगा। इस दौरान रेल लाइन की परिचालन क्षमता, संरचनात्मक सुरक्षा तथा तकनीकी मानकों का परीक्षण किया जाएगा। करीब 95 किलोमीटर लंबी दल्ली राजहरा रावघाट रेल परियोजना को सेल भिलाई इस्पात संयंत्र और भारतीय रेलवे के साझा प्रयासों से विकसित किया जा रहा है। मान में रावघाट स्टेशन भवन, यात्री सुविधाओं तथा सिग्नलिंग और दूर संचार से जुड़े कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस वर्ष जुलाई के अंत तक स्टेशन परिसर के शेष कार्य पूरे होने की संभावना है। रावघाट तक रेल संपर्क स्थापित होने से बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों की पहुंच राज्य और देश के प्रमुख शहरों तक और अधिक सुगम हो जाएगी। युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग द्वारा कल 17 जून से प्रदेश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार ने मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि इस वर्ष नशा मुक्त भारत अभियान

विकसित भारत की पहचान थीम पर सप्ताह भर विविध गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। 26 जून तक चलने वाले नशा मुक्त भारत सप्ताह के दौरान स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में सेमिनार, समूह चर्चा, शपथ ग्रहण, जागरूकता रैलियां तथा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नशा छोड़ चुके व्यक्तियों की प्रेरणादायक सफलता की कहानियों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा महिला और बाल विकास विभाग तथा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मानव श्रृंखला, शपथ कार्यक्रम और जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव शहला निगार की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में छत्तीसगढ़ शराब व्यसन मुक्ति अभियान के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में राज्य के प्रत्येक विकासखंड की 1000 से अधिक जनसंख्या वाली नई ग्राम पंचायतों में भारत माता वाहिनी के गठन और विस्तार संबंधी प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। समिति ने नशा पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संचालित 15 बिस्तरों वाले एकीकृत पुनर्वास केंद्रों की क्षमता 15 से बढ़ाकर 50 बिस्तर करने का सुझाव दिया। साथ ही 5 जिलों मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुईखदा

0: हजार से अधिक जनसंख्या वाली नई ग्राम पंचायतों में भारत माता वाहिनी के गठन और विस्तार संबंधी प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। समिति ने नशा पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संचालित 15 बिस्तरों वाले एकीकृत पुनर्वास केंद्रों की क्षमता 15 से बढ़ाकर 50 बिस्तर करने का सुझाव दिया। साथ ही 5 जिलों मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी खैरागढ़ छुई खदान गंडई सुकमा बेमेतरा और कोरबा में नए नशा मुक्ति केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। पीएम सेतु योजना के तहत प्रदेश के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग अनुकूल बनाया जा रहा है। योजना के तहत छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और ड्रोन जैसी नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही पुरानी मशीनों के स्थान पर आधुनिक उपकरण डिजिटल कंटेंट और स्मार्ट क्लासरूम की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक में पीएम सेतु योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोरिया जिले की कलेक्टर रोकतिमा यादव ने एक आदेश जारी कर महलपारा बैकुंठपुर नौगई के साथ भाजपा नेता भरत सिंह गहरवार के कटगोड़ी स्थित क्रेशर प्लांट एरिया के 300 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर दी है। जारी आदेश के अनुसार किसी भी प्रकार के हथियार और विस्फोटक सामग्री पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इन क्षेत्रों में जुलूस धरना प्रदर्शन और आमसभा पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आदेश उन शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने शासकीय दायित्वों के निर्वहन के लिए लाठी अथवा शस्त्र रखने की आवश्यकता होती है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को इन संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने तथा किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि कोरिया जिले के कटगोड़ी गांव में भाजपा नेता सहित 3 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सक्ती जिले के फगुरम चौकी पुलिस ने आज 2 क्विंटल से अधिक गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 1,45,00,000 रुपए बताई जा रही है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी कर वाहनों की जांच की। इस दौरान पुलिस ने ओडिशा से राजस्थान ले जाए जा रहे गांजे को एक ट्रेलर से बरामद किया। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की टीम ने कल प्रदेश के 3 अलग अलग जिलों में दबिश देकर भ्रष्टाचार के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ACB की टीम ने कल भिलाई नगर निगम से सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर को भ्रष्टाचार के एक मामले में हिरासत में लिया। इसके अलावा धमतरी में विद्युत यांत्रिकी विभाग में पदस्थ प्रोग्रेसमैन को 1,00,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं ACB ने जशपुर नगर में RES विभाग के SDO को भी 25,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा 19 शासकीय भर्ती परीक्षाएं पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से लिए गए साक्षात्कार का प्रसारण आज रात 8:15 पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर राज्यपाल रमेश डेका ने आज लोकभवन में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल सहित लोकभवन के अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने भी रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल गरियाबंद जिले को 603,46,00,000 रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 76 विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन और शिलान्यास किया। प्रदेश में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सुपोषण वृक्ष मुनगा के रोपण को जन आंदोलन का स्वरूप देने का आह्वान किया है। श्रीमती राजवाड़े ने सभी जनप्रतिनिधियों से वर्षा ऋतु के दौरान जल स्रोतों के आसपास ग्राम पंचायत परिसरों सार्वजनिक स्थलों तथा हितग्राहियों के घरों में मुनगे के पौधे लगाने का आग्रह किया है। उन्होंने

0: सभी नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाकर सुपोषित छत्तीसगढ़ के निर्माण में योगदान देने की अपील की है। लोरमी में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की अमर मिसाल है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आगामी 23 जून को नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। जांजगीर चांपा जिले के कोड़ाभाट गांव में तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोंडागांव द्वारा कल 19 जून को कलेक्टोरेट परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित आचार्य पदारोहण और सहस्रावधान तपस्या महोत्सव में हुए शामिल। युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने प्रदेश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और सक्ती पुलिस ने 1,45,00,000 रुपए कीमत के गांजे के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। श्रोताओं, आइए आपको अवगत करा दें आज के हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों से। अब से कुछ ही देर में यानी 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। शाम 7:20 पर आप सुन सकेंगे ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल, जिसमें समसामयिक चर्चा में बात होगी साइबर सुरक्षित भारत कार्यक्रम पर। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी। सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश का प्रसारण होगा रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे 19 शासकीय भर्ती परीक्षाएं पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से विशेष भेंट वार्ता, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश का अगला भाग हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 8:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर और 9:30 पर आप सुन सकेंगे ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी, जिसमें आज आप सुनेंगे पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का गाया राग विभास। रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आइए आपको अवगत करा दें हमारे कल के कार्यक्रमों से।

कल प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम विचार बिंदु का प्रसारण होगा प्रातः 6:30 पर। 6:35 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस का गायन। सामूहिक सुझाव पर आधारित कार्यक्रम खेती की बात का प्रसारण होगा प्रातः 6:45 पर। कार्यक्रम गूंजे जंगल आप सुनेंगे प्रातः 7:00। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा हम आपके लिए प्रसारित करेंगे प्रातः 7:30 पर। कार्यक्रम इनसे मिलिए, इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रातः 8:30 पर। प्रातः 9:00 आप सुनेंगे बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। श्रोताओं के समीक्षात्मक पत्र और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री आप सुनेंगे कल प्रातः 11:05 पर। NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा दोपहर के ठीक 12:00। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन आप सुनेंगे दिन के 12:30 पर और ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाई का प्रसारण होगा दिन के 1:10 पर। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुनेंगे दिन के 1:40 पर और प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट आप सुन सकेंगे शाम 5:00। श्रोताओं ये तो थी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण आज यहीं तक। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पंकज उदास की गाई इस गजल के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में आप सुनिए जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल, शायर है मिराज़।

जगजीत सिंह की गाई इसी गजल के साथ कार्यक्रम रजनीगंधा आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 होने को है। लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

0: अग्नु भैया राम राम
1: राम राम धर्मु भैया।
0: कही का हाल चाल अग्नु भैया?
1: धर्म भैया जी का हाल चाल ठीक है, बस एक जो काम अभी है कि भाई खेत उत के जोताई में चलत है।
0: हाँ।
1: और हमारे किसान भाई मन भी पूरा तैयारी में लगी ना है।
0: हाँ।
1: और एक ही जो इंतजार है कि बढ़िया यदि मानसून शुरू हो जाए, झमाझम बरखा होए, ताकि ये धान कर बुआई जोताई शुरू हो जाए।
0: ठीक कहें का है कि आज तो कटिक देखें कि हमार कति पानी की गिरीस हल्का, और कहाँ कहाँ क्षेत्र में तो अभी भी कटिक पानी नहीं हवे
1: भाई। अभी धरू भैया अभी मानसून तो दिखाई नहीं है, ओकर इंतजार होता है। बाकी जो मौसम विज्ञानी मना है उमन कहते हैं कि मानसून हर आवत है।
0: हाँ।
1: और आही और सही समय पर आही और किसान मन कर देखा खेती पाती हर समिर जाही।
0: हाँ ठीक है, थरा उरा तो कर ढारी ने एक बात हवे अग्नि भैया कि हमन जैसे देखती ना आजकल तो ऑनलाइन कर जमाना होएगी से, कहीं भी देखब कि पैसा ढेबुआ तक जो है ऑनलाइन चलता है, ठेला खोमचा मन तक देखब ना कि पैसा लेता है ऑनलाइन। बाकी का है कि जागरूकता कर अभाव में कभो कभो देखब कि ऑनलाइन से अपन से ठगाया जाता है। तो का है ये ठगी से ही बचाव, वरना हमार भारत में साइबर सुरक्षित भारत कार्यक्रम चलता है।
1: एक तहत देखे धनु भैया तो जागरूक भी करल जाता है।
0: हाँ।
1: पूरा पुलिस विभाग और जिम्मा ले ली से कई को सामाजिक संगठन मन शहर से लेकर गांव तक ये जागरूक करता है कि भाई ये साइबर ठगी से बचें। हम देखब नहीं पूरा देश में करोड़ों रुपया सालाना ये साइबर ठगी में ठग के ले जाता है।
0: हाँ।
1: और उनमें न सिर्फ गांव कर जो कम पढ़ल लिखल लोग मना है, बल्कि अच्छा अच्छा जो प्रशासनिक सेवा में बड़े बड़े अधिकारी बने हैं वह ठगा जाता
0: है। हाँ ठीक कहन का है ना कि ये कहब कि जो ठगे वाला मन ज़्यादा तेज हमें इतना कि कहब कि वह अधिकारी कर्मचारी कोई ला नहीं देखा था, अच्छा पढ़ल लिखल जो हमें रोज रोज ऑनलाइन करता है वो मन तक ठगाया जाता है।
1: और नवा नवा योजना में चलता है नहीं तो ठगे का तरीका भी बदल दे।
0: हाँ।

0: योजना के नाम से, अब महिला गांव में चलाता है दे प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये में ठेक धा रहता है कि तोर स्वीकृत हुई सा है इतना पैसा लान तो ये दे जमा कर दे, ये दे क्यू आर कोड ला भेजा तो हमें जमा कर तहाँ तोर स्वीकृति मिल जाएगी। एकस एकस लिखरी लिखरी में ठगाई जाता है।
1: तो एकर से देखिए कि जरूरी हवे कि बचाव की अपन जो भी व्यक्तिगत जानकारी है ना ओला कहे कि कोकरो से साझा नहीं करना चाहिए, है ना। अपन जैसे बैंक का जो डिटेल हवे या देखब ना कि कोई चीज हमन करती तो ओटीपी आयल जल हमन वन टाइम पासवर्ड करती जो तनी देर बाद अपने खत्म हो जाए, वो ओटीपी ला कोई से साझा नहीं करना चाहिए। और जैसे पिन बनाते हैं कहब ना यूपीआई पिन जेकर में पिन के द्वारा ही जनरेट होल ना अब कि पैसा उठे वो जब हम निकाल थी एटीएम से ही काली चाहे ऑनलाइन करी तो वो जो भी पिन अगर बनाए ही ना या उकर पासवर्ड है वोला कभी दूसरे से साझा नहीं करना चाहिए। एकर से का होल कि भाई एकरे द्वारा जो है ना फिर ठगी चालू होल।
0: और एक संगे कई गो देखा आजकल तो मोबाइल सब जन धरे रहते हैं तो कई गो लिंक मनात रहे अपन व्हाट्सएप में देखी का लिंक है इस कहीं वीडियो वीडियो देखे के चक्कर में वो लिंक लाए दे दबाए देते हैं फंस जाते हैं चक्कर में पूरा मोबाइल हैक हो जाए
1: ठीक
0: पूरा व्हाट्सएप हैक हो जाए तहाँ तो दूसर जन जब मैसेज जाए लगी पैसा भेज
1: राउर कर जानकारी पूरा साझा होगी है ना।
0: अब
1: नहीं लोग भावन चीज भेजते ना भैया कि राउर मन पर इतना देखा कि राउर जो है इतना पैसा जीत गई तो एकर बर काहे भेजा थी तो एकर ओटीपी आई तो राउर ऐसा करी एकर में काहे आदमी लोभा जाल।
0: एकर संगे संगे जो सोशल मीडिया मना है जहाँ हमारे ढेर वगैरह फोटो मला डालती अपन व्यक्तिगत जानकारी मला देती इला भी साझा करे से बचना चाहिए। अभी देखिए कई गो ऐसा रहे कि ढेरे झने रे घर ले निकल ही कहूँ सैर सपाटा में जाते हैं तो सैर सपाटा में जाते हैं तो वहाँ अगर फोटो मला वीडियो मला डालत रहते हैं कि हाँ, फलना जगह पहुँच
1: गए
0: मैं यहाँ पहुँच गया हूँ
1: हाँ,
0: अब दो दिन यहाँ रहूँ तीन दिन बाद घरे फिर हूँ
1: हाँ,
0: तो सोशल मीडिया में जानकारी ला दे के कई जन फंस जाता है घरे चोरी डकैती हो जाता है यही और एक तरह से साइबर अपराध है। काहे कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम जानकारी साझा करत हैं तो एकर से भी बचना चाहिए। और मोबाइल चाहे कंप्यूटर में नियमित रूप से अपडेट जो बहुत सारा एंटीवायरस बना है प्रयोग ला कम करें
1: हाँ।
0: देखें कि यार एंटीवायरस के नाम से आता है तोला क्लिक झिन करें। एकर संगे संगे कई गो जो विश्वसनीय वेबसाइट है ओला चाहे कोई भी ऐप ला ऑनलाइन लेन देन वही ला करें जहर विश्वसनीय है।
1: हाँ एक बात कर बात हवे जिससे कभी कभी फ्रॉड में ठगी में ये करते ना कि फलना बैंक से कहत हूँ कि एकस एकस करी तो बैंक कभी जो है ना व्यक्तिगत जानकारी ला नहीं मांगे। बैंक के अपन अपन ऐप से वो बैंक जो जैसे रौरे जात ही तो व्यक्तिगत जो है उन ओमन आमने सामने बात करते हैं ओमन नहीं भेजे कि रौरे ये भेजी वो भेजी तो ये सावधान होना जरूरी है।
0: हम देखिए कि जैसे मोबाइल में कोई लोग भुगतान करते ही कई गो ऐसा ऐप है जेकर माध्यम हम डाउनलोड कर रहे ही अब बोला कोई ला काकरो जब 10-20 रुपया भी देना है तो लान मोबाइल में ऑनलाइन भुगतान कर दो
1: हाँ।
0: तो ए में भी बहुत सावधानी बरते हैं यूपीआई जो भुगतान कर समय पे और कलेक्ट कर जो रिक्वेस्ट रहे ओकर अंतर ला समझें।
1: अच्छा
0: पे करते हैं तो कर का मतलब है कलेक्ट करते हैं तो ओकर रिक्वेस्ट कर का मतलब है
1: हाँ।
0: तो ये नुकसान हो सकता है और संगे संगे साइबर ठगी हो गया अगर ठगाया गया कहीं कस तो तुरंत जो हेल्पलाइन है 1930 नंबर 1930 हमें कॉल करके शिकायत करें।
1: अच्छा तो भाई बिल्कुल ये बात कर ध्यान रखी कि जागरूक रहना है हमला कभी भी लालच से बचना है कभी भी अपन जो कहीं कहीं स्क्रीन शेयरिंग से भी बचना चाहिए हमला है ना। तो भाई ये सब पर कर ध्यान करें और ऑनलाइन बढ़िया चीज़ हवे बाकी सावधानी जरूरी हवे।
0: एक शिकायत भी करना है तो एक ध्यान दें कि भारत सरकार हरेक ऑनलाइन व्यवस्था भी करी से राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल बनाई से
1: अच्छा।
0: वहाँ सीधा शिकायत कर सकते हैं। एक संगे धर्म भैया कोई कोई दिवस रहल तो आए जाए संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
1: अच्छा
0: संघर्ष का क्षेत्र में कहला कि जहाँ महिला मन काम करता है कोई भी संस्थान है जहाँ महिला मन काम करता है वहाँ उमन कर जो यौन शोषण हुए चाहे यौन हिंसा हुए उकर उन्मूलन कराए दिवस है। अच्छा। तो ये आजकल रोरी देखिए कि देश भर का जितना भी शासकीय कार्यालय है, अशासकीय कार्यालय है, वहाँ एक अलग अलग विंग बनाल गई से, उनमें को समिति बनाल गई से जो हर चीज़ का निगरानी करेल, शिकायत प्राप्त करेल कि कोई महिला कर कोई ऐसा हिंसा तो नहीं होते जिनमें वो परेशान है। कई बार एक जानकारी भी अपन आस पास मतलब घर कर परिवार कर सदस्य मतलब नहीं दे पाए, अपन बॉस ला नहीं दे पाए, अपन साहब ला नहीं दे पाए। एक बार व्यवस्था करल गई सा है कि अगर कार्य क्षेत्र में जहाँ जब संघर्ष करते हैं कार्य करते हैं वो जगह अगर ओमन कर शोषण होता है चाहे ओमन कर यौन हिंसा होता है तो ओकर जानकारी ला तत्काल दें और ओकर से निवारण पाए। अगर चुपचाप रहीं गुमसुम रहीं सोचें कि लोक लाज के कारण एक जानकारी नहीं दी तो ये परेशानी और बढ़ते जाएगी।
1: बिल्कुल।
0: तो हर विभाग में हर शासकीय चाहे भारत सरकार का कार्यालय हो चाहे राज्य सरकार के कार्यालय हो चाहे निजी संस्थान हो सब जगह को समिति बनी सा है। वो समिति में कोई भी तरह की शिकायत कर सकता है तब यदि आज कर जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है एक सार्थकता सिद्ध हो।
1: बिल्कुल ठीक कहें कि अगर कोनो कस अगर रौरे वो बात ला लुका थी ना तो काहे कि वो हर बढ़ावा हवे वो आगे चल के और ज्यादा घातक हो सके। तो निश्चित रूप से काहे कि आगे आना चाहिए। अभी तो देखिए कि महिला मन सब चीज में आगे हमें पढ़ल लिखल हमें, बाकी काहे कि कोनो कस अगर ये प्रकार का अपराध होता है यौन हिंसा होता है तो आगे आना चाहिए और जो भी करत है उसे सबक सिखाना जरूरी है। तो देखब अग्नि भैया कि हमारा बेरा हो चली से कार्यक्रम किसानवाणी कर तो चलल जाए किसानवाणी कति
0: चला चली।

0: किसान वाड़ी सुनैया हमारे जम्मो किसान भाई उनकर घर कर लोग संगता गोटा गांव घर कर बहुत बहुत स्वागत और धर्म भैया कर राम राम संगे संग अग्नि भैया राउर के भी राम राम
1: हो राम राम कहत हूँ धर्म भैया राउर लवे जितने किसान भाई में सुनत है और कार्यक्रम लो मल अभी राम राम
0: हाँ बहुत बहुत स्वागत कर थी। देखिए अभी खेती पाती चलत है ना थकल विदाल आए रहते हैं तो यही घनी जो है ना एकदम मुलाकात करे कर बढ़िया बेरा हवे
1: बढ़िया बेरा है संगे संगे यही बात नहीं है अभी देखा हम कर जो बढ़िया है रेडियो मन कार मन में चलत है
0: हाँ
1: तो शहर कर जो आदमी मन भी काम धाम करके फिरत है ना तो कार में बढ़िया सुनत है अमन कर रेडियो ला
0: बिल्कुल
1: तो अमन कर कोनो कोनो कर तो फोन आयल की भाई ये तक बढ़िया जानकारी देता है
0: हाँ,
1: नहीं फूल हाँ, कर हाँ, खेती हाँ, तो हाँ, भंटा कर खेती तो विलेती कर खेती तो सबे जन सुनत है ऐसा
0: हाँ,
1: बात नहीं है कि हमारे गाँव के किसान में सुनत है
0: तो, कारण भी है ना अभी भी है कि कहे के एकदम सफा आता है ना हाँ कहीं जो है ना घर घिर हो तो पहले ओकस नहीं होता है एकदम स्पष्ट आवाज आ
1: तभी तो सुनता है और ओकर प्रतिक्रिया भी देता है। बाकी आज हम जो ढेरे कार्यक्रम आए हमारे जगह आए जाए तो फूल उत्पादन कर संबंध में जानकारी देकर तो आजकल तो देखा खेती पाती है संगे संगे होता है भट्टा बिलेती मिर्चाई और जो लौया और कोहड़ा सभी जन
0: लगाते
1: हैं। बाकी अधिक किसान मन भी एक कति ध्यान देते हैं कि फूल उत्पादन करके भी लाभ कमाते हैं।
0: हाउ भाई देखिए ना साल भर अभी फूल भेटाता है कि पहले तो कहा है कि देखत रहना तिहार बार घनी फूल देखे में आया मतलब 10-15 बच्चर पहले अब तो कहा लिख रही नियर फूल अच्छा व्यवसाय करता है बढ़िया लाभ लेता है।
1: हाँ और अगर समसामयिक जो फूल रह नहीं महिला अभी अब बरसात आए वाला है इस समय हम मतलब बरसात में का फूल भेटाई तो यदि गाँव कति जाती तो ढेरे मान जंगली फूल मन भी भेटाएल क्योंकि हमला लागल कितनी बढ़िया यदि गुलाब फूल भेटाई जाती नहीं हाँ। बेला भेटाया जाती चमेली भेटाई जाती तो तरह तरह के जो फूल है कई गो विदेशी फूल मन भी हैं
0: हाँ।
1: नहीं ओमन भी भेटाई जाती तो सब जायत कर खेती होता है और सब ले सब यदि गेंदा कर जो खेती है वो हर किसान भाई मतलब माला माल कर दे
0: हाँ। गेंदा फूल तो कहब ना कि वैसे तो कहब ना कि फूल कर जैसे अंबिकापुर में तो कहब कि एक अति जहाँ हिकलन देवीगंज के एक अति तो फूले फूल कर बाजारे हवे और गेंदा फूल कर बात कहें तो ओकर तो कह साल भर मांग रहा है लोकर
1: गेंदा हो गिस गुलदाउदी हो गिस सूरजमुखी हो गिस कासमास हो लेगो जीनिया हो गिस एगो रजनीगंधा कर तो

0: वेरे मांग।
1: हाँ नहीं, हाँ ठीक तो है, गुलाब कर भी,
0: गुलाब कर भी। हाँ। और आजकल तो देखिए छोटे मोटे कार्यक्रम कहीं आए, ककरो जन्मदिन आए, ककरो शादी के साल गिरा है, तो ककरो कहा कार्यक्रम आया, सुख दुख सब में तो फूल कर गुच्छा।
1: हाँ
0: नहीं, जरा हमने दे
1: गुलदस्ता
0: का थी तेरा।
1: हाँ,
0: लेके जाते हैं।
1: हाँ,
0: और मैं देखता हूँ नहीं तो कोनो कोनो कार्यक्रम में तो ढेरे एक दुई ट्रैक्टर उझेल धार थे।
1: हाँ,
0: जे जाते कराते वही।
1: हुँ,
0: तो ये बात है कि भाई सीधे सीधे कि फूल कर मांग है।
1: बिल्कुल, फूल कर मांग हवे। और जो है पहले नियर स्थिति नहीं है, अब हमरे गांव घर में जो है ना बढ़िया खेती करता है।
0: तो हम उनका देखे नहीं तो शहर से लगल जो डिगमा क्षेत्र है, अजम नगर है, महावीरपुरा है, यहाँ फूल कर बड़ा बड़ा बैगान लगा देना।
1: हाँ।
0: गेंदा कर फूल छोटे बड़े सब कर खेती होते। बलरामपुर जिला कति चल दिया, वहाँ आरा गही कति फूल कर खेती होता है।
1: हाँ।
0: तो ये सब पूरा फूल कर हब बन गई से ज़्यादातर किसान मन ऐसा मौसमी फूल लगाते हैं जो 60 दिन से लेकर 120 दिन के भीतर पैदा होता है, मतलब फूलना शुरू हो जाता है।
1: हाँ। एक
0: मांग बढ़ता है। अभी जो किसान भाई में लगाए वो सीधे अक्टूबर नवम्बर में सीधे मोला दिवाली दशहरा घनी ये फूल और फायदा देगी। फिर छठ का त्यौहार हो जाए, फिर एकादशी का त्यौहार आ जाए, तो बाजार में रोरे देखत हो कि कितना बिक्री हो।
1: हाँ हो, और संगे संगे तो जैसे रोरे कहें ना कि कहीं जाए हो त्यौहार बार हो जन्मदिन मरा दिन सब में फूल कर जो है जरूरत पड़बे कर।
0: तो किसान भाई मन कम भूमि में अधिक कमाई कर सकता है। अगर कोई किसान जगह एक एकड़ कर फूल कर खेती है पारंपरिक फसल के तुलना में ज़्यादा लाभ दे, और अभी से लगाना शुरू कर दें, अभी से तैयारी शुरू कर दें, और फूल कर तोड़ाई होकर पैकिंग माला बनाए के वाला दूसर राज्य तक पहुँचाए कर काम भी किसान भाई मन करता है। महिला मन समूह बनाए के एक राज्य से दूसर राज्य तक पहुँचाए जाते हैं। हमन कर सरगुजा कर फूल हर तो धर्म भी आसपास के पड़ोसी प्रांत तक पहुँचता है, झारखंड बिहार यूपी तक जाता है।
1: बड़ा बढ़िया बात है भाई।
0: हाँ, समय हर बदली सा है, किसान भाई मन बदलाव करके और मतलब कमाता है। एक संगे संगे किसान भाई मन अगर गेंदा कर फूल लगाना चाहते हैं तो प्रति एकड़ एकर लागत 40,000 से लेकर 70,000 तक आ सकता है। और बाजार में एकर अगर मौसम के अनुसार आए देखे नहीं तो 1.5 लाख से 3 लाख रुपए एकर कमाई हो सकता है मात्र 70,000 रुपये खर्चा करके।
1: तो देखिए कितना बढ़िया हुए।
0: और सरकारी सहायता भी मिल सकते हैं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन चाहे राज्य कर कई गो उद्यान की ऐसा योजना है, उद्यान विभाग से संपर्क कर लें और 50 डिसमिल से लेकर 1 एकड़ तक किसान भाई मन फूल कर खेती कर सकता है, एकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है निःशुल्क, पौधा कर जो सामग्री रहे ओहर उपलब्ध हो सकता है, अनुदान अच्छा। भी मिल सकता है। तो किसान भाई मन ये सब चीज़ करके फूल कर खेती में भी अपन हाथ आगू बढ़ा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखब कि का है कि एक साथ कई ठन रोजगार भी पैदा होल ना। नर्सरी कर व्यवसाय कर सकता है, बीज उत्पादन कर सकता है, जैविक खाद कर, फूल कर पैकेजिंग, ये सब जो है एक से जुड़ल हवे। निर्यात जो है जैसे हमने यहाँ कथी ना भारतीय फूल जैसे गुलाब कार्नेशन कर बहुत मांग हवे, एकर से कहे कि हमारे यहाँ विदेशी जो मुद्रा है ओकर भी कमाई के अवसर मिले। ओकर अलावा कहब कि पुष्प कृषि पर्यटन जैसे फूल कर प्रदर्शनी और पार्क लगाए रहते ना, तो कहा है कि एकर ले भी उद्योग मजबूत होल, आधार प्रदान करेल, तो ये अर्थव्यवस्था में भी कहब कि बढ़िया योगदान दे सकते हैं।
0: देखिए अगवाऊ हम एक जानकारी यह है कि अभी तो चलता है नहीं सूर्य घर योजना।
1: प्रधानमंत्री
0: सूर्य घर योजना, एकर फायदा ला देखिया नहीं तो देखा अभी हम बैठे ही नहीं ये जगह, वो जगह लाइट लप झिप करता है।
1: हाँ।
0: एक घड़ी अंधार के घड़ी जो
1: हाँ।
0: नहीं तो हमन करे जो बिजली है एकर बिजली के उत्पादन है धीरे धीरे कम हो जाता है। और जनसंख्या बढ़ जाता है, घर बढ़ जाता है, बिजली का खपत बढ़ जाता है। घरनिया आप देखिया नहीं तो पहले खाली को पंखा हर घूमत रहे, बाकी अब तो कूलर होगी नहीं।
1: हाँ।
0: अब ए सी मला लगाता है।
1: अब खासकर अग्नि भैया जो है दूर दराज जो जगह है ना, जहाँ भाई बिजली पहुँचाना बहुत मुश्किल काम हवे, ओकर भर तो ये कहब कि वरदान हवे।
0: वरदान है। फरवरी 2024 में योजना हर शुरू हुई सा है और अभी तक 1 करोड़ से अधिक घर के छत में एला सोलर सिस्टम लगाए के बिजली बिल कम करे कर व्यवस्था हो चुकी से।
1: अच्छा।
0: और पूरा एक योजना का कुल जो बजट है वो 7500 करोड़ रुपया है।
1: अच्छा, आप देखब ना कि एकर वर्क 300 यूनिट तक मुफ्त जो है ना बिजली हम कर बचत हो सकेल। सब्सिडी राशि भी हवे, 3 किलोवाट कर जैसे लगाता है ना सोलर सिस्टम, तो ओकर बर का है सरकार जो है 78,000 तक के सब्सिडी मतलब छूट भी दे।

0: तो किसान भाई चाहे कोई भी शहर के लोग भी अगर हमारे कार्यक्रम में सुनत हुई तो अपन घर में भी ये सोलर ला लगवा सकता है। एक किलो वाट का रोवे बताए कि 30,000 रुपया सब्सिडी है, 2 किलो वाट का 60,000 रुपया और 3 किलो वाट चाहे कर से अधिक अगर है तो 78,000 रुपया अधिकतम सब्सिडी मिलता है,
1: मिल सकल है वो। देखो अब एक पर का है कि पात्रता जो कथे ना कौन कर सकेल तो कुछ खास नहीं हवे, आवेदक जो भी है जो लगाना चाहते हैं इस भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए और जो घर है ना रहे पक्का रहे छतदार हो रहे और घर में जो है ना वैध बिजली का कनेक्शन होना चाहिए।
0: और संगे संगे जो किसान भाई मन अगर अपन घर से ज़्यादा उपयोग करता है अगर बिजली हर बचता है तो सरकार ला बिजली ला खरीद भी लेता है और सीधा यार पावर ग्रिड से जुड़ल रही। अगर हम उनकर घर में मान लो 400 यूनिट का खर्चा है हर महीना और हमारे जब बिजली उत्पादन ज़्यादा होता है तो वो बिजली हर सीधे सीधे वापस हम उनका जो CSPDCL छत्तीसगढ़ कर है वो विभाग में चल जाए। अच्छा। और उनका फायदा है सीधे सीधे हम लोग भेटा ही वापस हम जब वो जो बिजली बिल रहे हमारा भुगतान नहीं करना पड़े। अच्छा। तो हम आम का राम और गुठली का दाम दोनों कथी से लाभ कमा सकती योजना लगाए के और हम पैसा कमा सकती।
1: बहुत बहुत बढ़िया बात है।
0: तो वही बात है कि किसान भाई मन अगर जागरूक रह के ये सब योजना मन का लाभ ला लें तो खुद भी यदि आत्मनिर्भर हों और घरेलू सौर ऊर्जा से हम कथी ना कि आत्मनिर्भर हमारा होना है।
1: हाँ बिल्कुल भैया, वो कहा है कि ये चीज हर का है नष्ट होने वाला नहीं है ना भाई। हमन जो अपन जो बनाते हैं अपन निर्माण करती जो वो तो भाई एक ना एक दिन जो है कम हो ही ज्यादा हो ही नष्ट हो सकेल। बाकी कहा है कि सूर्य जो है सूर्य के द्वारा ये संचालित है तो जब तक चाहे दुनिया जहान रही तब तक जो है सौर ऊर्जा रही। हाँ तो अग्नि भैया रौरे में देखा था कि कहत कि गीत संगीत हो जाए।
0: हाँ भाई धीरे गोइट करें से को लोग गीत हो जाए।
1: हाँ कौन गाता है बताई तो।
0: गुलाब सिंह पैकरा उनको संगता मन कर गाल है तो सुनल जाए
1: लगे तो।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: हाँ अग्नि भैया, ये संदेश ला सुने और एक पहले बड़ा सुघर अकन रे गीत सुनवाएन, कोयली खस घुर तुर बोली तुर।
7: हाँ भाई, बड़ा बढ़िया रखा गीत लागल।
6: देखी डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जी से मोर गोट बात हो रही कि माटी परीक्षण कैसे कैसे कराएं और ओकर से का लाभ हो सकेल, तो सुनल जाए अग्नि भैया और किसान भाई भी सुने।
7: लगे तो सुनल जाए।

0: अंबिकापुर में पदस्थ हैं। मैं इनकर से जानना चाहत रहें कि ऐसे हम ढेरे मृदा स्वास्थ्य कार्ड कर बारे में सुनत ही ना, ओकरे बारे में मैं सोचे कि कटिक गोठियाल जाए। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब राउरकर
1: जी। धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। बहुत दिन से सुनत ही कि ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये का हवे
1: जी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है ये एक प्रकार से कार्ड है, जैसे हमार जो मनुष्य हन वो खर जो शरीर में कुछ बीमारी है या कोई तत्व की कमी है ओखर पूर्ति बर हमन का करथन टेस्ट कराथन। टेस्ट मतलब या तो ब्लड टेस्ट कराथन, एक्सरे कराथन, तो ओखर से पता चलते कि हमार का बीमारी है हमारे शरीर में या कोई तत्व कमी है। अगर कुछ तत्व के या आयरन के कमी हो गए तो ओखर लिए हमन गोली खाथन या कोई ओखर लिए उपाय होते। वैसे ही ये जो है मृदा के स्वास्थ्य कार्ड है, ये कार्ड है वो बताते कि हमारे मिट्टी में कितना कितना जो तत्व है वो कितना कितना मात्रा में है, कम है ज़्यादा है, अगर कमी है तो खर पूर्ति करना है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही है कि वो हमार मिट्टी के वो क्षमता बताते, उर्वरा जो है शक्ति बताते कि इतना मात्रा में है तत्व।
0: अच्छा, मृदा कर मतलब तो माटी है।
1: हाँ माटी है।
0: हाँ। तो मतलब माटी कर जो परीक्षण कराना है, टेस्ट कराना है, और ओकर जो कार्ड बनत हुई वही हवे स्वास्थ्य कार्ड है ना
1: जी।
0: तो हमन माटी कर परीक्षण ला कहाँ जा करा सकती अपन क्षेत्र में?
1: देखो किसान भाई, अभी अंबिकापुर में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है, वहाँ जाके आप अपन मिट्टी के परीक्षण करा सकते हो। वहाँ आपके कार्ड भी वितरित करे जाही और कितना मात्रा में खाद डालना है या कौन सा तत्व कमी है और कितना मात्रा में डालना है वो भी वहाँ बताया जा रही।
0: अच्छा, जैसे हमन माटी कर परीक्षण करा थी तो हमन ला कैसे कैसे करना पड़ी, माटी ला कैसे लेजना पड़ी
1: जी? माटी परीक्षण करे बर सबसे पहले जो ऊपरी मिट्टी है वोला, जो कूड़ा करकट रही या तो घास फूस उगे रही वोला सबसे पहले हटाना है, और जो जैसे खेत है ओखर 8 से 10 जगह से लेना है। जैसे 1 एकड़ खेत है तो 8 से 10 जगह से मिट्टी लेना है।
0: अच्छा,
1: मैं किसान भाई बता देना चाहता हूँ कहाँ कहाँ से मिट्टी नहीं लेना है। तो जो मेड़ के किनारे है वहाँ से मिट्टी नहीं लेना है।
0: अच्छा,
1: खासकर जो वृक्ष है, पेड़ है, ओखर नीचे के मिट्टी नहीं लेना है। जहाँ अगर खाद के घेरी लगाए हो, गोबर खाद वगैरह कुछ के ढेरी लगाए हो तो वहाँ की मिट्टी नहीं लेना है। मेड़ से 5 से 6 जैसे फीट है ओकर अंदर के मिट्टी लाओ, 8 से 10 जगह के। ऊपर से घास फूस ला हटा देना है। ओकर बाद वी आकार के शेप में 15 सेंटीमीटर वी आकार के गड्ढा करना है।
0: अच्छा,
1: वो मिट्टी निकाल देना है। फिर जो
0: अंग्रेजी कर भी आकार जो,
1: हाँ, अंग्रेजी जो
0: VW वाला, हाँ, तो
1: भी आकार के वो वहाँ कटिंग करना है जो हमारे मिट्टी ही वाला।
0: अच्छा,
1: फिर पूरा मिट्टी निकाल देना है। फिर हमला एक अंगूर के बराबर लगभग हमला उखर साइड बाय साइड दोनों साइड से मिट्टी निकालना है।
0: अच्छा,
1: हाँ, वो खर बाद ओला इकट्ठा करना है।
0: वो जो भी आकार के अपन करब और करीब करीब कितना गहरा रही
1: वो 15 सेंटीमीटर।
0: अच्छा,
1: 15 सेंटीमीटर के, और दोनों तरफ से जैसे वी है ओखर दोनों तरफ से एक एक अंगूर के आसपास मिट्टी ला ऐसे काट काट के निकालना है दोनों तरफ।
0: अच्छा,
1: वो मिट्टी ला इकट्ठा करना है। वैसे ही 8 से 10 जगह है वहाँ के सब मिट्टी ला इकट्ठा करना है। फिर ओला आधा किलो हो जाए, पहले 4 भाग में बांटना है, फिर जो विपरीत दिशा की मिट्टी निकालना है फिर मिलाना है, फिर जो विपरीत दिशा की मिट्टी निकालना है, फिर आधा किलो के आसपास मिट्टी ला मिट्टी परीक्षण केंद्र में लाना है, वहाँ चेक करके बताया जाए।
0: अच्छा, जैसे रौरे कहा थी ना कितना 8 जगह से, करीब 7-8 जगह से लेना है
1: जी,
0: तो और करीब करीब कितना हो जा रही, 2-2.5 किलो नियर हो जा रही है ना।
1: हाँ,
0: बोला आधा किलो कैसे करना,
1: आधा
0: है?
1: किलो करना 4 भाग में पहले बांटना है, जैसे
0: अच्छा।
1: बीच फैला देना है मिट्टी ला।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: फैलाए के बाद 4 भाग में इसे बांटना है।
0: अच्छा,
1: 4 भाग में बांटे के बाद जो विपरीत दिशा में रही, मतलब 4 भाग जैसे इसे बांटे हैं धन आकार में हो जाही।
0: हाँ?
1: तो फिर विपरीत दिशा के ला निकालना है, जैसे ऊपर ऊपर में 2 भाग रही, नीचे में 2 भाग रही।
0: हाँ?
1: तो ऊपर के 1 भाग और नीचे के 1 भाग विपरीत दिशा में ऐसे लेना है,
0: निकालते जाना है,
1: निकालते जाना है जब तक कि आधा किलो ना हो जाए।
0: ना हो जाए तो आधा किलो ला हम ले जाके
1: मिट्टी परीक्षण केंद्र में जमा करना है।
0: अच्छा, तो ओकर में हमन ला का का चीज कर जानकारी प्राप्त हुई?
1: ओकर से जो तत्व है, जैसे हमारे जो पौधा वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्व रही थे, तो वो मां खासकर जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ओकर बाद फिर हमार सूक्ष्म कुछ सूक्ष्म तत्व भी है, जैसे आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर।

0: कॉपर, जिंक है, बोरान है, सल्फर है, ये सब के भी ओम जानकारी मिल जाएगी कि कितना मात्रा में हवा आपके मिट्टी में ओखर हिसाब से आप लग कितना मात्रा में देना है वो भी ओमन सुनिश्चित करे जाही।
1: अच्छा, हमन का करती है, अधिकांश जो है किसान भाई ये करते हैं कि भाई जो है सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में जानकारी नहीं रहे ओमन ला
0: जी,
1: बाकी ये भी जरूरी है ना।
0: हाँ, ये भी जरूरी है लेकिन कम मात्रा में जरूरी है जी।
1: ये हमारे किसान भाई अगर जैसे माटी का परीक्षण करा लेते हैं, अपन कार्ड बनवा लेते हैं, उनके पता चल जाए कि हमारे माटी में कौन कौन सा

0: जरूरी है लेकिन कम मात्रा में जरूरी है जी।
1: ये हमार किसान भाई अगर जैसे माटी का परीक्षण करा लेते हैं, अपन कार्ड बनवा लेते हैं, उनके पता चल जाए कि हमारे माटी में कौन कौन सा पोषक तत्व तो है, कौन सा कम हवे, कौन सा बेसी हवे, तो वो हिसाब कर खेती करी तो बढ़िया रही
0: जी।
1: और का लाभ हो सके
0: एक से ये रही कि जो हमन जैसे मिट्टी परीक्षण नहीं हो रहा है तो हमन अंदाजी रूप से डालत रहते हैं, जितना खाद के जरूरत नहीं मिट्टी उतना भी हम डालत रहते हैं।
1: हाँ।
0: तो मृदा परीक्षण कार्ड अगर हमला मिल जाए
1: हाँ?
0: तो हमारे तत्व तो पता चल जाए तो का तत्व के कितना मात्रा में है, तो जितना कमी है उतना ही डालना है, अधिक जाले की जरूरत नहीं है, तो खर से का हो ही हमारे खाद की बचत हो ही। बहुत सारा तत्व रही थे कि जैसे फास्फोरस और पोटास की बात करी तो वो मिट्टी में लगभग रहते ही सामान्य रूप से वो पाए ही जाते कि मध्यम से ज़्यादा ही पाए जाते थोड़ा, तो वो मुखर हमारे कम मात्रा में, लेकिन कितना चाहिए वो हमारे स्वास्थ्य कार्ड बता दी और वहाँ बाकायदा लिखे रही अनुसंचित मात्रा की आप लोग कितना किलोग्राम डालना है वो भी वहाँ लिखे रही कार्ड।
1: अच्छा,
0: आपके
1: अच्छा,
0: तो हिसाब से हाँ। आपके खाद के बचत हो जाएगी।
1: हाँ देखा कि अधिकांश किसान भाई जो हैं नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास वो तीने चीज डालत रहते हैं, और कभी कभी का होल कि उपजाऊपन में कमी भी आयल
0: जी,
1: कहे कि कोनो फसल कौन सा फसल हो ही ये बात कर भी तो जानकारी हमें हो जाए, तो मतलब लाभ ही लाभ हो।
0: हाँ, लाभ है खैर से मृदा कार्ड से बहुत लाभ है।
1: का का लाभ हो सके और
0: तो एक तो हो जाए कि ये हमार खाद के बचत हुई।
1: हाँ।
0: सेकेंड है कि सही मात्रा में जाही, का है कि बहुत सारा जो तत्व है अगर ज़्यादा मात्रा में भी अगर हम अंदे देते हैं तो बुखार से फसल भी नुकसान हो जाते।
1: हाँ।
0: अगर ज़्यादा मात्रा में दें, कम मात्रा में कमी दिखाते लेकिन आवश्यकता से अधिक दे देते हैं तो वो पौधा लभी हानि पहुँचाते कहीं न कहीं।
1: हाँ, हाँ, हाँ, मन ज़्यादा खा लेती तो
0: जी
1: नुकसान हो।
0: जी जी जी, तो वही बातें, तो हमला एक समुचितना चाहिए पौधा ला उतना ही देवो तो हमार उत्पादन में भी वृद्धि हो ही और हमार जो अतिरिक्त खर्च रही से वो खर्च भी बचत हो जाए।
1: बहुत बहुत बढ़िया बात कहें कि देखिए कि माटी का परीक्षण कराए के बाद अगर खेती करत हैं तो का है जो पैसा ढेबुआ अनभनिया जात रहीस ओ नहीं जाई
0: जी,
1: संतुलित मात्रा में हमला पता रही तो वही हिसाब कर हमन जो है वही हिसाब कर खाद दे।
0: हाँ।
1: और आय में तो भाई वृद्धि हो बिच करी, कहे हाँ। कि बचत भी होने होना है
0: जी,
1: है ना। हाँ। तो कहे कर मतलब ये है कि माटी का परीक्षण कराना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है
0: जी। साथ ही ये भी बोलना चाहता हूँ कि अतिरिक्त जो से हम डाल देते हैं वो मिट्टी में खाद
1: हाँ।
0: तो वो क्या करते फायदा की जगह हमारे मिट्टी ला भी कहीं कहीं नुकसान पहुँचाते, मतलब अगर हम ज़्यादा मात्रा में जाते हैं तो वो उखर उर्वरा शक्ति ख़त्म कर देते, वहाँ पर बहुत सूक्ष्म जीव रही थे वोला मार देते। पहले देखत रहन कि हमार केचुआ रही बहुत संख्या में
1: हाँ।
0: लेकिन अब केचुआ की संख्या कम हो जाते धीरे धीरे, उखर मेन कारण कि हम अंधाधुन रासायनिक खाद के उपयोग करत हन और मतलब जैविक खेत जैविक मतलब गोबर से बने खाद वगैरह के उपयोग हमन कम करत हन, तो जो सूक्ष्म जीव है उखर भोजन का है ऑर्गेनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक पदार्थ गोबर के खाद से मिलते तो वो नहीं डालते, और ज़्यादा मात्रा में डालने से वो मिट्टी के उर्वरा शक्ति ला मतलब उखर भौतिक संरचनल भी बिगाड़ा थे, पहली मुलायम रहीस मिट्टी वो कठोर करत जाते, तो मिट्टी के भी कहीं न कहीं स्वास्थ्य खराब हो जाए अगर ज़्यादा मात्रा।
1: डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जी बहुत सुगर जानकारी दें कि भाई देखिए माटी का परीक्षण कराए से हम बचत होता है, हमार जो है खाद पानी कर बचत होता है, और एक बात और बताएं कि जो है माटी कर जो है ना उपजाऊपन हर भी बने रही
0: जी।
1: आज इतना सुघर जानकारी दें, रौरे के बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: इकर तैयारी कैसे करें। तो किसान भाई में जानते भी, लेकिन हम उनका जवाब लो बता थी, एक जवाब है खेत ला समतल बना ले पहले तो, और बढ़िया पैदावार पर बढ़िया जुताई भी करना जरूरी है, और माटी ला भुरभुरी बना लें, और जब पलेवा करें तो कोई भी खरपतवारों में झीन रहे।
1: हाँ देखिए आज कर सवाल हवे फूल कर खेती करे में का हमला सावधानी रखना चाहिए। राउर मनकर चिट्ठी एक हफ्ता ले पहले मतलब आए वाला बिफे ले पहले हमला मिल जाना चाहिए, और जो नवा किसान भाई हैं उनकर वह पता बताया तो आज कर सवाल ला लिख दही, तारीख ला लिख दही, चौपाल अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाशवाणी पोस्ट बॉक्स नंबर 27 अंबिकापुर 3497001, और आज कर हमार किसानवाणी अतरिक्ष।

0: हाँ भाई, देखिए बड़ा सुखर अकन जानकारी दहीन हमारा डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार कृषि वैज्ञानिक। देखिए बेरा हो चली से मंडी भाव मौसम कर बात करे कर, आज अंबिकापुर कर मंडी में मकई रहीस 2400 रुपये प्रति क्विंटल, कोदो रहीस 3300 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूँ रहीस 3350 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों रहीस 6000 प्रति क्विंटल। मौसम कर बात करल जाए, तापमान कर बात करल जाए तो आज कर अधिकतम तापमान रहीस 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहीस 17 डिग्री सेल्सियस। काल कर बारे में अनुमान है अधिकतम रही 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रही 18 डिग्री सेल्सियस।
1: तो देखा आज का सवाल जवाब कर बारी आएगी सर। तो बीतीस थे बीफे दिन हम सवाल कर रहे हैं कि धान कर खेती

0: अपने मियाँ देखिए चौपाल ले भी विदा लेकर बेरा हो चलिस है जरूर कहब भाई किसान भाई मन ला अभी देखिए स्कूल भी खुल गई से लड़का छुआ मन ला स्कूल भेजना है और लड़का छुआ मन कर संगे सियान मन कर भी ध्यान रखें और आने दिन फिर भेटाब और कहल जाए
1: राम राम, राम।

अभी ग्रामीण श्रोताओं के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी रेडियो साथी जयमाला। कार्यक्रम में पहले गीत के लिए हमें फरमाइश की है अनारकली वज्राव जंगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव ने। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकर लाल गंगराणे, वनीता गंगराणे और मोहम्मद हसनैन पवार ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, शाहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सामले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश ने। नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू, ज्योति ठाकुर, ग्राम चरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जशवीर जस्सी, सीता और गीता ने। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, हर्ष आहूजा ने। अंदार नानगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश और दीपेश वर्मा ने। चनौरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामचंद्र कुशवाहा ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म साजन का ये गीत एस बी बालासुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में अब सुनिए फिल्म दिल का क्या कसूर का ये गीत कुमार सानू की आवाज में। गीतकार है नवाब आरजू और संगीतकार है नदीम श्रवण। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा ने। रेडियो श्रोता संघ अभय सिलोड जिला छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री और यज्ञेश घोड़के ने। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू ने। ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन सिक्का ने। मुंडा टोला डोंडी लोहारा जिला बालोद छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम ने। अनुजनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंद्रभान राजवाड़े, बबीता राजवाड़े, धिया राजवाड़े, काव्या राजवाड़े और मंजू राजवाड़े। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेल साय मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, लकी मरकाम, सीताराम मरकाम, सितंबर मरकाम, अमरनाथ, मंगलमूर्ति, रोशन राजवाड़े, पांडे राम राजवाड़े, नूर साय राजवाड़े, हीरालाल प्रजापति, कविता मरकाम और आरती मरकाम ने। राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति। ग्राम काला पारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश का ये भाग अभी यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 होने को हैं। अब सुनिए 19 सास की भर्ती परीक्षाएं पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से विशेष भेंटवार्ता, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं रीना त्रिपाठी। श्रोताओं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा अक्सर कहा जाता है। लेकिन इस पंक्ति को छत्तीसगढ़ की एक होनहार बेटी चारू पांडे ने अपने जुनून से सच साबित कर दिया है। महज 23 साल की उम्र में चारू ने वह कर दिखाया है जिसका सपना लाखों एस्पिरेंट्स देखते हैं। उन्होंने एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और पुलिस समेत कुल 19 सरकारी भर्ती परीक्षाएं पास कर एक मिसाल कायम की है। रायपुर जिले के तुलसी तिल्दा की रहने वाली चारू आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। उनकी सफलता यह साबित करती है कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और सही रणनीति के साथ कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उनकी उपलब्धियों की चर्चा अब सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में हो रही है। और श्रोताओं, चारू इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनकी उपलब्धियों और उससे जुड़े संघर्ष के बारे में उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। चारू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी, थैंक यू।
0: चारू, सबसे पहले तो आपको बधाई आपकी उपलब्धियों के लिए। चारू, 23 साल की उम्र है आपकी। इस उम्र में आपने एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और पुलिस समेत कुल 19 सरकारी भर्ती परीक्षाएं पास करके एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। आप अपनी इस उपलब्धि को किस तरह देखती हैं और क्या आपको कोई सम्मान भी मिलने वाला है इसके लिए?
1: जी, मुझे अभी राष्ट्रपति जी से सम्मान मिलने वाला है एट होम पे 15 अगस्त को। इस उपलब्धि को बस मुझे देख के खुशी होती है क्योंकि मैंने भी कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि मैं इतने सारे एग्जाम्स क्लियर कर पाऊंगी।
0: चारू, 19 प्रतियोगी परीक्षाएं पास करना एक बड़ी उपलब्धि है। आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया था?
1: जी, एक्चुअली मुझे मतलब सोची नहीं थी कि कभी इतने सारे एग्जाम्स दूंगी, क्रैक करूंगी। बट ये था मुझे कि एक मुझे अच्छे डिपार्टमेंट पे जाना है। मेरा ड्रीम था कि मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही जाना है या मैं कोई भी एग्जाम से जाऊंगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट ही चूज करना था
0: जी।
1: फिर किसी का रिजल्ट पहले आता था, किसी का रिजल्ट बाद में, इसलिए मैं सारे फॉर्म्स डालते जाती थी, सारे एग्जाम्स देते गई बस।
0: तो आपका लक्ष्य क्या था?
1: मेरा लक्ष्य यही था कि मैं किसी भी स्टेट जॉब हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, बस मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाना है, यही मेरा एम
0: था। मतलब आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही काम करने का शुरू से मन था। जी चारू, आपने

0: कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं? इनमें से कौन सी सफलता आपके लिए सबसे यादगार रही?
1: हाँ, एक्चुअली मैंने एसएससी के जितने भी एग्जाम्स क्लियर किए वो मेरे लिए एकदम ड्रीम कम्स ट्रू जैसा था, क्योंकि मैं एग्जाम्स देने के लिए जाती थी, तब मैंने ये एग्जाम देखा था जिसपे एकदम मतलब टाइम इतना कम हमारे पास, इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, फिर जब ये क्लियर हुआ तो बहुत अच्छा भी लगता था। उसके बाद जो मेरा ड्रीम जॉब था फाइनेंस डिपार्टमेंट में, जैसे कि मुझे ऑडिट डिपार्टमेंट में जाना था, सो मुझे एसएससी सीजीएल के थ्रू ही उस डिपार्टमेंट पे मुझे हुआ, सो इसलिए एसएससी के सारे एग्जाम्स मेरे लिए बहुत वो है।
0: जी चारू, अभी आप कहाँ पोस्टेड हैं?
1: जी एक्चुअली अभी मेरी पोस्टिंग एसएससी सीजीएल के थ्रू हुई है, मेरी पोस्टिंग चेन्नई में है एज एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर।
0: चारू, मैं आपसे यह भी जानना चाहेंगी कि आपकी पढ़ाई करने की दिनचर्या क्या रहती थी, आपने किस तरह से तैयारी की?
1: जी एक्चुअली मेरा एक टारगेट रहता था कि मुझे इतने टॉपिक्स एक दिन पे कवर करना है, तो वो जितना भी टाइम लगे मैं वो कवर करती थी। एक्चुअली रात को सोने में वही 12-1 बज जाती थी और मुझे सुबह 4 बजे उठना होता था। तो जैसे कि अब हम फोन पे अलार्म सेट करेंगे, क्या होती है वो हम ऑफ करके सो जाते हैं, इसलिए मैं अलार्म सेट नहीं करती थी। मेरी नानी थी, वो मुझे डेली 3:40 में कॉल करके उठाती थी, क्योंकि नानी का कॉल ऐसा रहता था, एक बार आप कट किए या नहीं उठाए तो वो बार बार कॉल करती थी, तो उनका सबसे बड़ा
0: कॉल उनका अलार्म की तरह ही था आपके लिए, तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका है इसमें,
1: बहुत बड़ी है।
0: तो आप किस तरह से पढ़ाई करती थी, दिन भर आपका शेड्यूल क्या होता था?
1: दिन भर एक्चुअली स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स तो मैं कोचिंग भी जाती थी, तो 7 to 10 मेरी कोचिंग होती थी, फिर कोचिंग से आने के बाद मैं पढ़ाई करती थी। जब ऐसा होता था कि रूम में पढ़ाई का मन नहीं होता था तो मैं लाइब्रेरी चले जाती थी, क्योंकि लाइब्रेरी पे ज्यादा अच्छे से पढ़ाई होती थी। अगर आप वहां नींद आएगा तब भी आप सबको देखोगे पढ़ते हुए, तो खुद को लगता था कि
0: कॉन्सेंट्रेशन भी बना रहता है लाइब्रेरी में,
1: इसीलिए फिर मैं लाइब्रेरी चले जाती थी, फिर थोड़ा ऐसे माइंड फ्रेश करने के लिए एकाग्र घूम के फिर आके रूम में पढ़ाई करती थी।
0: तो पूरा दिन आप पढ़ते रहते थे?
1: हाँ ऑलमोस्ट, मतलब 7 मंथ्स जब तक मैं थी बाहर पीजी में, उस टाइम बस पूरा पढ़ाई ही की मैं।
0: यह भी बताएं कि अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपने कौन सी रणनीति अपनाई?
1: जी एक्चुअली एसएससी में देखेंगे या रेलवे में देखेंगे, इस दोनों में सबसे कॉमन चीज होती है टाइमिंग, क्योंकि जितना जल्दी हम जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए वो। दूसरी बात ये है कि इसमें हम लोगों को पहले ये समझना जरूरी होता है कि क्या क्वेश्चन हमें छोड़ना है, क्योंकि जो टाइम टेकिंग वाली क्वेश्चंस रहती है उसको हमें स्किप करना रहता
0: है, किसी किसी में नेगेटिव मार्किंग्स भी होती है,
1: नेगेटिव मार्किंग्स भी होती है इस दोनों में ही। तो फिर वही मेन चीज समझना होता है कि क्या क्वेश्चन हमें छोड़ना है, उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट दिए वो समझने के लिए। सिलेबस में मुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा, किसी में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा एड होती थी, किसी में कुछ टॉपिक्स कम होती थी। ये मतलब रेलवे के लिए मैं एक्स्ट्रा 2 आवर्स टाइम देती थी, क्योंकि उसमें थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाई करना होता था बस। बाकी एसएससी के लिए ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, बस इसी के सिलेबस से हो गई वो फिर।
0: चारू, इस वक्त आपको बहुत सारी युवा श्रोता सुन रहे हैं, तो आप उन्हें समय प्रबंधन को लेकर क्या सुझाव देना चाहेंगी?
1: देखिए, इसका एक ही है कि एक दिन का आप टारगेट बना के रखिए कि इतना पढ़ना ही है। कभी भी हम लोग टाइम टेबल सेट करेंगे, उस टाइम टेबल पे हम लोग कभी पढ़ाई नहीं कर सकते, इसीलिए एक मतलब रखेंगे कि इस दिन पे मुझे इतने टॉपिक्स कवर करनी है। अभी पढ़ने का मन नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद कर लो, लेकिन जब तक वो टॉपिक्स कवर ना हो तब तक सोना नहीं है
0: जी।
1: तो वो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट होगा, तो वो अच्छा होता है उससे, फिर सबसे ज्यादा मेरे काम वही आई।
0: क्या आपने कोई कोचिंग का सहारा लिया था या स्व अध्ययन पर ही भरोसा किया?
1: एक्चुअली अभी जितने भी एग्जाम्स किया मैंने, उसका कोचिंग मैंने नहीं किया, मैं सोशल मीडिया से पढ़ाई करती थी। सोशल मीडिया पे अलग अलग टीचर्स होते हैं, वो लोग सारे रील्स डालते थे, तो उनकी हेल्प से फिर मैंने पढ़ाई किया।
0: चारू, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और जो लोग टॉप करते हैं या कोई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं पास करते हैं, उन्हें अक्सर यह कहते सुना जाता है कि पढ़ाई के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूरी बनाई हुई थी, तो आपने किस तरह से सोशल मीडिया और पढ़ाई के बीच में सामंजस्य बिठाया?
1: जैसे कि उस पे मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ भी क्लियर किया हुआ है, जिसका नोट्स मैंने सोशल मीडिया से मैंने वो खरीदा, टॉपर्स का नोट्स, तो वो नोट्स और प्रीवियस ईयर सॉल्व करके ही मैंने यूजीसी नेट क्रैक किया। देखिए, जैसे कि वो ऐसा कंटेंट शो करते हैं सोशल मीडिया जिसपे हम इंटरेस्ट करेंगे, अगर एक बार हम स्टडीज वाला चीज देखेंगे तो वो हमें बस वही शो करेंगे, तो वो और अच्छे अच्छे सजेशंस देके वो हमें और अच्छे अच्छे वीडियो सजेस्ट करते हैं, जिससे बहुत हेल्प होता है। तो जैसे कि अब जब हम पढ़ाई का ही देख रहे हैं, तो जब भी हम खोलेंगे सोशल मीडिया पूरा हमें वही सब ही दिखाएगा, तो फिर डिस्ट्रेक्शन की तो बात ही नहीं है।
0: तो मतलब वो आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपकी तैयारी के लिए।
1: जी।
0: चारू, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या रही?
1: नहीं, बस थोड़ा थोड़ा बीच बीच पे डिमोटिवेशन होता था कि कर पाऊंगी या नहीं।

0: जी
1: बाकी और कुछ दिक्कत नहीं हुआ, ऐसा कुछ होने से पेरेंट्स होते थे मतलब मोटिवेट करने के लिए वो लोग।
0: चारू, क्या आपको याद आता है कभी ऐसा भी समय आया हो जब आपको निराशा का सामना करना पड़ा हो? और अगर हाँ तो उससे आप कैसे उभरी?
1: मुझे निराशा का सामना तभी करना पड़ता था जब मैं मॉक टेस्ट देती थी और मार्क्स
0: जी
1: कम आते थे,
0: जी
1: तो मतलब ऐसे ही देखते देखते मतलब पता चला भी हमारे पास सबसे ज्यादा एआई का यूज करते हैं हम,
0: जी
1: तो वहां से मैंने एनालिसिस किया तो एआई मेरे बहुत ज्यादा हेल्प किया। मतलब वो बताता था कि मैं कैसे मिस्टेक्स कर रही, कैसे इम्प्रूव करना है। तो अगर सबसे ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिला है तो
0: जी
1: एआई से मिला है।
0: आपने जो उपलब्धि हासिल की है उसमें आपके परिवार और शिक्षकों की क्या भूमिका रही?
1: शिक्षकों की भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि जितना भी मैंने उनसे पढ़ा उसी से ही जाके मैं पूरा सीखी। फैमिली फैमिली से मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, 100% सपोर्ट मिला।
0: जी
1: जो भी पढ़ना चाहती थी, जहां भी रह के पढ़ना चाहती थी, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे। सबसे ज्यादा सक्सेस पे मेरा मतलब देखेंगे तो मेरे फैमिली से ऑलमोस्ट सारे टीचर्स, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंड मदर, सारे टीचर्स पैटर्नल देखेंगे या मैटर्नल देखेंगे, तो सबसे ज्यादा उनका वो रहा। मेरे दादा स्वर्गीय श्री हीरालाल पांडे जी,
0: जी
1: वो भी टीचर थे। जो मेरे नाना जी थे मतलब
0: जी
1: स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर तिवारी जी,
0: जी
1: मतलब उनका शुरू से बिलीव था मेरे ऊपर। जब मैं छोटी थी तब से ही वो मुझे बोलते थे मेरी अफसर बिटिया, वो
0: जी
1: तब से ही बहुत बिलीव था उनको मेरे ऊपर कि मैं जाके आगे कुछ ना कुछ
0: तो
1: अच्छा
0: आपने अफसर
1: करूंगी।
0: बन के दिखा दिया। और
1: जी
0: फ्रेंड्स का क्या रोल रहा आपके जीवन में?
1: फ्रेंड्स का बहुत अच्छा रोल था। मतलब जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, जब मुझे ये हुआ कि मुझे कोचिंग करना है, मतलब
0: जी
1: ये अब देखेंगे छत्तीसगढ़ पे सबसे ज्यादा कोचिंग होती है सीजीपीएससी की,
0: जी
1: तो मैंने बोला कि मुझे सीजीपीएससी की कोचिंग करनी है। तो मतलब दो फ्रेंड्स थे मेरे, वो मेरे साथ घूम घूम के पूरे डेमो अटेंड करते थे। फिर
0: अच्छा
1: जब मैंने बोला कि मुझे पीजी पे शिफ्ट होना है, उन्होंने पूरा मेरे लिए अच्छा सा पीजी ढूंढा। फिर अब पीजी पे रह रहे तो ऑब्वियसली हम लोगों को टिफिन सर्विसेज चाहिए होगी,
0: जी
1: सारा अरेंजमेंट्स वो लोग करते थे।
0: चारू, आज के युवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर काफी दबाव रहता है, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी?
1: मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आज की डेट पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोगों को काम नहीं मिलेगी,
0: जी
1: कोई वर्क नहीं है आज की। मतलब इतने सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम, तो ऐसे निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स भी देखेंगे तो स्टेट सेंट्रल इतनी सारी होती है,
0: जी
1: अगर हम अच्छे से टारगेट करके मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ सक्सेस मिलेगा। अगर एक अटेम्प्ट में नहीं मिल रहा, 2 में नहीं, लेकिन वो मिलेगा फ्यूचर में कुछ ना कुछ। मतलब बस ये कहना चाहती हूँ कि एक एग्जाम में ना रहे वो, जैसे कि
0: ऑप्शंस बहुत
1: हाँ
0: अवेलेबल
1: उसके
0: हैं,
1: सिमिलर ऑप्शंस होते हैं उस पे वो ट्राई करना चाहिए उनको।
0: डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते
1: जी
0: हैं आजकल के
1: वही,
0: बच्चे और युवा जो
1: जी
0: हैं।
1: जी उनको बस वही है कि जो सिमिलर सिमिलर है उस पे भी ट्राई करते रहना चाहिए।
0: जी ऑप्शंस देखने
1: हाँ
0: चाहिए।
1: ऑप्शंस देखने चाहिए।
0: यदि आपको अपनी सफलता का मंत्र एक वाक्य में बताना हो तो वह क्या होगा?
1: देखिए उसके लिए तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, जितना पढ़ रहे उतना
0: जी
1: अच्छे से करें, सारा कंप्लीट करने के चक्कर में पूरा वो खराब ना करें। जो पढ़ रहे उसको 100% दें, 80% कंप्लीट कर लिया बाद में भूल जा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पढ़ रहे वो ऐसा पढ़े कि दोबारा रिविजन करने की भी जरूरत ना पड़े उनको। ऐसे धीरे धीरे फिर सिलेबस कम्प्लीट होने के बाद उनसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा वो मॉक टेस्ट दें, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से हर बार हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा।
0: और कुछ लोग ऐसा देखने में आता है कि पढ़ते बहुत ज्यादा हैं लेकिन रिजल्ट जो होता है उनके अनुसार नहीं आता है, और
1: जी
0: कुछ लोग कम समय में भी पढ़कर अच्छा
1: जी
0: बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं, तो
1: जी
0: वो किस तरह कर पाते हैं?
1: देखिए
0: जी
1: जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है हम लोगों को।
0: जी
1: जो लोग ज्यादा टाइम तक पढ़ते हैं उनको देखेंगे आप उनका स्ट्रेटेजी, तो वो लोग पूरे सिलेबस कंप्लीट करते हैं। लेकिन हमें स्मार्ट स्टडी करना है, जो पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ना है। देखिए हमारे पास ब्लूप्रिंट्स होती है, पता
0: जी
1: चल जाती है कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा, तो बस वो सब फॉलो करके हमें पढ़ना चाहिए। रीजनिंग होती है, मैथमेटिक्स होती है, इसको जितना ज्यादा अच्छे से समझे हम वो उतना अच्छा है।
0: चारू, किसी भी परीक्षा का परिणाम आने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती थी? क्योंकि आपने कई परीक्षाएं पास की हैं, तो जब किसी का परिणाम आता था तो आपके मन में क्या बात आती थी कि बस हो गया या दूसरी परीक्षा की तैयारी करना है?
1: ऑलमोस्ट पैरेलली सबके रिजल्ट्स आते गए,
0: जी
1: तो ये था कि मतलब कोई से भी एक जॉब पे मुझे करना है, जो भी बेस्ट होगा उस पे ज्वाइन करना है मुझे। तो मतलब किसी का रिजल्ट पहले आया, किसी का लेट से आया, तो रेलवे पे जो मेरी पोस्टिंग हुई उदयपुर पे,
0: जी
1: तो स्टेशन मैनेजर पे पोस्टिंग हुई, तो जब मैं उस टाइम इस पे ज्वाइन कर ली थी, मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पे, तो उस पे मेरा ज्वाइन करने का बहुत मन था। तब लगा कि ये छोड़ के वो ज्वाइन करती हूँ, बट जब मुझे पता चला कि उस पे मुझे स्टडी लीव नहीं मिल पाएगी क्योंकि अभी मैं पीएचडी भी कर रही, सो वो फिर छोड़ के।
0: तो अभी आपका और लक्ष्य क्या है, अभी और आपको पढ़ाई करना है?
1: हाँ, एक्चुअली अभी मैं पीएचडी कम्प्लीट करना चाहती हूँ, उसके बाद जैसे कि टाइम मिली तो फिर आगे एमफिल वगैरह करने का सोचा है मैंने।
0: तो अभी और भी प्रतियोगी परीक्षाएं देने का

0: मन है आपका?
1: नहीं नहीं अब
0: तो आप संतुष्ट हैं?
1: हाँ, मैं संतुष्ट।
0: जब कोई रिजल्ट आता था तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती थी?
1: मैं तो सबसे पहले पापा से वो शेयर करती थी। मैं को इतनी खुशी नहीं होती थी, बस पापा मम्मी की खुशी देख के मुझे बस वो खुशी होती थी। बस मुझे लगता था कि निकल गया एग्जाम, बस यही होता था।
0: जी, बहुत सारे युवा श्रोता आप इस समय आपको सुन रहे हैं प्रदेश भर से, आप उन्हें अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं बस उनसे यही कहना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो, बस कोशिश करते रहे, क्योंकि जितना हम मेहनत करेंगे, जैसे कि एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वो क्लियर नहीं हुआ कुछ रीजन से, तो बस उस पर जाके देखे कि वो क्लियर क्यों नहीं हो पाया, कहाँ पे उनसे मिस्टेक हो रहा, और उस पर थोड़ा सा हार्डवर्क करके नेक्स्ट अटेम्प्ट दे, वो डीमोटिवेट बस ना हो।
0: चारू, अंत में एक बार आपको हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से पुनः बधाई। आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने श्रोताओं को अपने जीवन और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी कई सारी जानकारियां साझा की, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: तो श्रोताओं, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे 19 शासकीय भर्ती परीक्षाएं पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से विशेष भेंटवार्ता। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश का शेष भाग। कार्यक्रम में सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म मुझसे शादी करोगी का ये गीत। गीतकार है समीर और संगीतकार है अनु मलिक। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है सिद्धिमा बाजार पारा जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर निषाद, दीपिका निषाद, शिवांश निषाद, राम भरोस पैकरा, नरेश सिंह ने। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी ने। सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खेलावन सिंह पैकरा ने। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट्स जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ ने। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, अभय गुजराती ने। ग्राम पंचायत खोनला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, धूर्णी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा और ऐश्वर्या पैकरा ने। कुंजनगर पोस्ट जयनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेमलता देवांगन, अमीर ताजे, महिमा देवांगन और श्रेया देवांगन ने। सुखराम सिंह मरावी पंचायत कौशलपुर रामानुजनगर श्रीनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी फिल्मी संगीत का कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो साथी जयमाला। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं साधना सरगम की आवाज़ में फिल्म जिगर का ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं आनंद मिलेन। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाणकर राही, सरिता गम्हाणकर, अर्जुन गम्हाणकर, टुक टुक प्रणीता, सिद्धांत गम्हाणकर। जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु ने। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश

चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, गर्वी और हिमाक्ष ने, जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल ने, वाणी जयराम एटा रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से और इनके साथ हैं बीपी गौतम और सरिता गौतम ने, बरेड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर और प्राची साथी तनु करमरकर ने, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवान, उमा राज, दिव्या भारती और बेताब रेडियो लिसनर क्लब बिहार से वशीम अकरम, बेबी जोई और गुड़िया खातून ने, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, असमानाज अंसारी, शबनम बानो, जेल रोड बक्सर से राज एसडी अंसारी, फातमानाज, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर शोनम, डॉक्टर अदीबा, सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ नारे, पुष्पा नारे, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से ने, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुंग, अश्वनी, गोविंद, टोनी, लव, राधे ढींगरा ने, जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई और प्रीतेश संघई ने, आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: साधना सरगम और उदित नारायण की गाई फिल्म जिगर की इसी गीत के साथ कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
2: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने

0: वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर We concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट गोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।

नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त

0: हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
1: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
2: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
0: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उरांव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
3: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
0: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: बैंकिंग के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खराब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम

Spotlight. This is Akash. मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार, महमूद और मन्ना डे की आवाज़ में फिल्म पड़ोसन के इस गीत के साथ। गीतकार हैं राजेंद्र किशन और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

0: గారె గారె
1: జరబడే
0: గారె గారె
1: సూర్య బదల
2: గారె గారె.
3: कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अब सुनिए उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म होगी प्यार की जीत का ये गीत. गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं आनंद मिलिंद.

कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंत में सुनिए फिल्म राजा का ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण और स्वर हैं अलका याग्निक और उदित नारायण के।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। डीजे प्रस्तुत है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म दिलवाले के इस गीत के साथ कुमार सानू की आवाज़ में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है गांव कुम्हार हिंडा सहारनपुर से सैयद मसरूर शाइनास हसन इब्राहिम ने, झुमरी तलैया से डॉक्टर सोनम वली डॉक्टर तस्नीम कौसर मीरा मोदी ज्योति मोदी प्रियंका और डॉक्टर सना वली ने, ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा मध्य प्रदेश से मोहम्मद रफीक पवार बेंजीर कौसर मोहम्मद साकिब पवार अलमास बानो पवार मोइन छोटू पवार शंकर लाल गंगरांडे साफिया अरहान खोकर और मोहम्मद हसनैन पवार ने, दिलहरन गौतम अंजलि गौतम आनंद पटेल समृद्धि पटेल बलौदा छत्तीसगढ़ से, सुदर्शन साह पल्लवी शाह प्रखर साह और कुशल साह पद्मा टॉकी नेपानगर मध्य प्रदेश से, वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद शादिक मुस्ताक अहमद मोहम्मद अल्तमश खत्री मोहम्मद शादाब खत्री, पुराना तालाब डुमराव से वली उल्ला अंसारी आसमानाज अंसारी और शबनम बानो जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातमा नाज ने, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा ने, बेरडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर सुनीता करमरकर हार्दिक करमरकर प्राची और तनु करमरकर ने, धनोरा बस्तर से वी पूनम नायडू साजन के मास्टर शिवांशु ऋषु चैतन्या अक्षय कुमार अभिषेक नायडू ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

0: ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 077774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज, और मैं आपके साथ हूँ आपकी रेडियो साथी जयमाला। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।

हैं और सुनते हैं कुमार सानू की आवाज में फिल्म करीब का ये गीत। गीतकार है राहत इंदौरी और संगीतकार हैं अनु मलिक। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, रोशनी मनवर और साथ ही प्रियांशी ने। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु, ताशु, अर्णव, आनंद, सत्यमानंद। बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत ने। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, मन्नत गुरकिरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल ने। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी ने। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा ने। राजकोट से प्रेमा रानी जाटव, डॉली और सुरेश डोकर। गुजरात से प्रवीण राज सोनी और श्वेता सोनी ने। चमनपुरा मोरबी से प्रमिला जेटली, दीपक और आशु जेटली ने। पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश मल्होत्रा, ज्ञान भूषण शर्मा ने। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता मखीजा, स्वाति मखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा छुटकी, शरद कुमार डोंडवानी ने। धारणी नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे ने। ग्राम पीपरलोड सरगांव मुंगेली से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने। स्टेट बैंक नगर पश्चिम बिहार नई दिल्ली से लव शर्मा और रोशनी शर्मा ने। मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, डीकेश साहू, रसलेड़ा छत्तीसगढ़ से। बुलढाड़ा वरसिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा मानकर, दीपाली और श्लोक ने। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिक्रिस्टो, रोजी डिक्रिस्टो, पल डिक्रिस्टो और विलिस डिक्रिस्टो ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

0: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
0: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
1: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
0: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 0777423060। नंबर एक बार फिर 0777423060।
2: कार्यक्रम ईमेल की गूंज में अगला मेल हमें भेजा है बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग ने। संजय कुमार साहू, सुजाता शाहू, ससांक शाहू, सीमा साहू पोटिया कला दुर्ग से, फिरोजाबाद से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि और आर्यन, रंजीत कुशवाहा और रामानंद कुशवाहा ने। कोट मोहल्ला चौकुनुटी बुलंदशहर से मोहम्मद शहीद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी ने। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन ने। ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से मालवा रेडियो श्रोता संघ जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ ने। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश निवान, सौरभ साइना और मेहंदे शर्मा ने। अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयसा सबिया, अनस और रेहान ने। रेडियो के दीवाने ग्रुप दिल्ली से रेशमा अंसारी, जमीला, शकीला, प्रमीला और मोहम्मद शहीद अंसारी ने। पुराना तला

अब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, आसमाना अंसारी, शबनम बानू, जेल रोड बक्सर से राजेश डी अंसारी और फातमा नाथ, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा ने, अंडार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल और गोपी वर्मा ने, लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी ने, कमलकांत मरावी, प्रमीला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी, लोरमी ग्राम चचेड़ी से, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया और नमन ढींगिया ने, बीट शहर महराज से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, जयश्री, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म कुछ कुछ होता है का ये गीत। आवाज़ें हैं कुमार शानू और श्रेया घोषाल की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं ईमेल की गूंज, आकाशवाणी की अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म कृष का ये गीत। गीतकार है नासिर फराज और संगीतकार है राजेश रोशन। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है दिल्ली से सुमन, सौरभ शर्मा, गौरव शर्मा और रया रोड गुजरात से राजेश सोनी, प्रथम सोनी और पीके सोनी ने। रश्मि झरना भरत कुमार राजकोट गुजरात से। राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति, ग्राम कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता और पांडे राम राजवाड़े ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम ईमेल की गूंज आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का राग विभास पर गायन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में फिल्म मोहरा का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं यू शाह। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव ने। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव ने। महाराष्ट्र हिंगोली से साहजी बोड़के, नंदा बोड़के और हनुमान बोड़के ने। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर ने।

कार्यक्रम मनभावन में अब सुनिए फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का ये गीत। आवाजें हैं अभिजीत और अलका याग्निक के, गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं जतिन ललित। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतीक बीरक और मीका बीरक ने। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन ने। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, तन्मय, बेबी अनिष्का, राधिका गजबिये। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद शहीद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अब्बान अब्बासी ने। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हीना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज परवीन ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो साथी जयमाला। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज़ में। फिल्म का नाम है सत्यमेव जयते 2। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है दरसीमा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा और अल्पना यादव ने। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा ने। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी, झूलेलाल चौक

है कार्यक्रम मन भावन आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब सुनिए जुबिन नौटियाल और पलक मिश्रल की आवाज में फिल्म काबिल का ये गीत। गीतकार है नाजिर फराज और संगीतकार है राजेश रोशन। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा ने। महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर ने। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रेम नामिका और उत्कर्ष नेताम ने। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गंवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गंवाड़कर, प्रिंस एकांश गंवाड़कर ने और अकारा हाइट्स बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश गंवाड़कर, श्वेता सुमित गंवाड़कर, कुमारी ध्वनि गंवाड़कर परी ने और बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गंवाड़कर और प्रणीता गंवाड़कर ने।

कार्यक्रम मन भावन का ये आखिरी नगमा पेश है श्रेया घोषाल की आवाज़ों में फिल्म आँखें सी। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं प्रीतम। इस गीत के लिए फरमाइश की है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा, सालिया शोएब खान, पुत्र राम मुजतबा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई ने। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने। आदर्शनगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और साइना शर्मा ने। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेभवानी, संगीता नेभवानी, आकाश नेभवानी, पप्पू जयसपाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा, सीता, सागर, आयुषी और हनी ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम मन भावन आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम
1: नमस्कार।

38.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा संपन्न होती है। कल प्रातः 5:51 पर अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा संपन्न होती है। कल प्रातः 5:51 पर अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।